0: तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पपीतकम् कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णुवादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रोत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषण। प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
1: गर्ग मुनि ने,
0: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे, प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती, पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है, जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है, चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है, और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो हैं पार्वती, वो हैं काली, वो हैं दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख भेड़ियाँ नगारे बड़े ढोल गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे, गायक मंगल गान गा रहे थे, स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में यह नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, बारात के साथ आए यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धिपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने उसकी सखियों ने ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही विधि
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है। शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि वर वधू भी खा लेते हैं प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: लीला जी आप याद करिए कि अभी भी अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
0: हो जाते हैं।
1: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवीय विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है। लेकिन इस समय पिशाच प्रेत राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब,
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
1: हुआ,
0: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उस अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्रायः सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती, तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी

0: वहां पर विराजमान है और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है। और जितनी भी नागरिक स्त्रियां थी, नगर की वधुएं थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधु ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुसोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए उस समय भी ये चलन में था कि वर वधु की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताहा सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधु वर वधु दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती हैं हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: दान कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ठ सपुरोहित तम वरम वर्यामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्यादि कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावत विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिवजी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा, हे शिवजी, अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय? क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो, प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम माँ कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुखः सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः। एवं विधः सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्षगणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हठ से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासि च किंचन वाच्ये महेश विषय अतिव असि तुम बहिर्मुख, त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वच। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशान का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो। तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत सुंदर, तो देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रांगा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
3: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
3: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान,
3: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने।

0: सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है। खुद के बारे में जानना, आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
0: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में

0: परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा। हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
0: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
0: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोत्स्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राफ्ट ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कम्फर्ट नहीं हो रही है, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देखो देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए। अगर शायद हम वहां हों, प्रैक्टिकली सोच के देखें, तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे। हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा, तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे।
1: बिल्कुल,
2: इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है।

0: और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है। इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं। हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: रेडियो मानव रचना, रेडियो मानव रचना।
2: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति।
3: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी। इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टूडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स। आपको क्या पता चलेगा? नथिंग। एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट। हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा। चिल्ड्रन आर डूइंग दैट।
2: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे।
3: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे। क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
2: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। डेफिनेटली।
3: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया। अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा। आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी। अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स। हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दे। दे वॉन्ट दैट। लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना। जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू। सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड। आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे। तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है, क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की। तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए सुनते गए, अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे। लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माईसेल्फ।
2: यस, वेरी ट्रू।
3: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें। आई हैव टू आस्क माईसेल्फ। बहुत इजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें। क्यों क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस। फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी।
2: वंडरफुल। तो लेट बी, एक्चुअली अगर हम,
3: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह। एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है। तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखे, और बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट। तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे। नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें। नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे। You know, it's most important is to understand कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है। हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग। जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं।
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
3: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस। और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है। तो वी नीड टू remove that and accept everything as it is. Mm. क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो perfect.
2: Mm. For that time, for that minute, for that you know पूरा perspective में वो सही है.
3: तो उस क्षण में उसको accept करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
2: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
3: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
2: इट लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
3: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है जब वो नीचे फ्लो कर रहा है? एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या?
2: जीवन.
3: किसको?
2: जीवनदायिनी, मनुष्य को देना.
3: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
2: उसको जीवन देते.
3: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बीइंग. उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग. दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
2: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
3: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके. देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रिएचर्स, दैट्स आल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
2: उन्हें nourish.
3: और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते हैं. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
2: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
3: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना
2: and give them happiness, you know? Yeah.
3: ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इमेजिन हाउ द डे विल पास एंड देन आई एम शेयरिंग एंड गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे मुझे कैसा लगेगा. Do I have to think is satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
2: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में stress कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
3: Stress के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात करनी थी. Stress, this is more the solution. ये solution है, because a lot of people go to work very unwillingly. I have to go to work.
2: Work is a stress. इतनी बार ये कहा जाता है कि my work area is the stress area. The most stressing part of my life is my work.
3: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य

0: लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव नहीं मिलता. स्टॉप, माय रोल इज ओनली टू.
1: ओह वंडरफुल. यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर, यू नो, आई एम नरिशिंग
0: फ्लो एंड जस्ट फ्लो एंड पास ऑन. क्योंकि आप फ्लो करते करते कितनी चीजों को पास ऑन करते जाएंगे और वो अपने आप नरिश होते जाएंगे.
1: यू नो वी एट टाइम्स वी स्टे.
0: रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
1: कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो.
0: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाती है. क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
1: हमसे होगी.
0: आई फील ब्यूटीफुल.
1: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर. व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग.
0: हीलिंग हो जाएगी उससे. कितनी हीलिंग. और थोड़ी हर थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपने इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने. कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ. क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है. मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना. तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ. ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
1: बात करना बंद कर देते हैं.
0: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो. तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस. साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर. तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड. कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन. अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे. That's good for me. Then I should follow that. So be quiet, let go, let be, accept everything, pass on to everyone as they come, and listen inside.
1: Okay.
0: Simple, simple things. सुनने में immediately लग रहा होगा नहीं simple नहीं बहुत difficult, तो भी simple simple.
1: हाँ, और
0: you
1: हर बार
0: की तरह start doing that.
1: हर बार की तरह वो experimentation करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं. But yes. अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा. इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज़ मान लेते थे. लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे. लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है. और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति. लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं. तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं और क्या कुछ हमारे अंदर होता है. लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है.
0: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या. गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए. मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता, और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज है। बट व्हाट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवरसेल्व्स, तो गुस्सा बार बार करना या कहीं एक बार भी करना सारे दिन में तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय इरिटेशन, या इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन, इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है, और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस I am creating this. आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू करते, वॉच इट एंड सी इट। तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहाँ से हटा देते हैं और वहाँ से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
1: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
0: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते हैं, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी। सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन, ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग। तो अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए एंड देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था, तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
1: गुस्से के दौरान भी हो पाएंगे।
0: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है।
1: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है, और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस, सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट विल स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स, I think gradually we should be able.
0: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते. अगर beliefs सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा, क्योंकि awareness जाएगी. You know, awareness चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है, and then it will go. And ये justification खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से. जब तक वो belief system सबसे strong है कि औरों की वजह से गुस्सा, then I will not change. Then I will keep waiting for you to change.
1: Yes, you know, we've always been saying it's just a, you know, thought way. So again, the thought that I am responsible, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, even if उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता ये कि हम इतने गिल्ट और रैंक, मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया,
0: नुकसान हो जाता है. पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए औरों से और गुस्सा करते हैं. यू नो, मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने. यू नो, सो इट इज जस्ट
1: बिकम अ
0: वेरी साइकल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
1: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पर कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज, यू नो, ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
0: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड. यू नो, वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस. हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. You know, and at that time we say, I want peace. Peace is basically a state of the being. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे. अंदर एक साइलेंस होगा. एक है साइलेंस, एक है नॉइज. यू नो, तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है, बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है, वन थॉट. होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
1: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं, एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. दिस इज पीसलेसनेस. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
1: मेरे ओपिनियन से. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, कि व्हेन यू से कि आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप,

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज है संडे का दिन। अच्छा, संडे वाले दिन ना हमारे पास कई सारे काम होते हैं। सुबह उठते ही लगता है कि जितने भी अपने पेंडिंग काम है, घर के काम है, वो फटाफट से कर लिए जाए। अब जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके साथ तो यही है कि एक संडे मिलता है, फटाफट से अपने सारे काम कर लो और उसके बाद जल्दी से हम रेस्ट कर लेते हैं। और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं या फिर ये होता है कि भाई कहीं चलते हैं, घूमने चलते हैं, कुछ खा के आते हैं और कहीं घूम के आते हैं, कुछ अच्छा लगेगा। और जब हम बाहर जाते हैं तो बड़े ही सुकून लगता है, थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, बाहर घूमना भी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, चाहे आप बाहर घूमें, घर पर रहें, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना। और ये सारी बातचीत लेकर के मैं यानी कि आरजे साक्षी आपके पास आ जाती हूँ। अगर आपके पास भी कोई संदेश है जो आप हमें, हमारे सारी लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं, तो नंबर है 8010781078। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, गाना सुनना चाहते हैं मैसेज आप कर सकते हैं, नंबर है 8010781078। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज है संडे का दिन और आपके पास ढेर सारी बातें लेकर के आ गई हूँ। अच्छा, मैं ना आपकी सेहत के बारे में बात कर रही थी और एक बहुत ही खास जानकारी आपको देती हूँ। आपने देखिए तिल के बीज के बारे में तो सुना ही होगा, जो सीड्स होते हैं ना, ये जो तिल के, जो बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। और ये ना, ये जो छोटे छोटे से बीज है ना, ये किसी खजाने से जो है वो बिल्कुल कम नहीं है। और मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि ये हमारी सेहत का खजाना है, और वो इसलिए क्योंकि इनमें पोषण का भंडार छुपा हुआ है। इनफैक्ट इंडिया में जो तिल का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चाहे देखिए खाने में हो या आयुर्वेद के रूप में, दवा के रूप में ये हमें मिलता हो, तिल जो है अपने स्वाद और साथ ही साथ जो इसके इतने सारे गुण हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये सिर्फ हमारी बॉडी को ज़रूरी पोषक तत्व ही नहीं बल्कि कई सारी बीमारियों से भी लड़ने में मदद करते हैं। तो तिल को अपनी रोज़ की डाइट में शामिल करना बिल्कुल चाहिए और ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अब फ़ायदा कैसा, ये तो साक्षी आपको बताएगी ना, तो वो बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज ढेर सारी बातें कर रही हूँ आपसे और संडे का आज दिन है। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ तिल के बारे में। इसके ना बड़े सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले ना अगर बात करें तो ये कैल्शियम और हड्डियों के लिए ये वरदान से कम नहीं है, क्योंकि तिल के बीज की अगर बात करें ये जो है इसमें कैल्शियम का बेस्ट सोर्स पाया जाता है। हड्डियों और दांतों का ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक सोर्स है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि मजबूत बनाता है हमारे हड्डियों को, हमारे दांतों को। कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए। नियमित रूप से अगर आप तिल खाते हैं तो ये हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी काफ़ी जो गंभीर समस्या है इसका खतरा भी कम होता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तिल के बीज खास तौर से फायदेमंद होते हैं। इनफैक्ट देखिए, तिल में मौजूद जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और साथ ही साथ सेसमोलिन जैसे जो तत्व हैं ये भी दिल की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और आर्टरीज में जमा होने वाले फैट को कम करके हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा घटाते हैं। तो है ना, कितनी छोटी सी चीज़ है और कितने सारे फायदे हैं। और अगर आपको भी ये फायदे चाहिए ना तो बस आपको क्या करना है, इनको रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना है। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील नाइस।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। अब मैं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। अब मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक देखिए चीज़ के बारे में, और वो है तिल। तिल जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये किसी खजाने से जो है वो कम नहीं है, और ये हमारे स्वास्थ्य का खजाना है, ये जो पोषण का भंडार इसमें मिलता है। इनफैक्ट तिल के बीज में एंटीऑक्सीडेंट की भरमार होती है जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, और इससे उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो धीमे होता है, त्वचा चमकदार रहती है, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी कम होता है। इनफैक्ट तिल में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है, और ये कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से भी राहत देता है, और लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ आपको महसूस कराता है, तो इससे जो है आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। तो बताइए फायदा किस में है, जंक फूड खाने में या कुछ ऐसी चीज खाने में जो कि आपके लिए सिर्फ फायदा आपको पहुंचा रही है, ये डिसीजन आपका है, साक्षी आपके ऊपर छोड़ती है। चलिए फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज ना मैं बात कर रही हूँ तिल की। तिल का तेल बालों और त्वचा के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अमृत के समान बिल्कुल इसे कहा जाता है। ये बालों को मजबूत बनाता है, रूखापन दूर करता है और झड़ने की समस्या को कम करता है। ये त्वचा के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसे खाना जो है जब सब्जी बनाए तो उसमें आप तिल का तेल इस्तेमाल करें, जब आप देखिए नहा के आते हैं मॉइस्चराइजर की जगह तिल का तेल लगाना शुरू कीजिए, देखिए आपकी जो त्वचा है उसमें भी काफ़ी फर्क आपको नज़र आने लगेगा। इनफैक्ट तिल में मैग्नीशियम की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी सुरक्षित है और फ़ायदेमंद है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। बिल्कुल खाइए और ज़रूर अपनाइए। तिल के जो बीज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारी सेहत के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट तिल के बीज में मौजूद जिंक और मैग्नीशियम स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मदद करते हैं और ये नींद की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और दिमाग आपका शांत रहता है। तो इसीलिए तिल के बीज को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। इन्हें आप सैलड में, स्मूदी में, खिचड़ी में, लड्डू या रोटी में मिलाकर खा सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से तिल खाएंगे तो ये न सिर्फ आपकी बॉडी को पोषण देगा बल्कि बीमारियों से बचने में भी मदद करेगा। तो अब डिसीजन आपका है क्या करना है, ये आज मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो देखिए इतनी सारे फायदे मैंने आपको तिल के बता दिए हैं, तो चाहे काले तिल हैं चाहे सफ़ेद तिल हैं ज़रूर खाइए, उनको आप डाइट में किसी ना किसी तरीके से आप शामिल ज़रूर कीजिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

कभी छोटे कभी खरे कभी खोटे कभी दुबले कभी मोटे कभी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: हदर है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ देखिए, संडे का आज दिन है और संडे वाले दिन आपके पास ढेर सारी जानकारी लेकर के आ गई हूँ। अच्छा, संडे वाले दिन हम एक और चीज़ करते हैं और वो है अगले दिन की और उसके पूरे हफ्ते की तैयारी, यानी कि मंडे और जो पूरा हफ्ता है ना ये आने वाला है उसकी पूरी तैयारी करते हैं। अब जो लोग अपनी डाइट पर अच्छा ध्यान देते हैं वो लोग क्या करते हैं भाई, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अपना जो खाना है या फिर अपना जो चीज़ें हैं आप क्या करते हैं, पहले से ऑर्डर करके रखते हैं ताकि आपको नेक्स्ट डे प्रॉब्लम ना हो। यानी कि मेरा मतलब है यहाँ से इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल आप वेजिटेबल स्टॉक बना के रख सकते हैं ताकि आप कुछ भी अगर बनाए, वेजिटेबल स्टॉक आपने डाला उसको आप फ्रीज करके रख सकते हैं। वेजिटेबल स्टॉक बना के आप फ्रीज करके रख दीजिए। और अगर आप कोई भी सब्जी बनाते हैं, कोई कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं या फिर आप नूडल्स बना रहे हैं तो आपको बस वो स्टॉक डालना है, नूडल्स डालने हैं और गर्म करके खाना है, उसमें कुछ और वेजीज आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ होता है कि आप फ्रोज़न जो प्योरी है वो भी बना के रख सकते हैं। तो ये सारी तैयारियाँ ना हम खुद कर लेते हैं और ये काफ़ी सही भी रहती हैं कि हम पहले से पहले अपनी तैयारियाँ पूरी करके रखें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, बात आती है कि हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनको भी पूरा करके रखते हैं। ओवरनाइट ओट्स की अगर बात करें या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, हम जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी कट करके रखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अगर आप पूरे हफ्ते की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, गाजर हो गई, इसको आप कट करके, बिल्कुल आप चॉप करके इसे एक तरफ रख दीजिए। आपको बीन्स लेनी है, इसको भी आप चॉप करके अलग कंटेनर में रख दीजिए। इसके बाद आपको जो है थोड़े से आपको क्या करना है, जो प्याज है वो आप बिल्कुल भी कट मत कीजिएगा, क्योंकि जो प्याज और टमाटर होते हैं वो बहुत जल्दी से कट हो जाते हैं और इस टाइम पर आप अगर कट करेंगे तो वो फ्रेश बिल्कुल रहते हैं। इसी के साथ साथ मटर हो गई, वो आप अलग से रख सकते हैं निकाल के, कि आप पहले से पहले उसको आप जो है यूज़ करने के लिए आप उसे रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले से पहले अगर आप चॉप करके रखते हैं तो अच्छी रहेगी। अच्छा, यहाँ पर आप टमाटर और अगर मैं प्याज की बात करूँ, उसका प्योरे आप बना सकते हैं। तो टमाटर प्याज का प्योरे बनाने के लिए बस आपको क्या करना है, आपको प्याज जो है वो लेनी है। अगर आप 4 प्याज ले रहे हैं 2 टमाटर लीजिए और उसके बाद प्याज को अच्छे से चॉप करके आपको एक तेल में, कढ़ाई में आपको प्याज को भूनना है। इसमें टमाटर को आपको, उसके बाद जैसी प्याज भुन जाए उसको टमाटर डाल देना है। मसालों में आपको जो है हरा धनिया, आपको लाल मिर्च डालिए, बस यहाँ पर आपको नमक नहीं डालना है। और इसको आप अच्छे से जब भून लेंगे, इसको अच्छे से इसकी फिर प्योरे बना लीजिए और इस प्योरे को हल्का रूम टेम्परेचर पे कर आप इसे जो आइस क्यूब आपकी ट्रे होती है उसमें डाल के आप इसे फ्रीज कर दीजिए। अब बस आपको तब क्या करना है, जब भी आप कोई सब्जी बनाने जाए थोड़ा सा उसमें आपको ऑयल डालना है, 1 टेबल स्पून आपको जो है या फिर घी या ऑयल डालना है। इसके बाद उसमें जीरा डालिए, ये जो आइस क्यूब आपने लिया है वो आपने जो जमा रखा है इसको आपको डालना है। इसमें ही आपको सारी जो वेजिटेबल्स सौते करनी है और उसके बाद आपको सब्जी आपकी तैयार हो जाएगी। तो बहुत जल्दी जो है ये खाना बन जाता है। सैटरडे या संडे वाले दिन, ये जो वीकेंड है, आप ये सारी तैयारी करके रख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया है ओवरनाइट ओट्स का। देखिए, ओवरनाइट ओट्स बहुत लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक सवाल हमारे पास आया है कि ओट्स जो है ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, ओट्स खाएं या फिर ग्रैनोला क्या जो सही है और ये वजन कम करने में मदद करेगा। तो चलिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको जरूर समझाऊंगी, इसके बारे में जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel like

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आजकल देखिए हर कोई जो है वो फिट बॉडी और हेल्दी लाइफस्टाइल पाना चाहता है। डाइट को लेकर लोग पहले से काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं। जब बात वेट लॉस की आती है तो नाश्ते या स्नैक के लिए आप ओट्स या फिर ग्रानोला को भाई चुनते हैं। अब दोनों जो है ये सुपर फूड माने गए हैं, दोनों फूड माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। दोनों में पोषण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका हमारी बॉडी पर बिल्कुल अलग अलग असर पड़ता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल। देखिए आपको जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होगा ताकि आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो स्पीड में बढ़ सके। और वहीं अगर आप गलत चुन लेते हैं तो आपका वजन तो कम होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बहुत स्लो हो या फिर हो सकता है आपका वजन और ज्यादा बढ़ जाए। तो इन दोनों में अगर आपको कुछ चुनना हो तो भाई मैं आपको बताऊंगी क्या आप चुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले अभी आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज है संडे का दिन, आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर के आ गई हूं। तो एक सवाल हमारे पास आया है कि ओट्स ज़्यादा सही है या फिर ग्रैनोला। चलिए ओट्स की बात करते हैं। ये नेचुरल रूप से लो कैलोरी वाला फूड है और ओट्स का एक बोल आपको कम कैलोरी में ही पेट भरा होने का जो एहसास है वो करा देता है, बेहतरीन लगता है। इसी के साथ अगर ग्रैनोला की बात करें तो देखिए, ग्रैनोला में नट्स, शहद, तेल और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं, इसी वजह से इसकी कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो थोड़े से ग्रैनोला भी शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, जो वेट लॉस के सफ़र में आपकी जो जर्नी है इसमें कैलोरीज बढ़ाने के कारण ये बन सकता है। अब ओट्स का अगर देखिए, अगर कमाल की इसकी बात करें तो ओट्स में जो है वो सॉल्युबल फाइबर यानी कि जो बीटा ग्लूकेन पाया जाता है भरपूर मात्रा में होता है, ये हमारी डाइजेशन को थोड़ा सा धीमा करता है, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और आप बार बार अनहेल्दी स्नैकिंग से बच सकते हैं। वहीं ग्रैनोला जो है इसमें भी फाइबर होता है, लेकिन इसमें मौजूद शुगर और फैट इससे पेट भरने वाले जो प्रभाव है उसको ये काफ़ी कम कर देता है। और ओट्स जो है ये ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखता है और बॉडी को ये इंसुलिन स्पाइक कम करने में मदद करता है और साथ ही बॉडी में जमे हुए फैट को ज़्यादा बेहतर तरीके से बर्न कर पाता है। तो वहीं देखिए, ग्रैनोला में मौजूद मीठे तत्व ब्लड शुगर को अचानक से तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, जिससे शरीर में आपके फैट जमा होने का एक रिस्क बढ़ जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि कैसे पोषण कंट्रोल पर अगर आप ध्यान दें तो कुछ फायदा हो सकता है। पोषण कंट्रोल पर कैसे ध्यान देंगे, इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूँ पोषण कंट्रोल की। अब देखिए, पोषण कंट्रोल पे अगर ध्यान अगर आप देंगे तो वजन जो है वो टाइम के साथ कम जरूर होता है। और अगर अच्छी डाइट ले रहे हैं और टाइम पर ले रहे हैं और साथ ही कम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप नहीं खा रहे हैं, अगर आप बार बार खाते रहते हैं तो उससे कैलोरीज जो है आपकी बढ़ती रहेंगी। अब ओट्स की बात करें तो इसे पानी या दूध में पकाने पर ये फूल जाता है, जिससे कम मात्रा भी ज्यादा महसूस होती है और पोषण कंट्रोल करना आसान होता है। वहीं ग्रानोला एकमात्र, देखिए इसमें कम मात्रा में भी बहुत ज़्यादा कैलोरी देता है, जो कि ये जो खाना है इसमें जो है वो टेस्टी है और क्रंची भी होता है, और इसीलिए लोग अनजाने में ही ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। वज़न घटाने के लिए गट का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओट्स पूरी तरह से गट फ्रेंडली होता है और कॉन्स्टिपेशन और ब्लूटिंग जैसे समस्याओं को दूर करता है। तो वहीं ग्रानोला में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है और ये आपकी गट हेल्थ को बिगाड़ सकता है और गैस या एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। तो देखिए, अब इसके बारे में कुछ और भी बात करूंगी, लेकिन इससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फ्री लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और मैं बात कर रही हूं ओट्स या ग्रानुला, क्या चुनना सही है? देखिए, दिन भर की एनर्जी के लिए ओट्स शरीर को जो है वो स्लो रिलीज एनर्जी देते हैं, यानी इससे आपको जो है वो दिन भर एक्टिव रहने में मदद मिल सकती है। और इसके जो अगर विपरीत की अगर बात करें तो ग्रानुला जो है वो इंस्टेंट एनर्जी तो देता है लेकिन कुछ देर बाद आपको दोबारा थकान और भूख लगने लगती है। ओट्स को आप अपने हिसाब से सब्जियां, ताज़े फल, दही, दालचीनी या चिया सीड्स मिलाकर बहुत ही आसानी से हेल्दी बना सकते हैं और खा सकते हैं। वहीं ग्रैनोला जो है वो अक्सर बाज़ार में रेडीमेड मिलता है और इसमें छुपी हुई जो शुगर है, ये प्रिजर्वेटिव जो है वो भारी मात्रा में इसमें होते हैं, जो कि सही नहीं है सेहत के लिए। अब अगर आपका जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य जो है वो वजन घटाना है, तो बिना किसी शक के आप ओट्स ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद रहेगा आपकी सेहत के लिए। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो जो आप खा रहे हैं, जो आपका रहन सहन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज भी करें इसके साथ साथ। और ओट्स जो है, अगर आप वज़न बिल्कुल अच्छे से जल्दी घटाना चाहते हैं तो ओट्स आपकी ज़रूर मदद करेगा। कैलोरी कंट्रोल, शानदार फाइबर सपोर्ट, बेहतर पाचन और तेजी से फैट बर्न करने में काफी मदद करता है। अगर आप ग्रानुला को कभी कभार सीमित मात्रा में खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप घर का ही बना हुआ लो शुगर हो वो, या बेहतरीन होगा, फास्ट जो है वो रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। ओट्स में थोड़ा प्रोटीन जरूर आप मिला लीजिएगा, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा असर अच्छा पड़ेगा। इसमें आप ग्रीक योगर्ट या थोड़े से नट्स आप डाल सकते हैं। साथ ही हेल्दी तरीके से वज़न घटाने के लिए रोज़ाना आप वॉक और योगा बिल्कुल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इससे भी जल्दी आपका वज़न कम होगा। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक लेने का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको जरूर बताऊंगी, अब डिसीजन आपका है, ओट्स लीजिए ग्रानुला। वैसे मैं तो कहूंगी ओट्स लेना शुरू कीजिए, ब्रेकफास्ट में लीजिए और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आप इसे सब्जियों के साथ ले सकते हैं, आप इसको अगर फ्रूट्स के साथ लेना चाहते हैं तो वैसे ले सकते हैं, डिपेंड करता है जैसा आप पसंद करते हैं। बस इसी के साथ अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, फील गुड फील।
1: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, ये हुई ना बात।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ वक्त जो है यह हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल आऊँगी आपको बस ढेर सारी बातें लेकर के। तब तक के लिए रेडियो मानव रचना ढेर सारे प्रोग्राम्स लेकर के आ जाता है, इन प्रोग्राम्स को सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

आज एक ऐसे अभिनेता की कंपनी है, मतलब जो बहुत फेमस है, शी इज एन एक्ट्रेस और काफी काम किया है उन्होंने, इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, उनकी एक कंपनी है। अगर आप जानते हैं उसके बारे में तो कृपया करके व्हाट्सएप पर हमें बता दीजिए 8010781078 पर, और नहीं जानते हैं तो आराम से भैया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चिल करिए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर तो मैं बता ही दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, अभी लेंगे हम एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, फिर हम लेकर चलेंगे कंपनी, फाउंडर, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। आई मीन एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें। अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारा यूथ है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीज़ों में। सेकेंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहाँ पर स्मार्टफोन है वहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों, और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है। अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला, बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसी हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने है, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं, किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपने स्किन के ऊपर और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कॉन्टेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कॉन्टेंट बनाते हैं, फुल फ्लैश्ड वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड फील।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रश्न 107.8 एफएम। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चले तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं अब ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान की पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं, उसमें भी टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजिली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकेंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कंटेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कंटेंट बनाएं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसको अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या, ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फर्स्ट, ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। सेकंड, एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज की ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा कि हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसिडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में। डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड।

वेलकम बैक। नाउ दिस नोट, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझाया है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो उसमें पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीजें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू वांट टू सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीजें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीजें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीज़ें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ दिस नोट, लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी।

0: हटा दो।
1: दोस्तों, अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेज होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकेंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए, एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। उसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स।

इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए, हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा, कल्चर, सब चीज़ होती है, तो तमाम चीज़ें पढ़ के जहाँ पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर आपको वहाँ की कोई चीज़ देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ आप जान चुके हैं अभी तक। चलिए आगे लेकर चलते हैं शो को और फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की कंपनी जो ब्यूटी टेक में डील करती है, इसका नाम है हाइफ़न। हाइफ़न एक इंडियन D2C डायरेक्ट टू कस्टमर स्किन केयर ब्रांड है, जिसको जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। इट वॉज को फाउंडेड बाई एन एक्ट्रेस एंड हर नेम इज कृति सैनन। यहाँ कृति सैनन का ये ब्रांड है एंड इसके साथ साथ और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। डेफिनेटली टीम जिसने मैककैफीन कंपनी स्टार्ट करी थी वो इसमें शामिल है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कृति ने सिर्फ ये नहीं किया कि मैं एक सेलिब्रिटी फेस की तरह आऊँगी, एंडोर्स करूँगी और हो गया मेरा काम। यहाँ पर वो एक्टिवली इन्वॉल्व रही, यहाँ पर हर एक चीज़ में, हर एक प्रोडक्ट में, उसके आइडिएशन में, टेस्टिंग में, ब्रांडिंग में, कस्टमर फीडबैक में। एंड कंपनी यहाँ पर कंबाइन करती है साइंस बैक्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ताकि मल्टी बेनिफिट स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जा सके। इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक, डील करती है स्किन केयर में, D2C कस्टमर ब्रांड है, पर्सनल केयर में फॉल करता है अगर इसको हम सब कैटेगरी वाइज देखें तो। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। तो कृति बहुत पैशनेट रही है शुरू से ही अपने स्किन केयर को लेके। इन्होंने देखा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो सेवरल प्रोडक्ट्स जो हैं बाय करते हैं डिफरेंट कंसर्न्स के लिए। हाइड्रेशन के लिए अलग प्रोडक्ट होते हैं, पिगमेंटेशन के लिए अलग, ग्लो के लिए अलग, एक्ने के लिए अलग, बैरियर रिपेयर के लिए अलग। और जब आप इन सारी चीज़ों को मर्ज करते हो, कंबाइन करते हो, तो ये बहुत एक्सपेंसिव और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ बनाते हैं। तो मैककैफीन के जो फाउंडर्स थे इन्होंने उनको रीच आउट किया और प्रोडक्ट्स बनाने का आइडिया दिया और अपना विजन शेयर किया, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने मल्टीपल इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये लेकर के आए एंड दे पुट एवरीथिंग इनटू वन फार्मूला। जो फाउंडर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट एक साल जो है वो अपना दिया उस एक चीज़ को फॉर्मेट करने में, समझने में, प्रॉपर लॉन्च करने में। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ दिस कंपनी, क्यों ये कंपनी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर इतना हमें क्लियरली समझ में आता है कि कृति को एक प्रॉब्लम नजर आई एंड प्लीज हेयर इट आउट। उन्होंने ये नहीं किया कि मेरा फेस बिक जाएगा या मेरे फेस को देख करके लोग खरीद लेंगे। उन्होंने सिंपली एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने का सोचा। एंड इन चीज़ों की वजह से कोई भी कंपनी अलग होती है कि आप एडवांटेज ले सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई एडवांटेज है तो यू शुड टेक दैट एडवांटेज। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर हैज़ टू बी समथिंग जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों के लाइफ में वैल्यू एड करे, जो इस कंपनी ने किया। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे और चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। मैं सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। कंपनी का नाम है हाइफ़न, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया इसका, क्या करती है हाइफ़न। ये आपको ओवरऑल हमने बताया, एक ओवरव्यू मिला है, लेकिन थोड़ा प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात करते हैं। एग्जैक्टली स्किन केयर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। सनस्क्रीन है इनके पास, फेस सीरम्स हैं इनके पास, मॉइस्चराइजर्स हैं इनके पास, क्लींजर्स हैं इनके पास, लिप बाम्स हैं इनके पास, फेस मास्क हैं इनके पास, ठीक है। कंपनी सेल कहाँ कहाँ पर करती है, पहली बात अपनी खुद की वेबसाइट पर, दूसरा अमेजोन पर, तीसरा नायका पर, चौथा ब्लिंकिट पर, पांचवा जेप्टो पर, छठा फ्लिपकार्ट पर, एंड देर आर अदर क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। फिलॉसफी बहुत सिंपल है, वी यूज 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन वन प्रोडक्ट कैन सॉल्व मल्टीपल स्किन कंसर्न्स। व्हाई आर वी डूइंग इट। तो ये इन्होंने सिंपल सा लॉजिक लेकर के आए और प्रॉब्लम जो है, मतलब आपके 3 प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दिया। अच्छी बात ये है कि मार्केट को बहुत अच्छे से समझाया कंपनी ने कि भैया क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स जहां से जो हो सके करो, हर जगह पर आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। ये इस कंपनी ने एक मंत्र जो है वो फॉलो किया। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि एक तो भाई एम कैफीन अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रांड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो जो फाउंडर्स हैं उन्होंने उस चीज को एक्सेल कर लिया कि काम कैसे करता है, स्किन केयर ही पूरा सेगमेंट कैसे काम करता है, लोग क्या पसंद करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कृति सनन भी वहां पर आ गई और आई भी इस थॉट के साथ कि यार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेट्स नॉट जस्ट सेल द फेसेस, लेट्स सेल द सॉल्यूशन, जो मुझे लगा बहुत बहुत आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट पार्ट। तो ये एग्जैक्टली चीज है जो स्ट्राइक की। अच्छा, कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। कृति को अपना स्किन केयर कंपनी स्टार्ट करनी थी, उन्हें करियर वहां पर बनाना था अपना, ऑलरेडी बॉलीवुड में है लेकिन उन्हें करना था वहां पर। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, उन्होंने पार्टनरशिप की विद द पीपल जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, एम कैफीन के फाउंडर्स। ओके, उन्होंने रिसर्च की इंडियन स्किन केयर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, कंज्यूमर हैबिट्स के ऊपर, स्किन केयर पेन पॉइंट्स के ऊपर। देन उन्होंने एक फॉर्मुलेशन बनाया जिसमें उन्होंने कंबाइन किया मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रोडक्ट टेस्टिंग की बिफोर लॉन्च, एंड देन जुलाई 2023 में इस कंपनी को लॉन्च कर दिया। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे फाइनली फाउंडर्स के बैकग्राउंड की। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

आशा करता हूँ हर बार की तरह कि आपको ये वाइब अच्छी लग रही है, शो आपको पसंद आ रहा है, शो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। लेट्स टेक इट अहेड, फाइनली बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। हाइफ़न हमारी आज की कंपनी है और एक चेहरा अभी तक आपको पता है, कृति सैनन। तो चलिए शुरुआत इनसे ही करते हैं। सो कृति सैनन इज अ को फाउंडर एंड चीफ कस्टमर ऑफिसर CCO ऑफ हाइफ़न। इनके एजुकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने बीटेक किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से, नोएडा से। ओके, प्रीवियस बैकग्राउंड इनका एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, अभी एंटरप्रेन्योर भी इनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। ये ब्रांड बिल्डिंग लेकर के आती हैं, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग लेकर के आती हैं, मार्केटिंग लेकर के आती हैं, प्रोडक्ट का फीडबैक लेकर के आती हैं। सो अनलाइक पैसिव सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स, शी इज पोजिशनड एज एन एक्टिव ऑपरेटर। मतलब होता क्या है कि पैसिव, अगर मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ तो एक तरीके से पैसा ले लो भाई, बनाओ तुम लोग, हम अपना चेहरा दिखाने आ जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर एक्टिवली काम किया, प्रॉपर कस्टमर को समझा, कस्टमर की नीड क्या है उसको समझ के तब जाकर के जो है इन्होंने मार्केट में उतरे और उसको प्रोडक्ट को अपने बेहतर बनाते गए। दूसरा नाम आता है तरुण शर्मा, ये को फाउंडर हैं एंड CEO हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करें तो को फाउंडर ऑफ एम कैफीन, इनको जाना जाता है D2C ब्रांड बिल्डिंग के लिए, ब्यूटी स्टार्टअप्स के लिए, स्केलिंग कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए, स्केलिंग में बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। तीसरा नाम है वैशाली गुप्ता, इनका रोल है को फाउंडर एंड चीफ ग्रोथ ऑफिसर CGO। प्रीवियस एक्सपीरियंस, को फाउंडर ऑफ एम कैफीन, ब्रांड मार्केटिंग, ग्रोथ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट नेम आता है यहाँ पर सौरभ सिंगल का, रोल है इनका चीफ सप्लाई ऑफिसर। इनका बैकग्राउंड है मैन्युफैक्चरिंग का, ऑपरेशंस का और सप्लाई चेन का। एंड नेक्स्ट नेम आता है यहाँ पर मोहित जैन का, फाइनेंस समझते हैं, व्यापार समझते हैं, फाइनेंस को फिक्स करना इनका काम है। तो ये ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस देखते हैं प्लस फाइनेंस देखते हैं। तो ये भी जो है एम कैफीन जो है उस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हैं, एक तरीके से रह चुके हैं। तो ये 5 लोग हैं जिन्होंने मिला करके स्टार्ट किया, कुछ मार्केटिंग लेकर के आए, कुछ फाइनेंस देख के आए, कुछ सप्लाई को फिक्स करने का बेड़ा लेकर के आए, कुछ अपना अनुभव लेकर के आए, कुछ अपना चेहरा लेकर के आए, साथ साथ झील के साथ कि कुछ सीखेंगे। दैट्स हाउ दिस कंपनी स्टार्टेड। तो ये है जी इनके बैकग्राउंड सबके। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी गानों की चॉइस आपको पसंद आ रही है। तो चलिए जी इसी नोट पर शो को आगे लेकर चलते हैं। कंपनी का नाम है हाइफ़न। हम आपको कंपनी के बारे में बता चुके हैं, कब स्टार्ट हुई, क्या स्टेप्स रहे, कौन को फाउंडर्स हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, सब कुछ आपको पता है। थोड़ा बिजनेस मॉडल समझते हैं यहाँ पर। D2C प्लस ओमनी चैनल ब्रांड। इनका रेवेन्यू आता है वेबसाइट सेल से, मार्केट प्लेसेस से, रिटेल पार्टनरशिप से, क्विक कॉमर्स से। ओके, तो अच्छी बात यह है कि आपको किसी एक चैनल के ऊपर रिलाय नहीं करना है। यू शुड ओपन एज मैनी गेट्स एज पॉसिबल। अब यहाँ हम बात करते हैं की ग्रोथ ड्राइवर्स की। कैसे कंपनी भैया ग्रो कर रही है? पहला तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेलिब्रिटी फाउंडर। कृति सैनन जो है बहुत बड़ा नाम है, और अगर वो किसी ब्रांड के साथ आ रही है तो इमीडिएट विजिबिलिटी बढ़ेगी उसकी। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ वो उसके साथ जुड़ी रही है शुरू से ही, बिल्कुल डे वन से, जहां पर एक थॉट, एक विजन, एक मिशन क्लियर था उनके पास, तो उस थॉट के साथ काम किया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटजी। बहुत इन्वेस्ट किया इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर, कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटली अपने आप को एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है फास्ट प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, रेगुलर लॉन्चेस करते हैं, फटाफट इनोवेट करते हैं। मौसम बदल रहा है, कोई नया इशू आया है, लेट्स ट्राई टू फिक्स इट अगर हमारे एंड पर पॉसिबल हो सकता है तो। उसके अगला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग D2C एक्सपीरियंस, क्योंकि एम कैफीन भैया बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी अगर टीम इनके साथ जुड़ गई है तो इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस। आई मीन एक एडवांटेज आपके पास होता ही होता है जी। तो ये पांच हैं वो ग्रोथ ड्राइवर जिनकी वजह से कंपनी ग्रो करके यहां तक पहुंची है। अच्छा, इस कंपनी ने अलग क्या किया? सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इंग्रेडिएंट्स दे सोल्ड सॉल्यूशंस। कस्टमर्स को नहीं चाहिए भैया विटामिन सी, नायासिनामाइड एंड सेरामाइड एंड सो ऑन। दे सिंपली वॉन्ट अ क्लियर स्किन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी देखते हैं ना हम लोग एड्स में आता है नायासिनामाइड, इसमें जी इसमें विटामिन सी, हमें नहीं पता है, हमें इतना जानना है कि मेरी स्किन के ऊपर काम करेगा, क्योंकि मेरे को एक और स्ट्रेस मिल गया ना कि अब मेरे को ये समझना है नायासिनामाइड होता क्या है भाई और ये काम कैसे करता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर स्ट्रेटजी को समझा और समझा कि कस्टमर को यार सिंप्लीफाई करके देते हैं ना, कॉम्प्लेक्स क्यों करना। ये इन्होंने थोड़ा सा अलग किया जो इनके काम भी आया, दिखा भी। सो यार दैट इज एग्जैक्टली द थिंग जो इन्होंने अलग किया जिसकी वजह से ये आउटशाइन कर पाए। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम शो को आगे लेकर चलेंगे और बात करेंगे कंपनी की USPs की। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवष्टम 107.8 एफएम पर। कंपनी की यूएसपीज की अगर बात करें, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तो पहला तो है कि मल्टीपल पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक बॉटल में मिल रहे हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो कोई एक सिंगल हीरो इंग्रेडिएंट नहीं है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मिक्स करके प्रोडक्ट बेचना शुरू किया है। मतलब अलग अलग उसको लेबल ना लगा करके, अलग अलग आपकी पॉकेट के ऊपर उसको हैवी ना करके इन्होंने सिंपली किया गया है। ठीक है, लेट्स पिक वन प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व इट, और जितने इंग्रेडिएंट उसमें डालने डाल देते हैं जो सेफ हो। सेकंड है नेचर प्लस साइंस। कंपनी अपने आप को पोजीशन ऐसे करती है कि वी आर ड्राइव फ्रॉम नेचर्स गुडनेस प्लस साइंस बैक्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी हमारे पास हैं। सो इट अपील्स मॉडर्न कंज्यूमर्स, जिनको प्रोडक्ट चाहिए जो नेचुरल फील हो बट डर्मेट्स की दुनिया में जिसको सपोर्ट किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अफोर्डेबल प्रीमियम स्किन केयर। सो रेदर देन लग्जरी प्राइसिंग, उन्होंने टारगेट किया मिडिल सेगमेंट को, प्रीमियम क्वालिटी विदाउट लग्जरी प्राइसिंग। ये अगेन मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव होता है कि किसी लिए हो सकता है ये भी लग्जरी हो, बट कंपनी खुद को ऐसे पोजिशन करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलिब्रिटी ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर एक सेलिब्रिटी खुद इन्वॉल्व है जो सिर्फ वहां पर ब्रांड शूट करने के लिए नहीं आ रहा है, जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, को फाउंडर है, इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस। आई मीन लोगों को एक ट्रस्ट फैक्टर आता है, एक अपर हैंड मिल जाता है उस ब्रांड को। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टेस्टिंग हुई है, इंग्रेडिएंट सिलेक्शन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर फीडबैक, सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों के सामने होते देखा है और उसमें वो शामिल रही हैं। तो ये है जी, 2023 में ये कंपनी जो है लॉन्च की गई थी, 1 मिलियन से 4 मिलियन कस्टमर्स जो है इन्होंने विद इन 1 ईयर इन्होंने ग्रो किया था इतना। ठीक है, रिपीट परचेज रेट है एज पर कंपनी ऑलमोस्ट 60% जो है इनका स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है जो कंपनी क्लेम करती है। 19,000 से ज़्यादा पिन कोड्स के ऊपर इन्होंने प्रोडक्ट्स अपने डिलीवर किए हैं एंड 400 करोड़ जो है वो विद इन 2 ईयर्स इन्होंने ग्रॉस सेल करी थी। सो इट शो सो मच यार, इट टेल सो मच कि कंपनी ने एक्चुअली अच्छा काम किया है। तो ये थे हमारी आज की कंपनी जिसका नाम है हाइफ़न। आपको कैसी लगी बताइए हमें। फिलहाल मेरा वक्त है भैया शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, आपको मजा आया होगा। अब चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो लेकर, हम मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज आरजे सागर।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जहां होती है बातें आपकी हेल्थ के बारे में। मौसम बदल गया है और इस बदलते मौसम में जहां कभी बारिश है तो कभी धूप है, कभी आप एसी में बैठते हैं, कभी आप बाहर निकलते हैं, बारिश के इन्फेक्शन भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे में सर्दी जुकाम खांसी होना बहुत कॉमन बात है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी गंभीर विषय पर। बरसात का मौसम वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है? खास तौर पर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी दिमाग से जुड़ी हुई कुछ परिस्थिति भी बिगड़ सकती है। क्या इस बारिश के मौसम में, इस मॉनसून में आपको एक्स्ट्रा ख्याल रखने की जरूरत है? ऐसे इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर दिव्या गोयल। डॉक्टर दिव्या, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू दीक्षा।
2: तो सबसे पहले डॉक्टर दिव्या, बहुत सिंपल सा सवाल, बरसात के मौसम में मॉनसून की जब हम बात करते हैं तो वैसे बहुत अच्छा लगता है मॉनसून, लेकिन इस मॉनसून में सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है बीमारियों से। सर्दी जुकाम है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, इन सब के बारे में तो हमें अक्सर राय मिलती रहती है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते रहते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या मॉनसून में बढ़ जाती हैं, और अगर बढ़ती हैं तो क्यों बढ़ती हैं?
3: जी बिल्कुल, जो रेनी सीजन होता है इसमें कुछ ऐसी चेंजेस आते हैं जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस बढ़ जाती हैं। जैसे चेंजेस बीइंग डिक्रीज इन बेरोमेट्रिक प्रेशर, जो हमारा बाहर का प्रेशर होता है वातावरण का, वो गिर जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी रीएडजस्ट करती है, इम्यूनिटी गिरती है। सेकेंडली इसमें ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, उमस जिसे हम कहते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ने से हमारा जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन होने से भी बीमारियों को बहुत न्योता मिलता है एक तरह से। और तीसरा चेंज होता है वाटर लॉगिंग। अब जगह जगह जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें वाटर बेस्ड बहुत सारा कंटेमिनेशन और बहुत सारे मस्कीटोज का बेसिकली ब्रीडिंग शुरू हो जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो वेक्टर बॉर्न है, मस्कीटो बॉर्न है, उनकी शुरुआत होती है और CNS को इन्फेक्ट करते करते कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं।
2: ओके, सो ये बेसिकली जो नॉर्मल बीमारियां दिखती हैं वो भी प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट कर सकती हैं। तो मॉनसून को एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे हम जनरली लोगों को कहते हैं ना कि आप डेंगू मलेरिया से बचने के लिए फुल स्लीव्स के कॉटन के कपड़े पहनिए, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर किसी को पहले से हल्की बहुत है तो उसको एक्स्ट्रा केयर भी करनी चाहिए, जैसे आप विंटर्स में करते हैं। बस आपको हर मौसम में थोड़ा सा सतर्क रहना है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आखिर बढ़ती कैसे हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, लेकिन अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो जरूर पूछ सकते हैं। नंबर बहुत आसान है, 8010781078। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और इस प्रोग्राम में आज हम बात करें हैं मॉनसून में होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में. वो प्रॉब्लम्स जो खांसी जुकाम बुखार नहीं है लेकिन इससे काफी बड़ी है. क्या पता इनके होने से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है. पर ये प्रॉब्लम है क्या, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो मॉनसून में ज्यादा खराब हो जाती हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या गोयल, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर और एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे बीच हैं. डॉक्टर दिव्या, बारिश के मौसम में कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जो ज्यादा देखने को मिलती हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है लोगों में?
1: जी, अगर कॉमनैलिटीज से शुरू करें तो माइग्रेन्स, माइग्रेन्स इंक्रीज इन द रेनी सीजन.
0: ओके,
1: उसका रीजन ये है, जैसे मैंने अभी बताया, बैरोमेट्रिक प्रेशर कम हो जाता है तो उससे हमारे ब्लड की ब्रेन वेसल्स थोड़ी फूलती हैं.
0: okay.
1: और जब भी ब्लड वेसल्स हमारी फूलती हैं तो माइग्रेन जैसे हेडेक्स बहुत कॉमन होते हैं. हेडेक्स बढ़ते हैं, एक तो थोड़ा सा क्योंकि लोगों को पसीना भी आता है, स्वेटिंग होती है ह्यूमिडिटी के कारण, उसके कारण भी, टेम्परेचर चेंजेस के कारण भी, एंड एसी थोड़ा कम सहारा जाता है इस मौसम में. तो वो जो इंक्रीज्ड टेम्परेचर सेंसिटिविटी हो जाती है उसके कारण भी थोड़ा माइग्रेन्स की बढ़ जाती है तादाद.
0: मतलब बेसिकली टेम्परेचर चेंज होने से ज्यादा डिफरेंस होता है कि बाहर एकदम से ठंडा हो जाता है फिर एकदम से ह्यूमिडिटी हो जाएगी.
1: Exactly.
0: जैसे कभी तो 3-4 दिन लगातार इतनी बारिश रहेगी फिर अचानक से धूप आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम दे जाता है ज्यादा. तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग माइग्रेन से परेशान होते हैं. अब माइग्रेन का सोल्यूशन ज्यादातर लोगों के पास होता नहीं है, आपके पास कुछ दवाइयां हैं, लेकिन जब माइग्रेन शुरू होता है तो 2 से 3 दिन परेशान करता है. तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या बेसिक दवाइयां लेके रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बार ऑफिस भी नहीं छोड़ा जा सकता.
1: बिल्कुल, माइग्रेन्स का सबसे पहले नेचुरल ट्रीटमेंट बताऊंगी जो रेनी सीजन में अप्लाई होता है, क्योंकि बहुत ह्यूमिड होता है और स्वेटिंग होती है लेकिन टेम्परेचर इतना ड्रॉप डाउन होता है कि प्यास नहीं लगती है. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम वॉलंटरीली प्रैक्टिस करें कि हम बार बार पानी पिए,
0: हर घंटे में एक ग्लास पानी.
1: इवन मतलब अगर हमें प्यास नहीं भी लगी है तो भी हमें थोड़ा सिप्स ऑफ वाटर लेनी चाहिए फ्रिक्वेंटली. तो मेंटेनिंग द हाइड्रेशन इज द की टू प्रिवेंटिंग माइग्रेन्स.
0: ओके,
1: तो एक तो हाइड्रेशन, दूसरी चीज सडन टेम्परेचर चेंजेस, सडन टेम्परेचर शिफ्ट को प्रिवेंट करना है. जैसे अगर आप एसी रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले एसी को थोड़ी देर बंद कर लें, 10 मिनट तक टेम्परेचर थोड़ा ठीक होने दे रूम का, एंड देन यू गेट आउट. सिमिलरली जब आपको अंदर आना है तो एकदम से आके एसी ना चलाएं, थोड़ा सा पहले टेम्परेचर में अडेप्ट हो जाएं, एंड देन बहुत धीरे से वो करके या मॉइस्चर वाले उस पर सेटिंग पर एसी चला के देन यू कैन अडेप्ट टू द टेम्परेचर. तीसरा, डेफिनेटली माइग्रेन की मेडिसिंस बहुत कामयाब मेडिसिंस हैं. इसमें प्रिवेंटिव मेडिसिंस और अबॉर्टिव मेडिसिंस होती हैं. अगर हम प्रिवेंटिव मेडिसिंस लेंगे और रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो आइडियली माइग्रेन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही कम रहती हैं.
0: ओके,
1: पेन किलर्स की खपत हम बहुत ज़्यादा एडवाइज नहीं करते हैं, रीजन बीइंग उससे किडनी डैमेज और गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है. बट येस, वंस इन अ वाइल अगर आपको पेन है तो आप पेन किलर्स भी ले सकते हैं.
0: ओके, यानी बीच बीच में पेन किलर्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है.
1: जी,
0: सो माइग्रेन पेशेंट्स को थोड़ा सा ध्यान अपना रखना है. पानी की कमी बॉडी में कोई भी व्यक्ति अगर होने देगा तो इस मौसम में ज़्यादा दिक्कत रहेगी. हमने अक्सर बारिश में देखा है कि मौसम बाहर ठंडा होता है, ह्यूमिडिटी होती है और हमें वीकनेस फील होने लग जाती है. बहुत सारी लेडीज़ को अक्सर किचन में काम करते हुए बहुत ज़्यादा थकावट होती है, क्योंकि एक तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, दूसरा पानी भी कम पी रहे होते हैं. सो इस मौसम में पानी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. बहुत सारी और भी चीजें जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ. और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको डॉक्टर दिव्या गोयल के साथ ये सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी, जिसको आप कभी भी किसी के साथ भी शेयर कीजिए. बहुत सब बातें और भी, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत सी बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में, और मानसून के सीजन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे बढ़ जाती हैं और ये प्रॉब्लम्स कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं या इसका सोल्यूशन क्या है, इस टॉपिक पर आज हम बात करें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर दिव्या गोयल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर दिव्या, अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, वो है डेंगू और मलेरिया। अब डेंगू और मलेरिया के बारे में हम इतनी बातें सुनते हैं, एडवाइस होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो घर घर जाकर चेक भी करता है। अब ये एक अपने आप में गंभीर समस्या है जो कि जानलेवा साबित होती है, बट क्या इसका कोई कनेक्शन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी है? क्या इससे भी कोई और दिक्कत आ सकती है, बढ़ सकती है ये?
1: जी बिल्कुल, स्पेशली अगर हम मलेरिया का जिक्र करें तो मलेरिया एनोफिलीस मस्कीटो से स्प्रेड होता है, जो कि वाटर जहाँ पे भी लॉक्ड होगा वहाँ पे ब्रीड करते हैं।
0: जी,
1: तो जब वो RBCs को इन्फेक्ट करते हैं, अंदर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाते हैं, और ब्रेन में जाने के बाद दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ इन्फेक्शियस प्रोसेस इन द ब्रेन इटसेल्फ। इसको सेरिब्रल मलेरिया कहा जाता है, यानी दिमाग का मलेरिया। अब दिमागी मलेरिया जानलेवा भी होता है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि स्पेशली हेडेक्स से शुरू होके और कोमा तक प्रोसीड करते हैं। तो हेडेक्स, सीजर्स, कन्फ्यूजनल स्टेटस, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, बॉडी एक्स, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होना, 103, 104, 105 तक भी पहुंच जाता है, एंड फाइनली कोमा।
0: ओके,
1: तो कभी कभी जैसे मैंने बताया कि पेशेंट वेंटिलेट भी होता है, और इनफैक्ट कभी कभी दे आर डिफिकल्ट टू सेव अगर बहुत लेट हो जाए तो वो सारा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि RBCs कितने इन्फेक्ट हुए हैं और ब्रीडिंग कितनी हो चुकी है बॉडी के अंदर। तो जितना जल्दी हम इंटरवीन करेंगे उतना जल्दी हम पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं।
0: तभी शायद बारिश के मौसम में जब फीवर 2-3 दिन नहीं उतरता तो फटाफट से टेस्ट कराए जाते हैं कि डेंगू मलेरिया सबसे पहले टेस्ट करें अगर सिम्टम्स यही हैं तो। तो यानी मलेरिया के केस में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद जानलेवा साबित होती है।
1: बिल्कुल,
0: अब चिकनगुनिया में या डेंगू में भी ऐसा कुछ हो सकता है?
1: जी बिल्कुल, डेंगू स्पेशली कभी कभी डेंगू इंसेफेलाइटिस हो जाती है। तो डेंगू इंसेफेलाइटिस का मतलब है डेंगू वायरस का ब्रेन की झिल्लियों को इन्फेक्ट कर देना। ब्रेन के ऊपर 3 झिल्लियां होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, अगर वो इन्फेक्ट हो जाएं तो उससे मेनिंगो इंसेफेलाइटिस नाम की प्रोसेस हो जाती है। वो एक इन्फेक्शन होती है जो बहुत तेजी से ब्रेन में स्प्रेड करती है, ब्रेन की नलियों को ब्लॉक कर देती है, और ब्रेन का जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा उसमें भी सीजर्स, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, कन्फ्यूजनल स्टेटस, हेडेक्स, कोमा, डिहाइड्रेशन, ये सब कुछ हो सकता है,
0: सारी चीजें वैसे।
1: और सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन जो डेंगू में होती है और चिकनगुनिया में होती है वो है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ब्रेन हेमरेज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है।
0: बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है डेंगू में, खासतौर पर से ब्रेन हेमरेज के केसेस हमने सुने हैं कि अचानक से सब कुछ ठीक था लेकिन प्लेटलेट्स एकदम से फॉल करने शुरू हो गए और ब्रेन हेमरेज हो गया। यानी ये जो प्रॉब्लम्स जिनकी हम बात करें कि मच्छरों से होती है, बहुत कॉमन सी है और इसको लेकर मेडिकेशन भी अवेलेबल है, अगर टाइम पर इसे डिटेक्ट नहीं किया जाता तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना पेशेंट का। डॉक्टर दिव्या, थोड़ी सी बात अब और करना चाहेंगे दिमागी बुखार के बारे में। मेनिनजाइटिस या फिर एंसेफेलाइटिस, ये दो ऐसे शब्द हैं जो आम इंसान को नहीं पता होते, लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या आपके घर में बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आपने लिस्ट देखी है तो इसकी वैक्सीन अब आने लगी है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या इनका मानसून से कोई कनेक्शन है, या फिर क्या इसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं?
1: टेक्निकली स्पीकिंग मेनिनजाइटिस ब्रेन की झिल्लियों की इन्फेक्शन है, एंसेफेलाइटिस भी वही है, लेकिन मेनिनजाइटिस प्लस ऑल्टर्ड सेंसोरियम उसको एंसेफेलाइटिस बोल देते हैं। मेनिनजाइटिस में ज़्यादातर इंसान होश में रहता है, लेकिन उसी इन्फेक्शन में अगर दौरे पड़ने लग जाए, ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाए, पेशेंट कोमा में जाना शुरू हो जाए तो वो एंसेफेलाइटिस कहलाती है। तो बहुत सारी बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंगस इन्फेक्शन से, देन ये माइकोबैक्टीरियल यानी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन से, ये सारी इंसेफेलाइटिस और मेनिनजाइटिस की बीमारियां जुड़ी हैं, जिसमें से रेनी सीजन्स में सबसे कॉमन वायरल इंसेफेलाइटिस और जापानीज इंसेफेलाइटिस है। तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस इंडिया के कुछ खास एंडेमिक एरियाज हैं इसके लिए, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मेघालय, हाँ। इधर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये साउथ में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये एंडेमिक जोन्स हैं इसके, क्योंकि वहाँ पर इसका जो वो मस्कीटो है, क्यूलेक्स मस्कीटो, वो पनपता है, तो रेनी सीजन्स में सबसे ज़्यादा उसका ब्रीडिंग होती है। और जैपनीज इंसेफेलाइटिस इसलिए ड्रेडेड है क्योंकि ये ब्रेन में बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्रेन को इन्फेक्ट करती है, उसको बेजल गैंग्लिया रीजन कहते हैं, डायरेक्टली वहाँ पे इन्फेक्ट करती है, और उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो काफ़ी केसेस में इररिवर्सिबल होते हैं।
0: ओके,
1: इनफैक्ट अप टू 50% ऑफ पेशेंट्स ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस सफर विद अ परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज इवन आफ्टर द क्योर ऑफ द डिजीज।
0: ओके,
1: तो प्रॉब्लम ये है कि मॉर्बिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस की आजकल वैक्सीन भी उपलब्ध है, तो इससे पहले कि इसका आप शिकार बने, इससे बेटर है कि पहले ही बच्चों में वैक्सीनेशन करवा के।
0: जी जी बिल्कुल, और गवर्नमेंट भी इसको काफी प्रमोट कर रही है, क्योंकि कुछ समय पहले कुछ ऐसे केसेस आए थे, बहुत हाईलाइट हुए थे, बच्चों को लेकर काफी सतर्क रहना जरूरी है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप उसे एक्चुअली में सेफ रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आप डॉक्टर से जाकर दिमागी बुखार की वैक्सीन बोलेंगे तो वो आपको समझा देंगे और बच्चे को वो वैक्सीन दी जाएगी। बहुत सी और भी बातें जानेंगे लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हैवी हो जाता है कई बार, तो बीच बीच में एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: Feel good, feel live. Radio One of Rachna 107.8 FM. Program All Is Well. हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में. बारिश का मौसम लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन अपने साथ साथ ये लेकर आता है बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हम आपसी झेलते रहते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरीके की चीज़ें. लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं तो ये दिमाग पर भी असर डालती हैं. कई लोगों को माइग्रेन की शिकायत बढ़ जाती है, कई लोगों को दिमागी बुखार जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं. तो कहने का तात्पर्य यह है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बढ़ने से पहले अगर आप समझ लें तो आप सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट करवा पाएंगे. हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर दिव्या गोयल. डॉक्टर दिव्या, अब बात करते हैं बेसिक हेडेक की. जो मानसून के सीज़न में आपने कहा माइग्रेन हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को माइग्रेन अगर नहीं है, क्या उनको तब भी मानसून में ज़्यादा हेडेक हो सकता है? और अगर हेडेक हो रहा है तो कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, हो सकता है. हेडेक्स सिर्फ माइग्रेनस नहीं होते, बहुत सारे ऐसे हेडेक्स हैं जो कि सिर्फ टेम्परेचर चेंजेस से होते हैं या दिमागी बुखार में पहला सिम्टम हेडेक हो सकता है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में पहला सिम्टम हेडेक हो सकता है, जो कि ये सारी चीज़ें मानसून में ज़्यादा होती हैं. तो अगर आपका हेडेक परसिस्टेंट है और पूरे सर को इन्वॉल्व किए हुए है, पॉस्चर से चेंज कर रहा है, जैसे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो बढ़ रहा है, और उसके साथ वॉमिटिंग्स आ रही हैं, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं कि आपको डॉक्टर की मदद चाहिए.
0: ओके, यानी खुद इलाज ना करें कि ठीक है भाई थोड़ा सा कुछ ले लिया, जैसे बहुत सारे लोग नींबू पानी पी लेते हैं या अजवाइन ले लेते हैं कि ठीक हो जाएगा ये घरेलू नुस्खे करके, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहिए. वो भी आप करिए बट एटलीस्ट डॉक्टर से मिलिए.
1: जी
0: डॉक्टर दिव्या, बात करते हैं स्ट्रोक की. अक्सर हमने देखा है कि मौसम बदलने के साथ सर्दियों में स्ट्रोक की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट सर्दियों में शो ज़रूर करती हैं क्योंकि लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जाए. क्या मानसून में भी स्ट्रोक का खतरा उतना ही बढ़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा तो डाउन होता है?
1: मॉनसून में एग्जैक्टली स्ट्रोक की स्टैटिस्टिक्स ये साबित नहीं करती कि स्ट्रोक्स बढ़ते हैं. हाँ, इतना ज़रूर पॉइंट आउट करूंगी कि ये जो इन्फेक्शंस हैं, मेनिनजाइटिस और एनसेफेलाइटिस जैसे इन्फेक्शंस, अगर इसमें बहुत थिक पस एग्जुडेट्स ब्रेन में बन जाएं, तो वो पस जो है वो नलियों को ब्लॉक कर देती है और स्ट्रोक्स हो सकते हैं. तो इट कैन अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन टू मेनिनजाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस बट नॉट एज अ डायरेक्ट प्रोसेस. तो स्ट्रोक्स हाँ बढ़ सकते हैं बट मेनिनजाइटिस एनसेफेलाइटिस में. बट इसके अलावा पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि ये इन्फेक्शंस के कारण एक पोस्ट इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको गुलियन-बारे सिंड्रोम बोलते हैं. ये एक नसों की पैरालिसिस है जिसमें हमारी अपनी जो इम्यूनिटी है वो हमारी ही नसों पर अटैक कर देती है. तो दिस इज एन ऑटो इम्यून प्रोसेस. तो ये गुलियन-बारे सिंड्रोम इन्फेक्शंस के बाद होता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड गट इन्फेक्शंस. जैसे किसी को दस्त लगे हैं या फिर खांसी जुकाम हुआ है तो उसके लगभग एक दो हफ्ते के अंतराल में गुलियन-बारे सिंड्रोम जैसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी, प्रिडिक्ट भी नहीं की थी. होता क्या है कि उन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी ओवर एक्टिव होती है, एंटीबॉडीज बनाती है. एंटीबॉडीज नॉर्मली सुरक्षा के लिए होती हैं, लेकिन अगर वही एंटीबॉडीज हमारी दुश्मन बन जाएं और हमारी अपनी नसों पर ही अटैक कर दें तो दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, और उसका प्रभाव होता है पैरालिसिस ऑफ द नर्व्स. इस प्रोसेस को कहते हैं गुलियन-बारे सिंड्रोम.
0: ओके, यानी ये पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है.
1: बिल्कुल, दिस इज अ ड्रेडेड डिजीज, अ फैटल डिजीज. इसमें मॉर्टेलिटी रेट्स हाई होते हैं अगर इसमें ट्रीटमेंट सही वक्त पे ना दी जाए.
0: इसके सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या है अगर कोई पेशेंट ऐसा कुछ महसूस करता है तो?
1: ये बेसिकली ना एक तरह की असेंडिंग पैरालिसिस होती है. असेंडिंग पैरालिसिस मतलब नीचे से ऊपर चढ़ने वाली वीकनेस. यानी इंसान को पहले पैरों में वीकनेस आएगी, उसके बाद टांगों में आएगी, उसके बाद उसको बाजुओं में फील होगी, और फाइनली उसको सांस लेने में तंगी होने लग जाती है. कभी कभी गले की पैरालिसिस के कारण वो चीजें निगलना भी बंद कर देता है. तो ये असेंडिंग पैरालिसिस लगभग दो दिनों में पूरी हो जाती है, मतलब अच्छा, इतनी तेजी से स्प्रेड करती है. तो अगर हमारा सांस वाला जो सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व हो जाए तो पेशेंट को डायरेक्टली वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है. तो अगर पेशेंट उसको इन्फेक्ट होने से पहले पहुंच जाए, यानी हाथ पैर की पैरालिसिस तक ही पहुंच जाए, तो IVIG नामक ड्रग से वो वहीं पे कंट्रोल कर ली जाती है. बट अगर ये भी इन्वॉल्व हो जाए तो वेंटिलेशन पे कई दिन पेशेंट को रखना पड़ता है,
0: और ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ सकती है. तो डॉक्टर दिव्या, इसमें कितना विंडो होता है एक पेशेंट के पास कि जल्दी से जल्दी, मतलब कब तक वो ऐसा महसूस करें कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना ही है, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाना ही है?
1: देखिए, आइडियली एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी सिम्टम आपको सडन या एक्यूट ऑनसेट यानी बहुत तेजी से आगे आया है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ या तो आपके टांगों में या हाथों में सुन्नपना आया है, और या फिर टांगों हाथों में वीकनेस आई है, आप उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, या पैर से आप चल नहीं पा रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं, और ये एकदम से आया है, अनइनवाइटेड आया है, तो दिस इज ऑलवेज अ रेड फ्लैग. आप वेट मत कीजिए बीमारी का बढ़ने का, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए.
0: जी,
1: एक चीज होती है कि आप आलती पालती मार के बैठे, इसलिए आपका पैर सो गया है,
0: आपका पोस्चर है,
1: आपकी नस दब गई है, क्योंकि आप बैठे ही ऐसे थे, तब समझ आती है कि ठीक है वो थोड़ी देर में सर्कुलेशन वापस आ जाएगी. बट अगर आप नॉर्मल बैठे हैं, जैसे मैं बैठी हूँ कुर्सी पर, ऐसे बैठे हैं, और फिर भी आपकी टांग में सुनपना आ रहा है, हाथ में सुनपना आ रहा है, तो दिस इज एन अनप्रोवोक्ड केस ऑफ वीकनेस, इसमें तुरंत आपको जाना है.
0: जी, यानी आप एक दो घंटे तक महसूस करें कि ये प्रॉब्लम है और वैसी की वैसी ये ठीक नहीं हो रही है, उल्टा बढ़ रही है, तो फिर वेट नहीं करना चाहिए. सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आप ही की हेल्थ के बारे में, लेकिन इन सब पर रिएक्ट करना या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे बढ़कर अगर ट्रीट ना की जाए समय पर तो जानलेवा साबित होती हैं. बहुत सी बातें और भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे खुद को फिट रख सकते हैं और कैसे बच्चों और बुजुर्गों को फिट रखना चाहिए इस मौसम में, या उनको कुछ अलग से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिनसे हमें बचा कर रखना है, ये बात करेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल और आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून में होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर दिव्या गोयल, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर दिव्या, इन्फेक्शंस की हम बात करें हैं, ब्रेन में होने वाले इन्फेक्शंस की हम बात करें हैं, तो बच्चों का अक्सर लोग बारिश में बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे ख्याल रखने नहीं देते हैं। सो क्या बच्चों और बुजुर्गों की भी मैं बात करना चाहूँगी, उनको भी ये न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस अफेक्ट कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल दीक्षा, जो बच्चे हैं उनमें एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन होती है।
0: okay.
1: तो इसमें एक टेपवॉर्म नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, बड़ा सा एक पैरासाइट होता है जो कि सॉयल्स में बेसिकली रहता है और उसका कंटेमिनेटेड वाटर में बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हो जाती है शुरू। तो रेनी सीजन्स आर अ परफेक्ट टेम्परेचर सेटिंग फॉर दैट ऑर्गेनिज्म टू ब्रीड। तो वो ब्रीड करते हैं और डायरेक्टली खाने में कंटेमिनेटेड वाटर में, स्पेशली कैबेज की सब्जी में, पोर्क में यानी पिग के मीट में, ये चीज़ें बहुत ईजिली पनपती हैं। और वो जब हम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ वेजिटेबल्स या फिर नॉट प्रॉपरली कुक्ड पोर्क, तो वो हमारे इंटेस्टिन में जाता है और वहां से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में इन्फेक्शन करता है। और इसमें होता क्या है कि वो सिस्ट बना देता है, लार्वे होते हैं और जो ब्रीड करके वहां पे सिस्ट बना देते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में एक गांठ सी बन जाती है जिसके कारण दौरे उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों में ये बीमारी

0: बहुत ही कॉमन है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान जैसे रीजन्स में तो बहुत ज्यादा.
1: ओके.
0: तो क्योंकि यहाँ का सॉयल कंड्यूसिव है फॉर द ग्रोथ ऑफ टेपवर्म्स.
1: ओके.
0: तो दौरे आते हैं, कई तरह के दौरे आते हैं, फोकल सीजर यानी एक हिस्से को इन्वॉल्व करने वाले या पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करने वाले, बट हाईली ट्रीटेबल है. अगर आप मतलब पहले दौरे में ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लो तो उस स्टेज में ये बिल्कुल फ्रेश स्टेज में ब्रेन में पनप रहा होता है, और अगर हम एंटी पैरासिटिक ड्रग देंगे जिसका 14 से लेके 21 दिन का कोर्स होता है तो वो पूरी तरह वहाँ पे
1: खत्म
0: हो जाता है.
1: और ये मैंने देखा है कि अक्सर लोग बारिश में सलाह देते हैं कि आप पत्ते वाली सब्जियां अवॉइड करें, स्पेशली पत्ता गोभी के बारे में, जैसे आपने कैबेज के बारे में कहा. इसके बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के दिमाग में कि नहीं खाना चाहिए, बहुत लोगों ने खाना ही छोड़ दिया है इसको. सो क्या कोई तरीका है जिससे इससे बचा जा सकता है अगर आप पत्ता गोभी खा भी रहे हैं, बिकॉज इसमें फाइबर बहुत होता है तो बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं.
0: जी, एक्चुअली द ओनली प्रॉब्लम इज जब आप इसको रॉ खाएं, एज अ सैलड खाएं. अगर आप कुक कर रहे हैं तो कोई भी पैरासाइट ऐसा नहीं है जो उसमें लाइव रहे.
1: ओके.
0: क्योंकि वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता.
1: बहुत सारे हमने ये वीडियोस भी देखे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं ये कीड़ा मरता नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए दिखता भी नहीं है.
0: नहीं, ये कुकिंग से तो ये प्रॉपरली दिस इज
1: खत्म हो जाए.
0: जैसे मैंने कहा था कि अनकुक्ड वेजिटेबल्स या फिर हाफ कुक्ड पोक जो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, तो उसी में ये कीड़ा पनपता है. अगर प्रॉपरली आपने कुक कर लिया है या माइक्रोवेव कर लिया है तो इसका इट कैन नॉट नरिश, इट कैन नॉट फ्लरिश. लेकिन अगर दूसरी तरह आप खाना चाहते हैं, रॉ में खाना चाहते हैं, सैलेड वाइज आप कैबेज की सब्जी खाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर एक लीफ को अलग अलग करके आपको बहुत अच्छे से उसको रनिंग वाटर के अंडर वॉश करना होता है. सोप की जरूरत नहीं होती है, बस रनिंग वाटर शुड बी देयर, और हर एक लीफ अलग अलग करके आपको धोना है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर रॉ खाना है तो. लेटस का भी सेम ही है, लेटस भी ऐसे ही होता है कैबेज जैसे ही, तो उसमें भी आपको हर एक लीफ अलग अलग
1: करके उसको
0: वॉश करना है रनिंग वाटर.
1: सो आई वुड सजेस्ट कि मॉनसून में अगर ये चीजें अवॉइड करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा. जैसे चाइनीज खाने में ये बहुत डली होती है पर कुक हो जाती है तो एटलीस्ट आप बच सकते हैं. डॉक्टर दिव्या, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं और बहुत सारी बातों से उम्मीद है कि लोगों को समझ आया होगा कि मॉनसून में कैसे खुद को सेफ रखना है. लेकिन अब मैं चलते चलते आपसे जानना चाहती हूँ, कोई 4-5 टिप्स आप ऐसी देना चाहें लोगों को जिससे वो मॉनसून में होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सकें.
0: जी, मॉनसून का सीजन अपार्ट फ्रॉम एंजॉयिंग इट, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, पहली बात कि आपको रेन वाटर में बाहर नंगे पैर या बिना जूतों के नहीं जाना है.
1: okay.
0: क्योंकि बहुत सारे जो कीटाणु हैं वो पैरों के थ्रू ही जाते हैं. दूसरी चीज, आपको हाई ह्यूमिडिटी में, क्योंकि स्वेटिंग होती है और प्यास उतनी नहीं लगती, तो आपने पानी टाइम टू टाइम पीते रहना है, अपनी प्यास के लिए वेट नहीं करना, आपने लगभग हर 2 घंटे में 1 ग्लास पानी पीने की कोशिश करनी है. तीसरी चीज, हैंड वॉशिंग. ये मैं ओवर स्पेसिफाई नहीं कर सकती, हैंड वॉशिंग इज द ओल्डेस्ट मेथड जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है. तो कोई भी इन्फेक्शन है और वो अगर हमारे ओरल कैविटी से जा रही है तो सबसे पहले हाथ उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अच्छे से हैंड वॉश कीजिए, बच्चों में कल्चर बनाइए हैंड वॉश का, कि वो कोई भी चीज टच करने से पहले, खाने से पहले अपना हैंड वॉश करें. देन बैरोमेट्रिक प्रेशर जैसे लो हो जाता है तो उसमें माइग्रेन्स और जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए वही है कि सडन चेंजेस ऑफ, सडन शिफ्ट्स ऑफ टेम्परेचर आपको अवॉइड करने हैं. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक एसी रूम से बाहर निकलना या बाहर से एसी रूम में जाना, उसमें आपको थोड़ा सा स्लो कन्वर्जन, स्लो ट्रांजिशन चाहिए.
1: ओके.
0: तो एसी पहले ही बंद करें, 10 मिनट रुकें फिर बाहर जाएं, सो दैट आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाए.
1: जी,
0: तो दीज आर अ फ्यू टिप्स जो हम मॉनसून में अप्लाई.
1: बिल्कुल, यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी नहीं है. आप डेली रोज़मर्रा के जीवन में ये ऐसी चीज़ें समझते भी हैं पर कई बार गलती से छूट जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा फॉलो किए और अपने आप को हर मौसम में एकदम हेल्दी रखिए. बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और अब टाइम है आपसे इजाज़त देने का. अगले हफ्ते

0: यार हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा, जहां हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया के एक बेहद प्रतिभाशाली और प्रॉमिसिंग यंग सितार मेस्ट्रो अधिराज चौधरी जी। अधिराज ने मात्र 6 वर्ष की आयु में सितार की साधना शुरू की और आज अपनी मेहनत, डेडिकेशन और एक्सेप्शनल टैलेंट के दम पर देश विदेश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। ये प्रसिद्ध जयपुर सेनिया घराना से जुड़े हैं और 17 फ्रेट सितार की दुर्लभ परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और संगीत तो मानो इन्हें विरासत में ही मिला है, क्योंकि ये महान सितार वादक पंडित देबू चौधरी जी के ग्रैंडसन हैं और पंडित प्रतीक चौधरी जी के सुपुत्र हैं। वर्तमान में ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विदुषी श्रीमती अनुपम महाजन जी, श्री नील रंजन मुखर्जी तथा इंटरनेशनली एक्लेम सितार मेस्ट्रो एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी पंडित नीलाद्री कुमार जी के मार्गदर्शन में सितार की गहन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें CCRT स्कॉलरशिप, MS सुबुलक्ष्मणी फेलोशिप, कला उत्सव में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां और G20 समिट जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर प्रस्तुतियां और लगातार मिल रही सफलताएं इन्हें युवा पीढ़ी के सबसे प्रेरणादायक कलाकारों में शामिल करती हैं। और अपनी साधना, अनुशासन और संगीत के प्रति समर्पण के साथ अधिराज भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अधिराज की इंस्पायरिंग म्यूजिकल जर्नी, रियाज और इनके गुरुओं से मिली सीख और इनके सपनों और संगीत के प्रति इनके जुनून के बारे में। अधिराज जी, सबसे पहले क्रिएटिव मंच में आपका हार्दिक स्वागत है और संगीत से आपका पहला परिचय कैसे हुआ इस बारे में हमें बताइए।
1: थैंक यू सो मच। संगीत से मेरा पहला परिचय ऐसा ही हुआ कि मैं जब बहुत ही छोटी उम्र से मैं संगीत के ही माहौल में पला बड़ा हूँ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी क्लासेस लेते थे, वह सितार वादक थे, तो फिर वही मैं सितार के माहौल में पला बड़ा हूँ। तो मैं बचपन से ही म्यूजिक सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे इसीलिए म्यूजिक बहुत पसंद आने लग गया बचपन से। और उनके स्टूडेंट्स जब क्लास के लिए आते थे, मैं वहाँ भी बैठता था, मैं सबको सुनता था और मुझे

0: और इसीलिए तो मुझे म्यूज़िक, मेरे दादाजी और पिताजी मतलब सब ने सोचा कि मुझे भी म्यूज़िक में कुछ करना
1: सिखाना चाहिए।
0: तो और वो सितार वादक थे तो उन्होंने मुझे शुरू करवाया सितार से
1: जी।
0: और फिर मुझे सितार, मैंने जैसे ही शुरू किया मुझे सितार इतना पसंद आया कि मैं बस सितार ही करना चाहता था। बस मैंने यही सोचा कि मैं अब सितार ही बजाऊँगा। और मुझे तो मुझे उसी उम्र से सितार बहुत पसंद आने लग गया, तो मुझे उन्होंने फिर सिखाना शुरू करा, तो ऐसे ही करके मेरी रुचि बढ़ी म्यूजिक में और सितार की तरफ, इसलिए इस उम्र में मैंने सितार बजाना शुरू करा था।
1: जी जी जी। और अभी इस टाइम आपकी कितनी एज है?
0: जी इस टाइम मैं 17 साल का हूँ।
1: वाओ, मतलब 6 से बहुत साल हो गए आपको स्टार्ट किया, आपका पूरा अभी तक की लाइफ सितार बजा रहे हैं आप और फुल ऑन इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि आप अपने बहुत स्टेज शोज भी करते हैं हमने देखा। सो एक चीज बताइए, आपका कभी वोकल में भी ध्यान गया या इंस्ट्रूमेंट के प्रति ही रुचि थी?
0: जी मुझे वोकल भी बहुत पसंद है पर इंस्ट्रूमेंट के प्रति मेरी रुचि ज्यादा है क्योंकि मैंने सितार ही सीखा है, तो जो चीज मैंने सीखी है उसके प्रति मुझे सुनना, मुझे सभी चीजें सुननी बहुत अच्छी लगती है पर सितार के लिए मेरी एक अलग ही डेडिकेशन है, मुझे सितार बहुत ज्यादा पसंद आता है।
1: अच्छा, तो जैसे हमने देखा है कि गिटार जब सीखते हैं तो उंगलियां काफी मतलब फिंगर पे लगती है और कहते हैं छिल भी जाता है, तो आपने सितार तो मुझे लगता है और टफ है, तो किस तरीके से आपको भी कभी ऐसा होता था कि बहुत प्रैक्टिस करने से आपकी फिंगर्स ऐसे छिल गई है या कुछ चोट लग गई हो?
0: जी वैसे तो सितार अगर आपको बजाने तो उंगलियां छिलनी है, आई थिंक कंपलसरी है, जरूरी
1: अच्छा।
0: है ये उंगली, अगर आपकी उंगली छिलेगी नहीं तो सितार आप बजा नहीं सकते क्योंकि
1: अच्छा।
0: वो उंगलियों में कैलसेस जो होते हैं, लाइंस जो होते हैं जो हम इसको बोलते हैं, वो सितार बजाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और शुरुआत में तो किसी को भी दर्द होगा अगर बजाएंगे, जैसे आपने कहा गिटार जो लोग बजाते हैं उनकी उंगलियां इतनी छिलती है, लेकिन सितार में दो ही उंगली का प्रेशर पड़ता है और तार स्ट्रिंग ज्यादा हार्ड होता है बेसिकली, तो सितार में और ज्यादा डीप छिलती उंगली, छिलती नहीं है बट डीप लाइन पड़ जाते हैं एंड शुरुआत में दर्द बहुत होता है, सो इसीलिए सितार काफी डिफिकल्ट है शुरू करना और बजाना भी बाद में, तो शुरुआत में भी काफी दर्द होता है बट इसको कंटिन्यू अगर करते जाओगे तो दर्द भी कम होता जाएगा और लाइन को मेंटेन करना पड़ता है, तो बजाने के लिए लाइन जरूरी है, कैलसेस जरूरी है उंगली में मेरे हिसाब जी।
1: मतलब आपके अकॉर्डिंग, और मेरे ख्याल से गुरुओं का भी यही मानना है
0: जी,
1: ना?
0: जी गुरुओं का भी यही मानना है
1: जी जी,
0: क्योंकि लाइंस के बिना सितार बजाना बहुत मुश्किल है और उसमें फिर दर्द भी बहुत होगा तो जी।
1: और अधिराज, जैसे चलिए आपने तो 6 वर्ष की आयु से सितार हाथ में लिया आपने और आपके दादाजी थे आपके गुरु रहे, आपके पिताजी आपके गुरु रहे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जनरल जैसे कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहे, अपने किसी बच्चे को सिखाना चाहे, तो क्या एज होनी चाहिए? मतलब आपके तो घर का माहौल चलिए हम कह सकते हैं कि वही था बचपन से, तो बट अगर किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है तो क्या 6 वर्ष में पॉसिबल है?
0: जी वैसे तो सीखने की कोई एज नहीं है
1: जी,
0: आप जब चाहो जिस एज में चाहो आप सब सीख सकते हो, सीख अगर डेडिकेशन है तो सब पॉसिबल है, पर अगर एक स्टार्टिंग में अगर एक कम वर्ष की आयु से आप सीखते हो और अगर आपके घर में म्यूजिक का माहौल है तो एक एडवांटेज मिल जाता है पहले से ही कि आप अच्छे से सीख पाते हो बचपन से, पर मेरे हिसाब से सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए।
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल, मतलब कोई एज नहीं है आपके हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में सीखी हुई चीज बहुत अच्छे से हमें याद रहेगी इंस्टेड ऑफ के हम अगर 10th 11th 12th की एज में सीखे तो, है ना?
0: यस।
1: ओके, तो संगीत के क्षेत्र में आपके दादाजी और पिताजी दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं हमें पता है, तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का अनुभव कैसा है आपका?
0: जी तो अभी अभी तो मेरी एज उतनी ज़्यादा है नहीं कि मुझे अच्छे से अनुभव हुआ हो और मुझे ज़्यादा म्यूज़िक में मैंने मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट अभी तक जो मैंने अपने ट्रेडिशन को आगे ले जाने की कोशिश रखी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही अपने ट्रेडिशन को ले जाते रहूँ और काफ़ी बड़े बड़े मंचों पे परफॉर्म करूँ, अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाऊँ और अपने दादाजी और पिताजी का नाम रोशन करूँ आगे जाके। तो अभी तक मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और मैं आगे जाके और अच्छा करना चाहता हूँ।
1: जी अधिराज, और हमारे तो यही विशेष है कि आगे जाकर आप और भी सक्सेसफुल रहें। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त तो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। सो अभी तक अधिराज, हमने जाना कि आपने 6 वर्ष की आयु से सितार सीखना शुरू किया। आपके घर का माहौल था बहुत ही अच्छा, जिसके प्रति आपने अपना सितार बजाने की क्रिया को जारी रखा। अब हमें एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपका घराना है जयपुर सेनिया घराना, और गुरु शिष्य परंपरा, इन दो चीज़ों के बारे में हमें बताइए कि घराने एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जनरल जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उन्हें नहीं पता कि घराने क्या होते हैं और गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, तो थोड़ा इसके बारे में हमें समझाइए।
1: तो घराने बेसिकली होते हैं स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक, जैसे ट्रेडिशन होता है, जो लोग ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो घराने के लोग ही करते हैं। तो एक घराना बेसिकली एक स्कूल ऑफ म्यूज़िक हो गया
0: जी।
1: जैसे कि बहुत अकेडमिक्स में बहुत स्कूल, जैसे आपने पढ़े होंगे बहुत सब्जेक्ट्स में स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं साइकोलॉजी में, जैसे वैसे ही घराने भी स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक है। और हर घराने का अलग स्टाइल है म्यूज़िक अप्रोच करने का। कुछ घराने इंस्ट्रूमेंटल घराने होते हैं, सबसे पहले घराने वोकल घराने होते थे, उससे काफ़ी और घराने आए जो इंस्ट्रूमेंटल के घराने भी बने हैं। तो ऐसे ही कर करके बहुत घराने डेवलप हुए और सबका स्टाइल अलग होता है और यूनिक होता है। वैसे ही हमारा घराना है जयपुर सेनिया घराना, तो हमारे घराने की का हमारा घराना एक इंस्ट्रूमेंटल घराना है। तो उसका यूनिक स्टाइल ये है कि हमारे घराने में 17 पर्दे का सितार बजता है
0: जी,
1: 17 फेटेड सितार, और किसी घराने में नहीं है।
0: अच्छा।
1: हमारे घराने का यही यूनिक स्टाइल है 17 फेटेड सितार का, जो जनरेशन से पास होते आया है
0: जी।
1: हमारा घराना मसीद सेन जी से आता है, उस टाइम से लेके अभी तक ये जनरेशन में हमारा ट्रेडिशन पास होता गया है। तो ये हमारे घराने की खासियत है। और जी गुरु शिष्य परंपरा, उसमें जैसे मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे दादाजी और पिताजी से सीखने का मौका मिला, मेरे घर में ही म्यूज़िक का माहौल था, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट उस लिए। तो मैंने उनसे सीखा घर पे, तो मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं मानता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा म्यूज़िक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप म्यूज़िक करना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु के साथ रहना भी पड़ेगा, उनके साथ रहने के साथ साथ आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। म्यूज़िक के अलावा भी काफ़ी आप चीज़ें सीखते हैं लाइफ में, और म्यूज़िक भी आपका काफ़ी अच्छा होता है, आप जानते हैं चीज़ों को। तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है म्यूज़िक में मेरे लिए
0: जी। तो आपके जीवन में आपके गुरुओं की सबसे बड़ी सीख क्या है
1: जी? मेरे लिए मेरे गुरुओं की सबसे बड़ी सीख है सिंसेरिटी, ऑनेस्टी और डिवोशन। म्यूज़िक में सिंसियर रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है और ऑनेस्ट रहना है खुद से। कभी ऑनेस्ट ऑफकोर्स, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते।
0: बिल्कुल।
1: आपको अपना टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा म्यूज़िक अगर आपको करना है सीरियसली तो। और डिवोशन ऑफकोर्स, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो आपको उस फील्ड में अपने आपको पूरा डिवोट करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा
0: जी।
1: तो जी यही है,
0: मतलब तन मन धन से अपनी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रियाज भी करना है और एक सच्चाई के साथ
1: एंजॉय भी करना है, म्यूजिक को सुनना भी है।
0: हाँ, कहीं वो प्रेशर लेकर नहीं करना।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: म्यूजिक तो ऐसी चीज ही नहीं है कि प्रेशर लेकर किया जाए। बिल्कुल। तो आप कितने घंटे रियाज करते हैं
1: जी? वैसे मेरा फिक्स तो नहीं है, जब मुझे अभी मैंने 12th ख़त्म करा है।
0: अच्छा,
1: तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब रियाज कर लेता। मैं रोज़ रियाज करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है जी, बट कोशिश करता हूँ कि मैं और आगे अपने टाइम को बढ़ाऊँ रियाज में और मेहनत करूँ। तो जी यही मेरी कोशिश है
0: जी। तो आपने 12th में क्या स्ट्रीम थी आपके पास
1: जी? 12th में मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी।
0: ओके, तो साथ में अपना प्रैक्टिस का समय निकाल पाते थे अपने लिए स्कूल के साथ साथ?
1: जी जी, मैं निकाल पता
0: जैसे बोर्ड्स के एग्जाम है तो एक अलग प्रेशर होता है कि मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए।
1: वो तो होता है।
0: हाँ, तो उसी के चलते मैं बोल रही हूँ कि आप कितना समय दे पाते थे अपनी प्रैक्टिस को, रियाज को?
1: उसी के मैं तब शाम के आज में रियाज करा करता था, 7 बजे इस टाइम के अराउंड रियाज करता था
0: जी।
1: तो इस टाइम पे मैं कोशिश करता था रोज 1-1.5 घंटा निकाल लो रियाज के लिए। तो कोशिश होती थी, कभी कभी नहीं हो पाता था, बट मेरी कोशिश तो थी कि मैं रोज रियाज करूँ फिर भी
0: जी। जी जी, वैसे कोई भी अगर चीज़ है तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो वोकल है, डांस है या इंस्ट्रूमेंटल है, तो प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो जैसे सितार को ही आपने अपना वाद्य, मेन वाद्य जो चुना है, तो आपको कभी ऐसा ही लगा कि सितार की जगह कुछ और मुझे इंस्ट्रूमेंट चुनना चाहिए था? कभी वो चीज़ मन में नहीं आई आपके?
1: नहीं, ऐसी चीज़ मेरे मन में कभी भी नहीं आई, क्योंकि पहले से ही मैंने जब सितार सीखना शुरू करा था, सितार काफ़ी पसंद था और अब भी मुझे तब से यही लगता आया है कि मैंने सितार को चूज़ करके काफ़ी अच्छी चीज़ करी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एंड फादर ने मुझे सितार के बारे में बहुत सिखाया, सितार मुझे सिखाया उन्होंने, तो तब से लेके और हमेशा मुझे यही लगता रहेगा कि सितार मेरे लिए बेस्ट है। मुझे बाकी और इंस्ट्रूमेंट सीखने का बहुत मन है पर सितार ही मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट रहेगा, क्योंकि सितार की टोन बहुत पसंद आती है और सितार मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, हमें भी मतलब सुनने में बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ओके, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है धीराज के आपको थकान है या आपका मन नहीं कर रहा है, मतलब करना चाहते हैं प्रैक्टिस बट एक होता है ना कि अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा, कभी होता है ऐसा या कभी भी नहीं होता?
1: वैसे ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि जब मैं सितार बजाता हूँ, जब मैं रियाज करने जाता हूँ तो इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी, क्योंकि पूरा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थकान हो, दिन की थकान हो, काम कुछ भी हो जाए, जैसे स्कूल की थकान हुई करती थी पहले, तो कुछ भी दिन में हो जाए तो सितार जब मैं बजाने बैठता था और जब मैं अब भी बजाने बैठता हूँ इट फील्स लाइक थेरेपी फॉर मी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बजा के
0: जी।
1: और उसमें तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मोटिवेशन नहीं आ रही बजाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता है
0: जी।
1: उल्टा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बजाने के बाद, तो जी यही
0: मतलब एक फ्रेशनेस आती है,
1: फ्रेशनेस आ जाती है
0: जी जी जी। बिल्कुल। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त तो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है क्या?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। अधिराज, आपने आपकी जो उपलब्धियां हैं हमने बहुत सारी देखी, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर। आपने देश के कई बड़े मंचों पर प्रस्तुति दी है अपनी, तो कौन सा मंच आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों?
1: जी, मेरे दिल के सबसे करीब है यूमैक फेस्टिवल। जब भी होता है मुझे उसमें बजाने का मौका मिलता है, तो वह इंस्टीट्यूशन मेरे दादाजी का है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था पहले, तो यूमैक फेस्टिवल में मुझे बजाने का जब भी मौका मिलता है, हमेशा मौका मिलता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वह मंच मेरे मेरे दिल के बहुत करीब है।
0: जी। और यहाँ आपने अपने दादाजी की बात की, मैं चाहूँगी एक बार आप उनके बारे में और अपने पिताजी के बारे में अपने मुँह से खुद बताइए।
1: मेरे दादाजी एक गुरु से बढ़कर थे, वो मेंटर थे सबके लिए, उनके जितने भी स्टूडेंट्स आते थे सबको वो अच्छे से सिखाते थे, उनके लिए एक मेंटर थे। और जैसे उन्होंने उनको ज़िंदगी जीनी भी सिखाई और म्यूज़िक भी सिखाया, उन्होंने हमारे घराने के बारे में सबको सिखाया और सब सारी चीज़ें बताई जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और वो एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, और उनको जब भी वो अच्छा करते थे वो उनकी तारीफ नहीं करते थे, वो कहते थे और मेहनत करनी है हर बार में, ताकि वो और मेहनत कर सके स्टूडेंट्स। बट अंदर ही अंदर जब भी उनके स्टूडेंट्स अच्छा करते थे उनको भी अच्छा महसूस होता था, बट वो बताते नहीं थे। पर मेरे साथ मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे साथ कभी स्ट्रिक्ट नहीं थे वो, मुझे बहुत प्यार से सिखाते थे और मैंने ज़्यादा उन्हीं से सीखा है, अपने पिताजी से भी सीखा है पर मैंने दादाजी से ज़्यादा सीखा है। और मेरे पिताजी भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सिखाते थे, पिताजी का स्टाइल बहुत यूनिक था, उनका लयकारियों पे ज़्यादा ध्यान था, लयकारी और उनकी स्पेशलिटी थी लयकारी स्पीड, और उनका अलग ही स्टाइल था, उनका बहुत यूनिक स्टाइल था मेरे पिताजी का। और उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें सिखाई, तो जी सब ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे सबसे सीखने का मौका मिला।
0: जी लिसनर्स, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अधिराज से उनके दादाजी और उनके पिताजी के बारे में, मैं आपको बता दूं पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी जी अधिराज जी के दादाजी हैं और प्रतीक चौधरी जी इनके पिताजी, तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अधिराज को उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, उनसे इतनी चीज़ें सीखने का मौका मिला। अधिराज, आई थिंक आप बहुत ही लकी, मैं कहूँगी आपको, क्योंकि अगर शायद वो ना होते तो 6 साल की वर्ष में बच्चा क्या करता है कुछ हमें पता ही नहीं होता।
1: मैं आज जो हूँ, मतलब मैंने सितार की फील्ड में उन्हीं की वजह से आया।
0: जी जी जी बिल्कुल। तो अभी हमने आपके जो उपलब्धियों की बात की, अब एक है G20 समिट, तो इसमें किस तरीके से आप पहुंचे यहाँ पर, इसके बारे में बताइए हमें।
1: G20 समिट में मुझे इनविटेशन, जो वो स्टूडेंट्स को या म्यूजिशियंस को इनवाइट करते हैं, तो मुझे भी ऐसे इनवाइट करा था जी SNA के थ्रू, कि मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं G20 समिट में परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड आई फील दैट आई एम वेरी लकी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे G20 समिट में परफॉर्म करने का मौका मिला। एंड जी,
0: और आई थिंक वो बहुत ही बड़ा स्टेज,
1: बहुत बड़ा स्टेज था वहाँ पे, प्रेसिडेंट्स डिनर पे हमको परफॉर्म करने का मौका मिला और बहुत लोगों से मिला भी मैं, देश के अलग अलग जगह से लोग आए थे वहाँ पे, पूरे इंडिया के लोग थे और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत रेयर इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे थे वहाँ पे, तो मुझे बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला और मुझे बहुत नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिला, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी अच्छा था।
0: जी, और इतनी कम उम्र में आपको एक इतना बड़ा स्टेज मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। जी जी, अधिराज, जहां हमने आपकी उपलब्धियों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो साथ ही आपकी एक दो उपलब्धियां और बहुत ही अच्छी है, जैसे की CCRT स्कॉलरशिप और MS सुब्बुलक्ष्मणी फेलोशिप, ये दोनों मिलने के बाद आप कैसा आपने महसूस किया और क्या है इसके बारे में थोड़ा हमें एग्जैक्टली बताइए।
1: जी, जब मुझे स्कॉलरशिप और फेलोशिप अवार्ड मिला, तो फिर मुझे बहुत ऑनर्ड और गर्व फील हुआ कि एंड आई फेल्ट वेरी लकी टू गेट दीज अवार्ड्स। एंड CCRT में जब मेरा नाम रजिस्टर हुआ, तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था CCRT के बारे में, क्योंकि तब मैं काफ़ी छोटा था, जब मैं 2019 में था आई थिंक CCRT। एंड CCRT इज़ बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यंग आर्टिस्ट को मौका देती है परफॉर्म करने के लिए, सो वो हर साल या वो टाइम टू टाइम में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जहाँ पे वो यंग आर्टिस्ट को बुलाते हैं और साथ में परफॉर्म करवाते हैं, और म्यूजिशियन वहाँ पे सब कुछ होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है और भी चीजें होती है, थिएटर भी होता है.
0: अच्छा.
1: और वो बहुत एक्सपोजर भी देते हैं सब यंग आर्टिस्ट को और लोगों लोग के, और वो लोगों से मिल भी सकते हैं सब आर्टिस्ट.
0: मतलब यंग आर्टिस्ट के लिए बेसिकली ये है.
1: जी.
0: Nice, yeah, very nice.
1: मुझे फेलोशिप मिला था उसके लिए. आई एम वेरी ऑनर्ड बिकॉज फेलोशिप हर साल 50 स्टूडेंट्स को मिलता है, 50 म्यूजिक स्टूडेंट्स या म्यूजिशियंस को मिलता है फेलोशिप अवार्ड. और वहाँ पे भी सेम, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है. वहाँ पे बहुत इंडिया के बहुत बहुत जगहों से लोगों से मिलने का मौका मिलता है. जी.
0: नाइस. आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी उपलब्धियों की. हम आशा करते हैं ऐसे ही आप और नाम रोशन करिए. सो अब हम बात करते हैं अधिराज, युवा पीढ़ी और शास्त्रीय संगीत. तो आप क्या मानते हैं कि युवाओं को अगर शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा?
1: जी, युवाओं को शास्त्रीय संगीत की ओर अगर आकर्षित करना है तो उन्हें शास्त्रीय संगीत पहले सुनना पड़ेगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत गहरा है.
0: बिल्कुल.
1: और अगर जैसे कि अगर इंटरेस्ट आपका बाकी फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में है तो शुरुआत में आपको, अगर आप शास्त्रीय संगीत सुनेंगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा सुनना पड़ेगा अगर आपको आकर्षित होना है तो.
0: जी.
1: और शास्त्रीय संगीत क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत, म्यूजिक इज एंडलेस चाहे किसी भी फॉर्म में हो. तो आकर्षित अगर करना है तो आपको सुनना पड़ेगा पहले अच्छे से.
0: अधिराज, आपकी बातें भी ना बहुत गहरी हैं. उम्र आपकी इतनी छोटी है लेकिन आप इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को भी आज बहुत अच्छा लग रहा होगा आपका ये इंटरव्यू सुन के. आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान दे रहा है?
1: जी जरूर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान मिल रही है क्योंकि पहले जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो ज़्यादा लोग, यंग जनरेशन जो थी वो शास्त्रीय संगीत को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती थी और म्यूजिशियंस को एक्सपोजर नहीं मिलता था. अभी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत म्यूजिशियंस को एक्सपोजर भी मिल रहा है और सब शास्त्रीय संगीत को सुन भी पा रहे हैं, लोगों तक संगीत पहुंच पा रहा है.
0: जी.
1: तो जी, सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत
0: मतलब पहचान मिल रही है और लोग शायद सुन भी रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल.
1: और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं लोग.
0: जी. सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे अधिराज चौधरी जी के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अधिराज जी। और अधिराज एक बहुत ही अमेजिंग सितार प्लेयर हैं। सो अधिराज, अगर आप एक सितार प्लेयर ना होते तो आप क्या होते?
1: जी वैसे मैंने सोचा तो नहीं था कि अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता तो क्या होता। अच्छा। पर मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मैं आगे एकेडमिक्स ही परस्यू करता अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता।
0: जी जी।
1: मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है।
0: अच्छा।
1: शायद वो परस्यू करता
0: जी। और सितार के अलावा आपकी और क्या हॉबीज है? जैसे अभी तो जो भी आपका फ्री टाइम होता होगा आप सब अपना रियाज में ही देते होंगे, बट उसके अलावा क्या और हॉबीज है वो हम जानना चाहेंगे।
1: जी बाकी मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो
0: अच्छा।
1: मुझे स्पोर्ट्स देखना भी बहुत पसंद है।
0: तो स्पोर्ट्स में आप क्या खेलना पसंद करते हैं?
1: मुझे क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है।
0: जी
1: जी।
0: नाइस। और अधिराज, एक लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे जो यंग पीढ़ी के लोग सितार सीखना चाहते हैं या संगीत को अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
1: जी उनके लिए मैं वैसे मैं संदेश देने के लिए मेरी उम्र काफ़ी छोटी है, बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको सितार सीखना है यंग पीढ़ी को, तो फिर आपको पहले एक आप किसी भी गुरु के पास जाइए, क्योंकि आप खुद से सीखने की कोशिश मत करिए।
0: जी।
1: क्योंकि एक गुरु ही है जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: जी। तो आपको एक अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए और उसके बाद आपको जो भी गुरु जी बताए आपको उसमें अपना ध्यान से आपको उसमें ट्रेन करना चाहिए और अपने टेक्निक्स सही करने चाहिए और आपको सुनना चाहिए म्यूजिक अच्छे से। सुनना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: बजाने के साथ साथ सुनना भी बहुत जरूरी है। तो जी आप अगर म्यूजिक सुनेंगे ज्यादा तो आपको और आइडियाज आएंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा
0: जी। आई होप जो लोग सुन रहे हैं और म्यूजिक में अपना करियर चुनना चाहते हैं उन्हें अधिराज की ये जो उन्होंने सजेस्ट किया है उसे फॉलो जरूर करेंगे। सो अधिराज, अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे, ठीक है? सो आर यू रेडी?
1: जी जी।
0: ओके। सुबह का राग या शाम का राग?
1: वैसे मुझे सारे राग पसंद है, चाहे सुबह के हो कि शाम के हो, बट मैं शाम को रियाज ज्यादा करता हूँ, इसलिए मेरा शाम का राग है।
0: जी। दादाजी, पिताजी या गुरुजी की डांट सबसे ज्यादा किसकी पड़ी है डांट आपको?
1: दादाजी की।
0: अच्छा। मंच पर जाने से पहले एक आदत?
1: मैं मंच पर जाने से पहले मैं उस दिन रियाज नहीं करता, उस दिन मुझे फ्रेश रहना होता है कि सीधा जाके स्टेज पे ही या उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लूं, पर उस दिन मैं रियाज नहीं करता हूँ।
0: वाओ। पसंदीदा कलाकार कौन है आपके?
1: जी मेरे दादाजी।
0: जी
1: मुझे बहुत कलाकार पसंद है पर मेरे दादाजी मेरे फेवरेट।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक शब्द में संगीत को अगर डिफाइन करेंगे किस तरीके से?
1: डेडिकेशन।
0: वाओ। तो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें। और जाते जाते एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपके क्या आगे गोल्स हैं, क्या लक्ष्य हैं, किस तरीके से आप करेंगे उनको?
1: जी आगे तो अभी मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स तो अभी ऐसे तो मैंने सोचा नहीं है, पर मुझे बस यही है मेरे दिमाग में कि मुझे अपने घराने का ट्रेडिशन आगे लेके जाना है।
0: जी।
1: मुझे आगे सितार परस्यू करना है और आगे अपने घराने को लेके जाना है और बहुत मेहनत करनी है, बस यही है मेरा गोल।
0: बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपकी एक सोच और आप बहुत ही अच्छे आपने जो हमारे लिसनर्स को आज सीख दी, डेफिनेटली वो अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। और इतनी छोटी उम्र, सबसे बड़ी बात इतनी छोटी उम्र में इतना ठहराव, दिस इज अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज हमें बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हमारे स्टूडियो में। तो सो थैंक यू सो मच। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे ही कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। एंड दिस शो इज रियली स्पेशल फॉर अस बिकॉज यहां पर हर बार हर एक एपिसोड में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करते हैं। आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है कशिश। कशिश से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं बिकॉज अप्लाइड साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, काउंसलिंग सेशंस लेती हैं बच्चों के। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी, स्पेशली हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। इसको हम दो एस्पेक्ट में कवर करेंगे, हमारा माइंड काम कैसे करता है जितना इनको पता है बताएंगे। दूसरा हम ये कवर करेंगे कि अगर इसको एज अ प्रोफेशन आपको चूज करना है, वट आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। बट लेट्स वेलकम कशिश। स्वागत है कशिश आपका।
2: थैंक यू सो मच।
1: थोड़ा सा बताइए अपने डोमेन के बारे में, क्या करते हो आप?
2: सो बेसिकली आई हैव डन बी अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें अपने बिहेवियर के बारे में और हाउ अ ह्यूमन माइंड्स वर्क, आप वो जानते हो, बहुत हेल्प करता है आपको ज़िंदगी में। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इमोशनली अवेयर ही नहीं होते अपनी इमोशंस के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, और वो सिर्फ इस्केप करते रहते हैं। एंड वो सिर्फ भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और एक टाइम आता है जब वो जितनी सारी चीज़ें आपके अंदर बॉटल अप हो गई है, तो जब वो फूटती है और उसके बाद जब आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करूं, और जब वो फूटती है तो वो सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं करती, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो उन सब के ऊपर फूटती है। तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ तक कभी पहुँचे, और हम चाहते हैं कि उस चीज़ को पहुँचने से पहले हम बहुत पहले उस चीज़ को रोक दें, उस पर काम करें। तो उस पर काम हम ऐसे ही कर सकते हैं जब हम अवेयर होंगे अपने एक्शंस के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, मतलब काम करें। तो उस पर काम हम ऐसे ही कर सकते हैं जब हम अवेयर होंगे अपने एक्शंस के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, मतलब व्हेन वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट। बेसिकली जब हमें पता है कि हम इस एक्शन के लिए सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप चाहे बाद में किसी को भी ब्लेम कर लो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये था, वो था, वो था, तो कुछ भी आपको हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप कॉन्शियस हो तो आप कुछ ऐसा करोगे ही नहीं जो कि आपको इन फ्यूचर ऐसा लगे कि अरे मैंने ये क्यों करा। अगर आप कॉन्शियस होते तो आप वो चीज़ करते ही नहीं, पर आप कॉन्शियस नहीं थे एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर एक्शंस, दैट्स व्हाई यू डिड इट।
1: सो बेसिकली द स्टडी ऑफ योर बिहेवियर, वी कैन कॉल इट अप्लाइड साइकोलॉजी, राइट?
2: यस, अप्लाइड साइकोलॉजी में बेसिकली हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं। प्रैक्टिकल नॉट, इट्स नॉट जस्ट थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल्स भी होता है। तो जैसे देर इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, draw a personality test when you are given a sheet of paper and you are asked to draw a boy. तो मेरे साथ जब मेरे मेरा एक क्लाइंट था, सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने उसको पेपर दिया था और उस टाइम पर ही वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो उसने इतनी छोटी सी, बहुत ही छोटी सी फिगर ड्रॉ करी थी बॉय की। तो जितनी छोटी आपकी फिगर होती है उतनी कम आपकी सेल्फ वर्थ होती है, जो आप उस टाइम पे अपने आप को देख रहे होते हो कि मेरी बस इतनी ही वर्थ है। अगर आप बहुत बड़ी इमेज ड्रॉ करते हो, इट मीन्स दैट यस यू थिंक दैट यू आर वर्दी। बट अगर आप जितनी छोटी इमेज ड्रॉ करते हो तो आपकी वर्थ उतनी ही कम होती है अपनी नज़रों में। सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉ पर्सनैलिटी टेस्ट।
1: अरे बाप रे, मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा है, मेरे को जाके वापस अपनी सारी ड्राइंग्स देखनी पड़ेंगी कि मैंने कब क्या बनाया है और मैं कहाँ पे खड़ा हुआ था। सो अमेजिंग, सो इंटरेस्टिंग। इफ आई मे आस्क यू, व्हाट वाज द थॉट दैट ट्रिगर्ड यू टू परस्यू दिस? क्यों ये चूज किया कि मेरे को साइकोलॉजी में जाना है?
2: राइट, सो व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं थे और मेरी फैमिली में भी मेरे साथ कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ। एंड आई ऑलवेज सर्च फॉर अ फ्रेंड एंड फॉर लव। तो मुझे वहाँ पर लगा कि मे बी आई शुड इन्जॉय माई ओन कंपनी, मुझे अपनी ओन कंपनी इन्जॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो व्हेन आई वाज इन 11th, देयर वाज दिस सब्जेक्ट साइकोलॉजी, और उनके उसमें ऑप्शन था दैट यू कैन आइदर चूज सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी चूज़ करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले, एंड आई वॉन्टेड कि मैं सोशोलॉजी ही ऑप्ट करूँ, बट उसमें बहुत कम बच्चे थे तो फिर वो सब्जेक्ट ही कैंसिल आउट हो गया और मुझे साइकोलॉजी चूज़ करनी पड़ी फोर्सफुली. तो जब मैंने वो साइकोलॉजी चूज़ करी तो उसमें एक टर्म थी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इफ़ यू नो अबाउट इट, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो डॉटर होती है उसको अपने फादर के लिए मतलब वो अपनी चाहती है कि वो फादर के साथ एक फैमिली बिल्ड करे, तो ये हर किसी के साथ होता है. तो वो सब चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मुझे, मैंने बहुत कनेक्ट करा साइकोलॉजी से, सब्जेक्ट से. तो मुझे ये था कि ये जब साइकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी 11th 12th की तो मैं इसको परस्यू करूँ, मैं इसके बारे में और पढ़ूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होता था जो चीज़ें मैं वहाँ पर पढ़ती थी, बिहेवियरली जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. इसलिए मैंने उसको परस्यू करा कि मे बी आई शुड चूज़ दिस. इसलिए मैंने 3 साल अपने दिए और मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी 3 सालों में, क्रिमिनल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, एक जो सीरियल किलर होता है उसका क्या पैटर्न होता है, वो क्यों करता है, कहाँ से आती है वो चीज़ें, एंड एवरीथिंग, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट. एंड आई वुड से कि अगर आपको खुद के बारे में जानना है और आपको अगर ज़िंदगी के बारे में जानना है, आपको लोगों के बारे में जानना है, तो आप प्लीज़ साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करिए. और बहुत सारी बुक्स भी है, बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास पढ़ने के लिए. अगर आप डिग्री भी नहीं कर सकते तो भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, देर आर मेनी बुक्स. आप ओशो को पढ़ना स्टार्ट करिए, एक्चुअली ओशो आपको बताएंगे कि कैसे यू कैन बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस एंड हाउ योर एक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप आगे कहाँ जाएंगे इसके बाद.
1: I'm convinced. Alright, on this note, let's take a musical break. उसके बाद कशिश से हम आगे बात करेंगे. There are so many aspects that we need to cover, but we'll talk about it after this musical break. So stay tuned with us. I'm RJ Sagar.

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए या कशिश के लिए तो प्लीज 8010781078 पर जरूर अपनी बात पहुंचाइएगा। फिलहाल शो को अपने आगे लेकर के चलेंगे और कशिश हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। साइकोलॉजी को समझने की बात हो रही है। कशिश, मैं दो तरीके से इस टॉपिक को समझना चाहूंगा। फर्स्ट इज एज अ स्किल, जो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं समझना चाहता हूँ इन जनरल, हमें अगर साइकोलॉजी पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और मैं जानना चाहता हूँ जितना आपके बारे में हो सकता है मैक्सिमम, सो कैसे हम लोग पता करें। स्पेशली इसमें एक एस्पेक्ट होता है कि जब आप किसी इंसान से मिल रहे हो या डेट के लिए जा रहे हो या शादी के लिए बात चल रही है आपकी, किसी लड़का या लड़की को आप देखने जा रहे हो, सो यू नीड टू हैव अ फ्यू थिंग्स इन योर माइंड कि मैं ये चीज़ें जो मुझे ऑब्जर्व करनी चाहिए जिससे पता लगे कि हम दोनों कंपेटेबल हैं या नहीं है, या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, लाइक दिस।
1: ट्रू। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन प्लेस अ वेरी बिग रोल। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे किसी के साथ तो आप वो बिल्ड ही नहीं कर पाओगे कनेक्शन, और आप उसको फॉरवर्ड भी नहीं लेके जा सकते। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो एक इंसान से, वो आपकी बात सुन भी रहा है, वो एक गुड लिसनर है भी या नहीं। अगर वो गुड लिसनर नहीं है और सिर्फ वो मैं कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, तो ड्रॉप इट राइट देयर बिकॉज इट्स नॉट गोना वर्क। अगर आपको किसी रिलेशनशिप को चलाना है, आप उसको आगे लेके जाना चाहते हो, तो इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ आप बोल रहे हो और दूसरे वाला सुन रहा है, एंड इट शुड ऑल्सो नॉट लाइक कि सिर्फ दूसरे वाला ही बोल रहा है और आप ही सुन रहे हो। बोथ वेज होना चाहिए, आप भी बोलो वो भी बोले, आप भी सुनो और वो भी सुने। तो अगर ये चीज़ सबसे पहली होती है कि अगर ये इसमें आप टिक कर पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, आप आगे जा सकते हो। उसके बाद आप देखो कि वो जो इंसान है उसके पैटर्न्स क्या है, वो कैसे सोचता है, वो चीज़ों को कैसे देखता है, और आप कुछ ऐसा उससे इंसिडेंट शेयर करो जिससे आप बहुत कनेक्टेड हो और आप जैसे उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो और जैसे वो इंसान उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, आप कहीं पर मैच कर रहे हो, आपके थॉट्स कहीं पर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि हाँ इस सिचुएशन में ये इंसान भी नॉट 100%, अगर वो 70% भी वैसा सोच पा रहा है जैसा आप सोच रहे हो, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि आपके पैटर्न्स भी मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप फुटबॉल नहीं बन सकते दूसरे के ओपिनियन के लिए। यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ फुटबॉल टू अदर्स ओपिनियन, राइट? यू इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप समझाओ, एंड एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट्स तो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सोचो कि सिर्फ आपकी बात ऊपर है और आप दूसरे को सप्रेस करते रहो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं चलेंगी आपकी चीज़ें। तो सबसे पहले दूसरे को बोलने के पहले आपको खुद को भी समझना पड़ेगा कि क्या आप इतने एडजस्टिंग और एक्सेप्टिंग हो सकते हो इस इंसान को लेकर। इफ़ येस, इट इज़ गुड, और तभी चीजें चल सकती है, मुझे ऐसा लगता है।
0: यू शुड नो द पैटर्न्स, यू शुड कम्युनिकेट। सो इंटरेस्टिंग। अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं, क्या चीजें हैं जो टाइम बीइंग हमारे सामने खुलती हैं लेयर्स, या जो हमें खोलनी चाहिए एटलीस्ट इंसान के बारे में और अच्छे से जानने के लिए, कि सामने से सब झूठ बोलते हैं।
1: ट्रू।
0: सो व्हेनेवर यू मीट समवन, मे बी अ कॉलीग, मैनेजर, आपको फर्स्ट टाइम ये लगेगा बहुत अच्छा इंसान है, हर आदमी अपना बेस्ट लेके आता है, बट How can we maximize that thing to peel off the layers?
1: Right. सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप मिलो उस इंसान से। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इसमें सब प्रिटेंड कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। किसी ऐसी सिचुएशन में रहो जिसमें कि आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कि आप किसी ऐसी जगह पर जाओ और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, आप दूसरे इंसान के पास भी फ़ोन नहीं है, आपके पास भी फ़ोन नहीं है, आप सिर्फ आप दो लोग हो, बहुत ज़्यादा सड़ी गर्मी हो रही है और आपके पास कोई चारा नहीं है, आप फंसे पड़े हो एक जगह पर, आप वहाँ पर देखो कि तब वो इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या वो पेशेंट है उस टाइम पर, क्या वो आपके साथ है, या फिर वो भी चिड़चिड़ा चुका है और वो बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, रेस्टलेस हो रहा है अगर वो, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रूथ रिवील होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये इंसान ऐसे एक्ट करेगा। अगर वो उस टाइम पे भी पेशेंट है और वो इफ़ ही इज़ देयर विद यू और वो समझ पा रहा है और वो काम कर पा रहा है आपको उस सिचुएशन में, तो वहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि इंसान ऐसा ही रहेगा अगर कोई आगे भी ऐसी सिचुएशन आती है तो। पर अगर वो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बौखला गया है और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो नाउ अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये इंसान आगे भी ऐसे करेगा। और दूसरा कि मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दो चार मीटिंग्स में आप नहीं समझ सकते किसी को। लोग बहुत आजकल प्रटेंड कर सकते हैं, इट इज़ वेरी ईजी टू प्रटेंड, और फेक करना भी बहुत ईजी हो गया आजकल। तो एक्सट्रीम्स पहले जानो इंसान के, कोई ऐसी सिचुएशन लाओ जिसमें आप ऐसा सामने वाले को प्रवोक भी कर सकते हो कि वो गुस्सा करे, तो आप देख सकते हो कि इसका क्या पैटर्न है, कितना गुस्सा कर सकता है। अगर वो उस टाइम पे गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, और वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो वो आगे भी नहीं सुनेगा आपकी बात उसका, क्योंकि पैटर्न ही ये है कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड हो जाता है, और वो उसके अपने थॉट्स इतने ओवरपावरिंग होते हैं कि वो दूसरे इंसान को कंसिडर ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली तो आप देखो ऐसी सिचुएशंस में एंड अप करो जहाँ पर आपको इंसान को जानने का मौका मिले। जितने आपके पास फालतू क्वेश्चंस है, नो मैटर कि वो रिलेवेंट है या नहीं है, आप पूछो। अगर आपको वो दे रहा है आंसर, पेशेंटली दे रहा है, कामली दे रहा है, तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि वो सुनेगा आपकी बात, और वो समझना भी चाहेगा और आपको समझाना भी चाहेगा। पर अगर वो आपको ऐसे लेट डाउन कर रहा है कि अरे क्या फालतू क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये तो इररिलेवेंट है, तो फिर आप समझो ये बात कि उसके लिए मैटर नहीं करता आपके थॉट्स और आपके जो क्वेश्चंस है वो। अगर आपको किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो इंसान जैसा भी है, आप उसको वैसा एक्सेप्ट करो। तो अगर कोई इंसान आपको वैसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, चाहे आपके कितने भी बेवकूफ़ क्वेश्चंस और इररिलेवेंट क्वेश्चंस है, अगर वो नहीं कर पा रहा उस चीज़ को एक्सेप्ट, और अगर वो आपको ये बोल रहा है कि अरे तुम ये क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये तो बहुत फालतू बातें हैं, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, इट डजंट मैटर आप बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो या फिर आप बहुत समझदारी वाली बातें पूछ रहे हो। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, और आपको अपने पार्टनर से वो क्वेश्चन पूछना है, तो आपको वो पूछना है, और उसका काम है उसको आंसर करना। चाहे वो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला आंसर ना दे, बट अगर वो सिर्फ उसको सुन रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, और आपको वो आंसर दे रहा है, तो वो भी एक अचीवमेंट है।
0: सो अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है कशिश ने इस चीज़ को। मैं रिएट्रेट करना चाहूँगा इसको कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, डोंट एवर बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग इज दैट वी हैव दैट एबिलिटी टू क्वेश्चन थिंग्स, और ये चीज़ कभी जाननी नहीं चाहिए। एंड इट डजेंट मैटर कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो देयर वाज एन इंसिडेंट, मैं एक बहुत फेमस एक्टर है बॉलीवुड के, उनका इंटरव्यू ले रहा था एक बार। सो ही वाज सेइंग द सेम थिंग कि मैं अपने बचपन में अपने माँ बाप से, बाकी लोगों से पूछता था कि मेरा बर्थडे 5 अक्टूबर को क्यों आता है। इससे ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, बट इट इज़ वट इट इज़, इट शोज कि आप क्यूरियस हो हर चीज़ को लेकर के। एंड एवरी थिंग, एवरी इन्वेंशन, एवरी सिंगल इनोवेशन, या जो भी अचीवमेंट आप दुनिया में आज देखते हो, जो भी चीज़ें आई हैं, हर चीज़ एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। अगर किसी ने फ्लाइट बनाई है, पहले उसने क्वेश्चन पूछा होगा कि क्या हम लोग उड़ सकते हैं, अगर नहीं उड़ सकते तो क्यों नहीं उड़ सकते। उसके बाद जा करके फिर घूम फिर के जनरेशन वाइज चीज़ें बदली होंगी, फ्लाइट बनी, फिर इतनी सारी चीज़ें आई, फ़ोन आया आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आई, वाईफाई आपके पास आया, सब कुछ स्टार्ट हुआ एक क्वेश्चन से। सो ये बहुत ब्यूटीफुल बात कशिश ने बोली यहाँ पर कि अगर आप सवाल पूछने का स्कोप आपके पास है, वहाँ पर नॉन जजमेंटली कोई इंसान आपसे सवाल पूछ सकता है, इट शोज हाउ ब्यूटीफुल दैट बॉन्ड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, मोस्टली पीपल दैट आर वर्किंग आउट देयर, ओवर अचीवर, इनसिक्योर, अंडर परफॉर्मर्स, दे ऑल आर इनसिक्योर एंड दे ऑल आर एंशियस। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टैप इन टू दिस थिंग कि वाई आर वी सो एंशियस, क्यों हम इतने एंशियस हैं, और अगर है तो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, कि इसका रूट कॉज क्या है। कई बार समझ नहीं आता, फॉगी होता है दिमाग कि क्या हो रहा है अंदर, क्या चल रहा है, कुछ डीपेस्ट कुछ छुपा हुआ है वहाँ पर, उसको कैसे समझना होता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट एंजाइटी।
1: ट्रू, सो जो हमारी इनसिक्योरिटी आती है वो सबसे पहले उस डर से आती है कि हम इस चीज़ को खो सकते हैं। अगर कोई इंसान इनसिक्योर होता है किसी चीज़ को लेकर, खुद को लेकर या किसी इंसान को लेकर, तो उसके पीछे एक डर होता है, और वो डर यही होता है उसको खोने का डर। और इंसान को वो जो डर तभी आता है जब वो उसको बहुत कस के पकड़ के रखता है। तो जितना आप चीज़ों को कस के पकड़ के रखोगे, आपको उतना ही डर लगेगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा कि लाइफ जो होती है ना उसमें आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होगा आपके साथ. अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें नहीं पता था कि हम यहाँ पर बैठेंगे, राइट? तो लाइफ इज फिल्ड विद सरप्राइजेस, बट जितना आप खुद को रिजिड और जितना आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे उतनी ही तकलीफ आपको होगी और किसी को भी नहीं होगी. तो आई वुड से कि चीज़ों को पकड़ना छोड़ दो, और जितना कस के आप पकड़ोगे उतना आप खुद ट्रिगर होगे, किसी को शायद इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और आपकी इनसिक्योरिटीज़ खुद अपने आप में ही बढ़ेगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा. तो इट्स बेटर दैट यू टेक लाइफ वेरी इजी और प्रेजेंट में जीना अगर हम स्टार्ट कर दें. ऑल्दो ये सब चीज़ें बोलनी बहुत आसान होती है, बट जब एप्लीकेशन की बात होती है तो हम बहुत बार फेल कर जाते हैं. बट अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड इफ़ वी कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स दैट आई एम हियर, ये एक लूप होता है जो छूटेगा आपसे, पर जब आपको दोबारा याद आएगा, हो सकता है एक घंटे बाद याद आए, तो आप फिर से अपने आप को रिमाइंड कराओ दैट आई एम हियर, फिर से वो छूटेगा, वो जो थ्रेड है वो दोबारा छूटेगा. अब दोबारा अपने आप को रिमाइंड कराओ, तो जैसे जैसे आप रिमाइंड कराओगे वो जो टाइम स्पैन है वो कम होगा, और जब वो कम होगा और जब आपको पता चलेगा कि दैट यू हैव एक्सेप्टेड दैट यू आर हियर इन द प्रेजेंट एंड यू आर लिविंग योर लाइफ, वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर द बेस्ट, तो शायद आपकी इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाए बाय द टाइम. आई एम नॉट प्रोमिसिंग कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, बट हाँ, जो ज़िंदगी होती है उसमें ये नहीं होता कि सब कुछ एक रात में ठीक हो जाता है, क्योंकि हम जहाँ पर आए हैं बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आए हैं, तो उसका जो बोझ होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कंधों पर हमेशा रहता है. बट उस अच्छा आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ. एक साधु होता है, वो बहुत तप करता है, और वो इतना तप करता है कि एक जो छोटा लड़का होता है वो ये चाहता है कि मैं बस इसकी शरण में आ जाऊँ और ये मुझे अपना ले और ये मेरा गुरु बन जाए. तो वो पहाड़ पे चढ़ता है ऊपर, इतनी मेहनत करके ऊपर जाता है उस साधु के पास, और वो उनको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो और मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ. साधु कहता है ठीक है. तो वो कहता है कि चलो ये जो पत्थर है ना इसको उठाओ, और वो नीचे चलने लगता है, पहाड़ से नीचे उतरने लगता है. साधु जो होता है वो नीचे उतरने लगता है, और वो जो लड़का होता है वो इस कन्फ्यूजन में आ जाता है कि खुद तो खाली हाथ चल रहा है आगे, और मुझे इतना बड़ा पत्थर उठाने के लिए बोल दिया. तो अब वो उस पत्थर को लेकर नीचे चलता जाता है. तो फिर जब वो नीचे आ जाता है वो इतना थक जाता है, उसकी सांसें फूल रही होती है, उसको समझ नहीं आता कि मैं, उसको गुस्सा आ रहा होता है कि खुद तो खाली हाथ चल गया है और मुझे बोल दिया पत्थर उठाने के लिए. जब वो नीचे पहुँचता है तो साधु पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है कि ये पत्थर तुम क्यों लेकर आ रहे हो? तो वो कहता है कि आपने तो कहा था उठाने के लिए. तो साधु कहता है मैंने तो सिर्फ उठाने के लिए कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि इसको अपने साथ नीचे लेकर आओ. तो द थिंग इज कि वो उसकी चॉइस थी कि वो उस बोझ को अपने साथ लेकर आया, इसलिए ही वो परेशान हुआ. अगर वो उसको उठाकर वहीं छोड़ देता, क्योंकि साधु ने तो नहीं कहा था कि उसको अपने साथ लेकर आओ, बट उसकी चॉइस थी कि वो साथ लेकर आया. तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का जो बोझ है हम छोड़ सकते हैं, जैसे हम उठाते हैं हम छोड़ भी सकते हैं, पर हम चूज़ करते हैं उसको अपने साथ कैरी करना और आगे बढ़ना उसके साथ. इसलिए ही मोस्ट ऑफ द पीपल इनसिक्योर और परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में. तो इट्स बेटर दैट यू लेट गो ऑफ थिंग्स, एंड इट्स बेटर दैट यू एक्सेप्ट इट एट द वेरी मोमेंट. जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे और जैसे ही आप लेट गो कर दोगे, वैसे ही चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. तो ट्राई करिए कि चीज़ों को पकड़ना छोड़ दें हम.
0: सो ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट. देयर इज अ बिगर रियलाइजेशन ऑफ दैट पार्ट कि लाइफ में जो भी चल रहा है डजंट मैटर, बट आपने क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या आपका है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, क्या ट्रामा है, इट ऑल गोइंग टू बी जीरो वन डे. We all are going to leave this world. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी एनजाइटी आपकी खत्म कर भी सकता है एक थॉट कि एक दिन वैसे भी जाना ही है भाई. तो इन बिटवीन ठीक है, जो आपके पास कोशिश है आप करते रहो, जितने आप मैचेस खेल सकते हो खेलो, कहीं में सेंचुरी मार भी दोगे, कुछ भी नहीं मार पाओगे, बिल्कुल जीरो पे आउट हो सकते हो, इट डजंट मैटर. सो जस्ट बी इन द मोमेंट एंड ऑलवेज हैव दिस रियलाइजेशन कि सब कुछ परमानेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है एक्चुअली. फिलहाल लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे. आगे हम बात करेंगे साइकोलॉजी अगर आपको पढ़नी है, ये समझनी है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, बट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील.

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: Once again, I'm hoping you are loving the musical vibe. अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो 8010781078 पर अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूं आरजे सागर, शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज के हमारे मेहमान है कशिश। कशिश, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अगर किसी इंसान को साइकोलॉजी पढ़नी है, डिग्री नहीं करनी है, जस्ट समझनी है हाउ एग्जैक्टली आवर माइंड वर्क्स, हाउ बिहेवियर वर्क्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, कैसे शुरुआत की जाए?
1: राइट,
0: जस्ट गिव अस अ रोड मैप।
1: ओके, सो सबसे पहले तो अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें। देयर इज़ दिस बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड बहुत फेमस बुक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी। और मैं चाहूँगी कि एक बार एफर्ट करके आप उस बुक को पढ़ें। और उसके अलावा भी देयर आर सो मैनी बुक्स जो बहुत कुछ इंसान के बारे में बताती है, उसके पैटर्न्स के बारे में बताती है। उसके अलावा डिग्री करना ज़रूरी है साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, क्योंकि आप इतनी डेप्थ में किसी भी चीज़ को उठाकर नहीं पढ़ सकते। बट हाँ, अगर आप नहीं कर सकते डिग्री, तो आप रिसर्च पेपर्स उठाइए और आप रिसर्च पेपर्स पढ़िए। वहाँ पर केसेस होते हैं बहुत सारे, और उसके नीचे उन केसेस को जैसे सॉल्व करा गया है, और जो जो उसमें आंसर्स, जो हमने केस पढ़ा, जो आंसर्स अब हमें मिलने चाहिए, वो सब होते हैं उसमें अटैच्ड होते हैं। आप वो पढ़िए, आपको आपका परसेप्शन चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। अब जैसे एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था, तो उसमें था कि एक लड़की होती है और वो जॉइंट फैमिली में रहती है। उसके जो ताऊ जी ताई जी होते हैं, वो सब ये चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उनको मिल जाए। और वो जो लड़की होती है ना, उसके जो पापा होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट और ऑर्थोडॉक्स पर्सनालिटी उनकी होती है, तो वो हमेशा अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को सप्रेस करते रहे, पूरी ज़िंदगी डोमिनेट करते रहे। बट उसके बाद जब टाइम आया अपने लिए स्टैंड लेने का, अपनी प्रॉपर्टी के लिए स्टैंड लेने का, तो वो नहीं ले पाए स्टैंड, और वो सारी प्रॉपर्टी जो थी उनके ताऊजी के पास चली गई। एंड शी इज़ लेफ्ट विद नथिंग, हर फादर इज़ लेफ्ट विद नथिंग। और अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो जो लड़की होती है वो पता है क्या करती है, वो अपने बेड के नीचे, अपने पिलो के नीचे ब्लेड्स रखती है, और वो चुपके से कभी भी अपने आप को हार्म कर लेती है, काट लेती है, अपना हाथ काट लेती है, कुछ करती है। और फिर उसके बाद वो ऐसे दिखाती है कि मेरे ऊपर कुछ है, देर इज़ सम सुपर नेचुरल थिंग अराउंड मी विच इज़ हर्टिंग मी। ओके, तो बहुत सारे लोग उनके पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप तांत्रिक के पास जाओ और आप ये सब चीज़ें कराओ, बट एक समझदार व्यक्ति होता है जो बोलते हैं कि आप इनकी काउंसलिंग स्टार्ट करो। जब वो फर्स्ट सेशन के लिए जाती है, तब उसको पता होता है कि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा आई तो सबको पता चल जाएगा कि मेरा सच क्या है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती आना किसी भी सेशन के लिए, और वो अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा घुमाती है कि यही हो रहा है, कोई सुपर नेचुरल चीज़ है मेरे साथ। तो वो क्या करती है, ऐसे चुटकी बजाती है और अपनी वॉइस चेंज करती है, और एक मेल वॉइस में बोलती है कि मैं सबको मार दूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, जस्ट टू डराने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अब जब फोर्सफुली उसको काउंसलिंग सेशंस में भेजा जाता है, तो एक दिन ये ट्रूथ सामने आता है कि वो ये सब इसलिए कर रही थी बिकॉज शी वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड अपने फादर को लेकर, कि जब अपने लिए स्टैंड लेना था तो वो नहीं ले पाए। और अगर वो एज अ गर्ल डराती तो कोई नहीं डरता, बट एज अ मेल जब उसने चूज़ करा कि मैं एज अ मेल वॉइस यूज़ करके इन सब लोगों को डराऊँ, तो वो सब डर गए। तो हियर जो मेन चीज़ थी, उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, वो ये थी कि उसके फादर ने हमेशा उसको सप्रेस करा, और जब अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम आया तो वो नहीं ले पाए, तो वो उस चीज़ में फंस गई, तो इसलिए उसने ये कार्ड पुल करा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको समझ आएंगी अगर आप ऐसे रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ब्रॉड होगा और बहुत ग्रो करोगे आप टाइम के साथ। तो आप रिसर्च पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करिए, और कुछ बुक्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी मैंने बताया, और भी है, एल्केमिस्ट पढ़ सकते हो आप, एल्केमिस्ट इज़ अ वेरी नाइस बुक।
0: सो अमेजिंग, आप बिकमिंग सुपरनैचुरल पढ़ सकते हो, डॉक्टर जो डिस्पेंसा की बहुत खूबसूरत किताब है, आप पढ़ सकते हो द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, एंड सो मेनी बुक्स आर देयर जो आप जरूर पढ़ें एक बार लाइफ में, एटलीस्ट आपको पता लगेगा माइंड काम कैसे करता है। अगर किसी इंसान को प्रॉपर एक काउंसलर बनना है, फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट फॉर एवरीवन. क्या ट्रेट्स होनी चाहिए इंसान में कि लेट्स से कोई 12th क्लास का बच्चा इस टाइम सुन रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे को काउंसलिंग में जाना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है मेरे को, कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरे लिए सही डोमेन है? क्या ट्रेट्स, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस इंसान में?
1: सबसे पहले तो दे शुड बी अ गुड लिसनर. एक साइकोलॉजिस्ट का काम ही होता है सुनना. सुनाता तो वो बहुत बाद में है, पहले वो सिर्फ सुनता है और वो सिर्फ एनालाइज करता है कि सामने वाले के क्या पैटर्न्स है. तो अगर आप वहीं पर फेल हो रहे हो और अगर आपको ओके, यू कैन नॉट बी वेरी नोजी, मतलब अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है तो वो बहुत ट्रस्ट करके आपको बात बता रहा है, और आप उस मोमेंट पे चाहे आपको कितनी भी बातें उसके बारे में पता चल रही हैं या आपको कितना भी उसके बारे में समझ आ रहा है, आप स्टिल वो बातें रख नहीं सकते उसके आगे. क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें रख दी अभी इनिशियल फेज में, तो वो शायद पुल बैक कर सकता है जो सामने वाला है. तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, और आपको पहले पूरी तरह से उस इंसान को कम्फर्ट करना है, कम्फर्टेबल करना है अपने साथ. एंड यू शुड हैव दैट वॉर्म्थ विद इन यू कि लोग आपके साथ खुल पाए. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ऐसे होती है कि वो सामने वाले को कम्फर्ट नहीं दे पाते और लोग उनके आगे खुल भी नहीं पाते. तो अगर इंसान आपके आगे खुल ही नहीं पाएगा तो आपका साइकोलॉजिस्ट होने का मोटिव ही ख़त्म हो गया वहाँ पर. तो यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, यू शुड बी वेलकमिंग आई वुड से. और सबसे बड़ी चीज़ कि डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होती है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए. क्योंकि अगर मेरे सामने रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा केस आता है जिससे अगर मैं अटैच हो गई, उस इंसान से अगर मैं अटैच हो गई, तो मैं उसको कुछ हेल्प तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी और मैं और फंस जाऊँगी उसके साथ. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनली ही रखें और बिल्कुल भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो उस चीज़ में. तो ये बहुत ज़रूरी है. और अगर हम 12th क्लास के बच्चे की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट बनने का थॉट रैंडमली नहीं आता, हमेशा तभी आता है जब किसी इंसान के अंदर कुछ बहुत सारी बातें होती है जो वो अपने बारे में जानना चाहता है. और तो वो जो बच्चा है ही शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, और उसको ज़िंदगी के बारे में अपने उम्र के बच्चों से थोड़ा ज़्यादा पता होगा और वो चाहता होगा और ज़्यादा अपने आप को समझना, तभी वो ये डिसीजन पर आएगा कि अब मुझे काउंसलर बनना है.
0: एटलीस्ट क्यूरियस होगा.
1: यस ऑफ कोर्स.
0: कि दिमाग काम कैसे करता है.
1: यस.
0: कोई इंसान सिचुएशन में खुश है, दूसरा इंसान उस सिचुएशन में उदास है, तीसरा इंसान गुस्सा है, तो अगर ये तीनों चीज़ें आपको कॉन्ट्रास्टिंग नज़र आती हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये सिचुएशन तो सेम है लेकिन तीनों के अंदर कुछ अलग चल रहा है, तो वो जो क्यूरियोसिटी है ना कि इनके अंदर क्या चल रहा है, वो आई थिंक दैट इज़ अ राइट वे टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. करियर ऑप्शंस क्या होते हैं इसमें, हाउ टू बी अ गाय और गर्ल हु कैन अर्न वेल इन दिस फील्ड?
1: टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली आपको साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा तो अर्निंग नहीं होती, इवन इंटर्नशिप्स भी पेड ही होती हैं. बट अगर आप एक सब कुछ करने के बाद, जैसे अगर आपने बी ए अप्लाइड साइकोलॉजी कर ली एंड देन यू आर डन विद योर एम ए एम फिल पी एच डी, देन यू कैन अर्न वेरी वेल एंड तब बहुत स्कोप होता है. बट इनिशियली भी साइकोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया है, मतलब स्कूल्स में भी देर इज़ मैंडेटरी कि आप काउंसलर होगा ही, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ देयर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ देयर, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एवरीथिंग, इवन इन ऑल द क्रिमिनल केसेस एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी इज़ देयर, अब नॉर्मल साइकोलॉजी इज़ देयर. सो देर आर सो मैनी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स एंड इट इज़ वेरी वास्ट. But it's just that you have to stick with one subject. You cannot just hop in here and there ki thodi si sports padh li, thodi si criminal padh li, thodi si ye. You have to make up your mind ki aapko kis mein aage jana hai, jisme aap bahut zyada drawn feel kar rahe ho aur jisme aapko lag raha hai ki this is my area and I'm very passionate about it. You just choose that area. Aur although bahut interesting hai psychology, bahut interesting hai और बहुत हेल्प करती है आपको ज़िंदगी को समझने में, तो अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि आपको ये डिग्रीज़ लेना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि सिर्फ बीए अप्लाइड साइकोलॉजी करके, एमए साइकोलॉजी करके आपको बहुत अच्छी जॉब तो नहीं मिलेगी. एमफिल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसमें आपको लाइसेंस मिलता है. एमफिल इज़ फॉर 1 ईयर, आपको उसमें लाइसेंस मिलता है जिसमें आप ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो. अपने पेशेंट को विदाउट एम्फिल, यू कैन नॉट डू दैट. आप अपनी नॉर्मल काउंसलिंग कर सकते हो पेशेंट की, बट आप उसको कोई भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते विदाउट एम्फिल. तो बहुत ज़रूरी है एम्फिल करना. अगर आपको एज अ करियर काउंसलिंग को चूज़ करना है तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, और आपको बहुत सारा अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाओगे.
0: सो अमेजिंग, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस. कोई भी ऐसी चीज़ें मैं ना पूछ पाए और आप कहना चाहते हो प्लीज़ फील.
1: आई थिंक आपने सब कुछ पूछ लिया.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच कशिश फॉर जॉइनिंग अस. इट मींस अ लॉट टू अस एंड थैंक यू फॉर गिविंग ऑल दोज वैल्यूएबल थिंग्स टू अस. आई मीन आई एम जस्ट होपिंग लिसनर्स को मज़ा आया होगा, आपको पसंद आई होंगी सारी बातें, क्योंकि बातें हुई हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं. हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग की पढ़ाई एक तरीके से आप कह सकते हो साइकोलॉजी है. पैटर्न्स, बिहेवियर्स, एक्शंस, रिएक्शंस, सब कुछ उसमें आता है. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. एंड आई वुड से कि अगर आप कोई भी एक इंसान है जो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हो, यू आर अ सर्वाइवर, सो यू शुड नो दिस एटलीस्ट कि दुनिया कैसे सोचती है, बिहेवियर्स क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना होता है. अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई चोर है, कोई सीरियल किलर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई एथलीट हो सकता है, सबकी अपनी एक साइकोलॉजी है, जिसको समझना मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड हो जाता है. ऑलराइट, ऑन दिस नोट वक्त है अपने शो को कंक्लूड करने का. आई होप आपको पसंद आया होगा. चलिए फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए. दिस इज आरजे सागर साइनिंग.

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज अधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ।
1: देखिए किसान भाइयों, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है रसीले चारे की फसल की बात। उसका नाम है मकचरी। मकचरी का वानस्पतिक नाम यूकेलियाना मैक्सिकाना है। ये रसीले चारे की फसल है जिसका औसतन कद 6 से 10 फीट होता है। इसके पत्ते लंबे और चौड़े होते हैं। पौधे की चारों तरफ बहुत लंबी शाखाएं होती हैं। मादा पौधे जब पूरी तरह तैयार हो जाते हैं ना किसान भाइयों, और फूल और शाखाएं निकल आती हैं, तो उसे मुख्य भाग को बालियां कहा जाता है। इसमें 5 से 12 दाने होते हैं। इसका मूल स्थान मेक्सिको और केंद्रीय अमेरिका है। भारत की बात करें तो भारत में पंजाब सबसे ज्यादा मकचरी उगाने वाला राज्य है। ये मुख्य तौर पर नवंबर के महीने में चारा पैदा करने वाली फसल है और लंबे समय तक हरी बनी रहती है। तो मकचरी के बारे में, यानी कि रसीले चारे की फसल के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, बात हो रही है आपसे मकचरी के बारे में, तो सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं। ये फसल चिकनी से रेतीली मिट्टी में उगाई जा सकती है। ये भारी मिट्टियों में बढ़िया पैदावार देती है। हल्की रेतीली जमीनों में इसकी खेती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फसल के विकास पर बुरा प्रभाव डालती है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका बढ़िया विकास हो, तो उसके लिए मिट्टी का जो पीएच है, पीएच 5.8 से 7.0 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किस्मों की। एक किस्म है जिसका नाम है TL1। ये किस्म 1993 में तैयार की गई थी और इस किस्म का पौधा दानों के सुरंगी कीटों का रोधक होता है। इसके पत्ते पकने तक हरे बने रहते हैं। इसके बीजों की परत सख्त होती है और सिलेटी भूरे रंग के होते हैं। अगर हम दूसरे राज्यों की किस्मों की बात करें, तो सिरसा इम्प्रूव्ड और रूररी नाम की किस्में भी तैयार की गई हैं। लेकिन किसान भाइयों, जमीन की जब तैयारी की बात आती है, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जमीन की तैयारी किस तरह की जानी चाहिए मकचरी के लिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं जमीन की तैयारी की। मक्चरी की जब भी आप फसल बोएं तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तैयारी की अगर बात करें तो मक्चरी की बिजाई के लिए ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। ज़मीन को बढ़िया तरीके से समतल करने के लिए एक बार हैरो से जुताई ज़रूर करें और फिर दो बार सुहागा ज़रूर फेर दें। फसल की बिजाई तैयार किए बैंडों पर की जाती है और बिजाई की अगर हम बात करें तो इसका समय भी होता है। मई जून महीने में नर्सरी तैयार करें और जून जुलाई महीने में बीजों की बिजाई करें। अगस्त में बिजाई बिल्कुल न करें, क्यों? क्योंकि इससे पैदावार कम हो जाती है। फासले की बात कर लेते हैं पौधे के विकास के लिए। पौधे के विकास के मुताबिक बीजों को 30x40 सेंटीमीटर के फासले पर बोएं और बीज की गहराई की अगर बात आती है तो बीज को 3-4 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोएं। बिजाई को केरा विधि, कौन सी विधि? केरा विधि या बिजाई वाली मशीन की सहायता से की जाती है। तो ये हो गया आपका बिजाई का ढंग, बीज की गहराई, फासला क्या होना चाहिए और बिजाई का समय क्या होना चाहिए, जमीन की तैयारी कैसे होनी चाहिए। ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अब बात आती है बीज की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जितना अच्छा बीज होगा फसल आपकी उतनी ही बेहतर होगी। तो बीज के बारे में आपसे कुछ जरूरी बातें करूँगा और खाद की बात भी करूँगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है उस फसल के बारे में जिसका नाम है मगशरी। जमीन की तैयारी कैसे की जाए, इस बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, बिजाई का तरीका भी बता दिया। बीज की जब बात आती है तो हमें बहुत सारी सावधानियों की जरूरत होती है। बीज की मात्रा का जरूर ध्यान रखें। बढ़िया अंकुरण वाले किस्मों के लिए 16 किलो प्रति एकड़ बीजों का प्रयोग करें। अब बात आती है खाद की, तो इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। खेत की तैयारी करते समय रूड़ी की खाद 8 टन प्रति एकड़ जरूर डालें। नाइट्रोजन 20 किलो यानी यूरिया 44 किलो की मात्रा का प्रति एकड़ में प्रयोग करें। बिजाई से एक महीने के बाद नाइट्रोजन 20 किलो यानी यूरिया 44 किलो का छींटा जरूर दे दें। लेकिन किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे खेत में जो फसल है वहाँ पर अगर खरपतवार आ जाती है तो उस खरपतवार से कितना नुकसान होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फसल चाहे कोई भी हो, खरपतवार उसकी एक तरह से दुश्मन है, दुश्मन। अब इस दुश्मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता फहीम के साथ।

0: दोस्तों छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खरपतवार की, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है हमारी फसल के लिए। नदियों की प्रभावशाली रोकथाम के लिए बार बार गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर नदियों पर काबू ना पाया जाए तो पैदावार में भी बहुत कमी आ जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप इसकी अच्छी रोकथाम करना चाहते हैं तो प्रभावशाली रोकथाम के लिए एट्राटॉफ 50WP 400 ग्राम प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई से 2 से 3 दिन के बाद स्प्रे करें। मिट्टी का तापमान और नदियों को कम करने के लिए मल्चिंग का तरीका भी प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है, जिससे ये जो खरपतवार है इसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये तो बात रही खरपतवार की, अब बात जब आती है सिंचाई की तो वो भी जानना जरूरी है। भाई देखिए किसान भाइयों, जलवायु और मिट्टी के आधार पर 8 से 10 दिनों के फासले पर हमें इस फसल की सिंचाई करनी चाहिए, जो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब बात आती है कि भाई पौधे की देखभाल कैसे करें, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो कि फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो उन कीटों की रोकथाम कैसे की जाए और वो कौन कौन से कीट हैं जो कि हमारी इस फसल को बर्बाद करते हैं, उन कीटों का नाम बताऊंगा। और नाम ही नहीं बल्कि उन कीटों से फसल को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, वो बातें भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कीट और उनकी रोकथाम की। एक कीट होता है जिसका नाम है मक्की का छेदक। ये कीट मुख्य तौर पर फसल के शुरुआती विकास के समय हमला कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है? इसकी रोकथाम के लिए 750 WP यानी कार्बोरिल 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ की स्प्रे जरूर करें। अब बात आती है फसल की कटाई की, तो ये भी सुन लीजिए। इसकी कटाई आम तौर पर बिजाई से 80 से लेके 100 दिन बाद की जाती है। फसल के गुच्छे निकलने पर कटाई की जाती है। इस समय चारा ज्यादा देर तक हरा रहता है और पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ होता है, और सूखी फसल की कटाई धूप में कर ली जाती है। लेकिन किसान भाइयों, कटाई के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। कटाई के बाद फसल को दबाया जाता है। क्या किया जाता है? दबाया जाता है। फसल को हाथों से दबाया जाता है या फसल के ऊपर से ट्रैक्टर को चलाया जाता है। स्टोर करने से पहले सफेद दानों को अलग कर लें। इसके बाद चारे को बोरियों या किसी बंद जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। मक्चरी के दाने की औसतन पैदावार लगभग 5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच

नीच भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण कोई शक कोई मंगोल है, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। अरे

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की, संतरास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की? इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गौंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गौंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं। कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का, कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता, परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
2: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
3: नैन भरते नहीं प्रकृति तुझे बार बार निहार निहार, हरियाली का ओढ़े आंचल, सरसों के छींक पीले पीले, लहरे देख लगे कुछ ऐसे, गले में जो हार हो तेरे, पानी यूं झिलमिल करता एक सेतु में मोती, गुथे हो जैसे चांदी की रेखा सी मुस्काती, पगडंडियां जगह जगह बिखरी, लताएं झूम रही कुछ ऐसे जैसे लच झूम रही हो तुझे झूम झूम, गोभी के फूल लगे कुछ ऐसे, नच पहनी हो कुआरी कन्या सी, सोन बालिया गेहूं की तूने पहनी अपने कानों में, यौवन कलश तेरे ओ प्रकृति ये ऊंचे ऊंचे शैल शिखर, ओढ़ लिया तूने ओ प्रकृति नील गगन का आंचल, पल पल छिन छिन बदले ओ प्रकृति तूने अपने परिधान, कभी हरियाली कभी नील गगन, कभी आंचल में टांक सितारे, चलती पग में झरनों के घुंघरू बांध, छम छम छम की ध्वनि सुनाती तू नाच रही है झूम झूम, जो मदहोश यौवन मदिरा पीकर तुम, पतझड़ आया तुम्हें उदास कर गया, सोन पत्तियां झड़ रही पेड़ों पर से तमाम, लजाए से खड़े हैं सर को झुकाए निर्मम पतझड़ ने लूट लिए भव्य प्रकृति तेरे परिधान, उदास न हो तू ओ प्रकृति नील गगन का ओढ़ ले आंचल, फिर से वसंत आएगा फिर वह भव्य परिधान तुझे मिल जाएगा, फिर तू लजाना ओढ़ के आंचल, दुख तो सब पर आता है, सूरज अस्त होता है रोज, दीपक हम जलाते हैं पर फिर आना ही पड़ता है, सूरज को दुनिया में जीवन देने को।

0: मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सुजल लेकर। पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर आज तक की रिलीज फिल्म के गीत, गजल, भजन, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हो, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं सुनना, या फिर कैसा लग रहा है आपको सृजन और रेडियो मानव रचना भी, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है भगवती सक्सेना जी। आप लेखिका हैं, बहुत सारा साहित्य के क्षेत्र में आपने काम किया हुआ है, आज हम उनके बारे में जानेंगे सुनेंगे। भगवती सक्सेना जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: भगवती जी, जो सबसे पहले हमारे दोस्त आप लोगों से जानना चाहते हैं, यही कि आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? भगवती जी,
1: मैं 2012 से ही कहानियाँ लिख रही हूँ, कहानियाँ कविता, क्यों, मेरी दो बेटियाँ थी और एक मेडिकल में हॉस्टल में गई, एक इंजीनियरिंग में, और हम हस्बैंड वाइफ रह गए और मेरे पास समय ही समय था।
0: अच्छा।
1: और मैं बचपन से डायरी में कुछ ना कुछ लिखती थी, और वो समय ने मुझे मजबूर किया और मैं उसमें हमेशा रात भर दिन भर जब समय मिला मैं लिखने लगी, और तब से मेरी जो लेखनी चलती रही तो अभी तक चल रही है।
0: अच्छा।
1: लेखनी की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई, तब तो ऐसा कुछ नहीं था, डायरी में दो दो लाइन लिखते रहते थे, ऐसा मीडिया आजकल जितना फेमस हो गया उस समय मीडिया नहीं था।
0: क्या बात है भगवती जी, हो सके तो हमारे दोस्तों को अपनी शुरुआती दौर की कोई रचना या अभी की कोई रचना, जो भी आप हमारे दोस्तों को देना चाहें कृपया आप दीजिए।
1: बिल्कुल जी। हाँ, मैं कविता सुनाती हूँ एक।
0: जी, स्वागत।
1: मैं नारियों के ही ऊपर बहुत लिखती थी कि आगे बढ़ो। उस समय मैं पहले गोरखपुर में थी
0: जी,
1: अभी आपने मेरा परिचय, तो वहीं मैंने ये कहानी कविता लिखी थी। बुलंद है हौसले मेरे,
0: क्या बात है,
1: जीवन के कितने भी कठिन पल हो, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: इरादे कर बुलंद, अब रहो, सहना छोड़ो, शुरू करो कहना, जैसे ही कुछ ऊंचाई पर चढ़ोगी तुम्हें विरोध मिल सकता है, रन करो, झुकोगी नहीं, रुकोगी नहीं, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: बेबाक बेबाक बिंदा, हंसी पर भी तुम्हारे कुछ लोग हंसेंगे, माहौल उड़ाएंगे, नीचा दिखाने की कोशिश जारी रहेगी, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: जीवन के कठिनतम दांव को भी हंस कर टालना, हिम्मत न हारना, अनुपलब्धता को उपलब्धि में बदलना, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: अवरोध खड़ा कर रहे हर अभिमानी से, अवरोध खड़ा कर रहे हर अभिमानी से, तुम्हारी राह में आए हर अज्ञानी से,
0: क्या बात है,
1: चोट पहुंचाने वाली कुंठित मनमानी से, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात,
1: फिर दोहराना, बुलंद है हौसले मेरे।
0: हाँ।
1: ये मेरी कविता।
0: क्या बात है, क्या बात है, ए भाई जरा देख के चलो,

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: रहता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है भगवती सक्सेना जी, लेखिका हैं, बहुत सारी विधाओं में आप काम करती हैं। आपने उनकी अभी भी कविता सुनी नारी पर। भगवती सक्सेना जी, चुनौत में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आप बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपको पढ़ा गया, मानवी, हंस, गृह शोभा, अभ्युदय, कविता कानन, सत्य की मशाल, मेरी निहारिका, साहित्य वसुधा, पलाश, बड़े बड़े नाम है। गुजारिश होगी कि आप अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: ये मुझे जो भी रचना अपनी अच्छी लगती है मैं इन समाचार पत्र और ये सब में भेजती हूँ और वहाँ से लोग उसको चुनते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई पत्रिकाओं में भेजती हूँ, समाचार पत्र में आती है। मैं तो अपना काम करती हूँ कि मुझे जो अच्छी लगती है मैं भेजते ही रहती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई पत्रिका में मेरी रचना आए और लोग उसको पढ़ें और लोग मतलब उससे कुछ प्रेरित होकर कुछ आगे भी करें। और मैं नारियों के ऊपर बहुत मतलब
0: नारियों पर आपने बहुत बहुत बहुत हाँ बहुत काम,
1: उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मेरा दिमाग में हमेशा रहता है क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है जीवन में पहले।
0: जी भगवती जी, इस मोड़ पर गुजारिश होगी आप अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए।
1: हाँ, रचना का शीर्षक है जीवन।
0: जीवन जी,
1: ये भी कविता है
0: जी।
1: वैसे मैं कहानियां भी बहुत लिखती हूँ
0: जी।
1: अपने जीवन के निर्णायक स्वयं ही बनना, कभी किसी को ये है समर्पण नहीं करना। जब विचलित हो मन, मौन को ही शस्त्र बनाना, निश्चित विजय तुम्हारी होगी। समय भी आएगा जो षड्यंत्र रचेगा, साम दाम भेद सब कुछ करेगा।
0: क्या बात है।
1: राम कृष्ण के वंशज हो सदा ये याद रखना, सत्य के पथ पर चलते रहना, तुम्हारी विजय होगी। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र जब जीवन में नजर आए, हिम्मत रखना, संकल्प साधना, लक्ष्य निर्धारित करके सब पाओगे।
0: क्या बात है।
1: गीता में कृष्ण के शब्दों को सदा ध्यान में रखना, ध्यान रहे ये अपना भारत इकलौता ऐसा देश है, रामायण गीता से कोई भी अनजान नहीं है।
0: क्या बात है।
1: खंडित होते देखो जब जब रिश्तों की मर्यादा को, अपने जीवन के निर्णायक सदा स्वयं ही तुम बनना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत

0: వెల్కమ్ అగైన్ టు రేడియో మానవ రచన విత్ ఫీల్ గుడ్ ఫీల్ లైవ్ 107.8 FM పర్ ఆప్ హై మాధురి కే సాథ్ ఔర్ మాధురి హాజిర్ హై आपकी महफिल में एक बार फिर से सुरजन लेकर और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही बेहद ही खास मेहमान है, लेखिका है, कथाकार है, कवित्री है, भगवती सक्सेना जी। भगवती जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हैं, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, प्रेरणा साहित्य संस्था, भाषा साहित्य मंच, कलश कारवा, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी संस्थाओं की। गुजारिश होगी कि आप अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: हाँ, बहुत सुंदर सफर है
0: जी।
1: अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था
0: जी,
1: इसमें मैं 2021 से हूँ
0: जी,
1: और इसमें सब कुछ होता है, साहित्यिक सांस्कृतिक सम्मेलन होते ही रहते हैं
0: जी,
1: और वार्षिकोत्सव होता है जिसमें बहुत बड़ा उत्सव ही समझिए, साहित्यिक और सांस्कृतिक, पूरे देश से लोग आते हैं और जिनको बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं, राशि दी जाती है कईयों को 31,000 11,000, वो कई क्षेत्र के रहते हैं
0: जी,
1: मतलब कोई जैसे नृत्य विधा या फिल्म के कलाकार, ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं
0: जी,
1: और वो हम उसमें हैं, मैं भी उसमें कार्यकारिणी में हूँ अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था में
0: जी, जी, जी।
1: वो डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला की संस्था है
0: जी,
1: और इसकी ब्रांचेस बाहर भी हैं और यहाँ भारत में भी कई जगह हैं।
0: क्या
1: आप कोलकाता में भी है?
0: अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाम ही है आपकी संस्था का।
1: हाँ, तो इसकी ब्रांचेस शाखा कई जगह है
0: जी, जी, जी।
1: मैं इन्हीं संस्थाओं में मतलब हर समय हर महीने इसमें कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन मीटिंग होते रहती है, काव्य गोष्ठी होती है और लघु कथा भी होती है।
0: आप अपनी बहुत सारी संस्थाओं को भूल रही हैं, पंखुड़ी संस्थान है जिसके माध्यम से हम मिले हैं।
1: बिल्कुल। हाँ,
0: हम लोग जुड़े ही पंखुड़ी के माध्यम से।
1: मैगजीन में मेरी कहानी भी आई है ब्लॉग में, और वो बहुत उसके तो मैं बहुत लोगों को बहुत दिनों से जानती हूँ, आज भी नहीं, वो डॉक्टर उपमा शर्मा से मेरी बहुत अच्छी पहचान है रानी।
0: भगवती जी, गुजारिश होगी इस मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे रही है।
1: मेरी ये कविता का शीर्षक है आजाद परिंदा
0: जी। स्वागत है।
1: क्योंकि देखिए, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, शायद ये आपको पता ही होगा
0: जी,
1: आप देख रहे
0: जी, जी।
1: हाँ, ये इसी के ऊपर एक कविता है
0: जी। स्वागत स्वागत।

0: जिम्मेदारियों से मुक्त एक आजाद परिंदा हूँ मैं। हाँ मैं 60+ हूँ। जिंदगी जीना आ गया, सब बंधनों से आजाद हूँ। डरना मैंने छोड़ दिया है। मैं 60+ हूँ।
1: जी
0: डांस भी कर सकती हूँ, गाने भी मैं गा सकती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ।
1: हाँ,
0: 60+ हूँ। गया वो 60s का जमाना। गया वो 60s का जमाना जब लोग सिर्फ बजट करते थे। 21वीं सदी में 60+ फैशन शो में भी जाते हैं,
1: क्या बात है,
0: भी तो जाते हैं। हाँ मैं 60+ हूँ। तन पर झुर्रियाँ हो सकती हैं, तन पर झुर्रियाँ हो सकती हैं, पर मन पर बिल्कुल नहीं है।
1: क्या बात है,
0: वो अलग बात है, वो अलग बात है कि डायबिटिक हूँ। चुपके से रसगुल्ला खाती जरूर हूँ। अंतर मन के नेटवर्क से चिंतन में ईश्वर से भी हमेशा जुड़ी रहती हूँ। हाँ मैं 60+ हूँ।
1: क्या बात है जी।

0: Welcome again to Radio Mano Rachna with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर और आज हमारे साथ हैं कहानीकार कवित्री गीतकार भगवती सक्सेना जी। भगवती जी स्टूडियो में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी आपकी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, कुछ के मैं नाम लूंगी और आपसे गुजारिश करूंगी आप अपने सफर के बारे में बताइए। शीशे के रिश्ते, परिसीमा के परे, कल्पनाओं का अंबार, पंकजा, जो आपने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइएगा
1: जी। बहुत सबसे पहली किताब मेरी शीशे के रिश्ते थी
0: जी,
1: जिसमें कहानियां हैं 35-36
0: जी,
1: और उसके बाद भी परिसीमा के परे मेरी एक किताब आई है 2024 में
0: जी,
1: जिसका विमोचन भी अभ्युदय संस्था में हुआ
0: जी,
1: और इसमें भी 35-36 कहानियां हैं जो यहां सब लोगों के द्वारा बहुत पसंद की गई।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद अभी एक किताब इस समय हुई है 2025 में, कल्पनाओं का अंबार
0: जी,
1: उसमें कुछ कहानियां भी हैं और कुछ कविताएं भी हैं, दोनों उसमें
0: जी जी।
1: अच्छा, वो डिजर्विंग बुक जो है वो स्नेहा की है, स्नेहा खानवेलकर
0: जी,
1: उसका ट्रांसलेशन मैंने किया।
0: अच्छा, आप पंकजा, पंकजा की बात हो रही है ना अभी?
1: हाँ, पंकजा, पंकजा जी,
0: जी आप,
1: हाँ वो किताब एक आत्मकथा थी और बहुत प्यारी किताब थी।
0: अच्छा, पंकजा जो आपने ट्रांसलेट की है?
1: जब मैंने ट्रांसलेशन किया तो भी मुझे वो लिखने में भी बहुत आनंद आया।
0: क्या बात, क्या बात।
1: पूरे पूरे की है स्नेहा खानवेलकर।
0: तो गुजारिश होगी भगवती जी इस मोड पर आप हमारे दोस्तों को अपनी जो भी कविता गीत जो भी आप देना चाहें आपका स्वागत है।
1: कविता का शीर्षक है मुस्कान
0: जी। स्वागत।
1: स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग किसने देखा है? पर जिस घर में पत्नी हंसती मिले, मुस्कुराती मिले, समझना वही स्वर्ग।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: आकाश किसने छुआ है? पर जिस घर में पत्नी उड़ती दिखे, विचरण करे, समझना वही आकाश है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हवा को किसने पकड़ा है? हवा को किसने पकड़ा है? पर जहाँ पत्नी शांत मिले, आपका सत्कार करे,
0: क्या बात है,
1: समझना वही संसार है।
0: वाह क्या बात।
1: दूर से ही
0: क्या बात है,
1: दूर से ही मुस्कुराती दिखे, खिलखिलाती दिखे,
0: क्या बात है,
1: आपको देख आनंदित हो, समझना वही लक्ष्मी है।
0: क्या बात है। तेरा

0: वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप है माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है। आप लेखिका हैं, कवित्री हैं, कथाकार हैं, भगवती फिक्शनली स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आपने इतना सारा काम किया साहित्य के क्षेत्र में, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। कुछ के मैं नाम लूंगी, सहभागिता सम्मान से सम्मानित है, श्रेष्ठ सदस्य सम्मान आपको मिला है, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य चेतना सम्मान आपको प्राप्त है, राजू देवी सम्मान से आप सम्मानित है, हिंदी गौरव सम्मान, पलक रत्न सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, कलम सारथी सम्मान, बहुत लंबी लिस्ट है आपके सम्मानों की। गुजारिश होगी कि आप अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। इतना सारा सम्मान आपको मिला, कैसा लगता है इतना सारा सम्मान लेके?
1: सबसे पहला सम्मान मुझे पलक समूह से, क्योंकि मैं वहाँ बहुत सी कहानियाँ लिखती थी और 2012 से लेकर अभी तक मैं लिख रही हूँ, तो 2019 में मुझे पलक रत्न का सम्मान मिला वहाँ से।
0: जी जी।
1: उसके बाद मैं ये अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था से 22 में मिला, 23 में मिला, 24 में मिला और 25 में अभी पूरे बेंगलोर में श्रेष्ठ सदस्य सम्मान से नवाजा गया।
0: ऑल द वे बेंगलोर से पधारी है दोस्तों हमारे स्टूडियोज में।
1: हाँ जी जी। फिर प्रेरणा साहित्य मंच से मुझे 24 में साहित्य चेतना सम्मान मिला, प्रेरणा मातोश्री राजो देवी सम्मान मिला। वहाँ पे बहुत सी प्रतियोगिता होती रहती है, उसके अनुसार हमें सम्मान मिलते हैं। और साहित्य अर्पण समूह से हिंदी गौरव सम्मान मिला, भाषा साहित्य मंच से साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया। वहाँ भी हर माह में काव्य गोष्ठी होती है और हर महीने हम लोग जुड़ते रहते हैं, कविता कहानी कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तब साल में एक बार सम्मान दिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: कलम बोलती है साहित्य संस्था, कलम के साथ ही सम्मान से मुझे नवाजा गया।
0: क्या बात।
1: और इस तरह कई संस्था थी, एक विश्व रचनाकार मंच भोपाल का था, वहाँ से कल्पना चावला सम्मान भी मुझे मिला है।
0: क्या बात।
1: और कई एक अभी हम लोगों ने एक नाटक संस्था शुरू की है अभी जो चतुर नार के नाम से विख्यात है, और उसमें हम 4 लोग हैं और बेंगलोर में कई संस्थाओं में हम जाकर उस पे नाटक भी करते हैं, छोटी छोटी नाटिका समाज के उत्थान के लिए, जैसे अभी हमें पर्यावरण के ऊपर करने वाले हैं, हमारी तैयारी है।
0: समाज सेवी भी है ना। इसीलिए इंटरव्यू लेना जरूरी होता है दोस्तों, कि इनको हम सिर्फ साहित्यकार के माध्यम से जानते हैं कि आप साहित्यकार हैं, लेकिन आप इतना काम कर रही हैं समाज में। भगवती जी, गुजारिश होगी कि इस मोड़ पर अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जी स्वागत।
1: ये मेरी छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है इम्तिहान।
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: इम्तिहान अभी बाकी है, ब्रह्मांड विश्वविद्यालय की कठिन परीक्षाएं अभी बाकी है।
0: क्या बात है।
1: उड़ान अभी कितनी शेष है क्या मालूम, पर परीक्षा की तैयारी अभी बाकी है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तन जरूर थका है, मन पंछी में जान अभी बाकी है।
0: क्या बात है।
1: आत्मविश्वास अभी बाकी है, रोज जिंदगी की गलतियों को सुधारते हैं, प्रश्नकर्ता की नजरों का सामना अभी बाकी
0: है। क्या बात है।
1: जो बोया है वो पाएंगे, कर्म का भुगतान अभी बाकी है।
0: बाकी है।
1: ध्यान अभी बाकी है।

0: Welcome again to Radio Manav Rachna with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर और आज हमारे साथ हमारी बेजी बेजी खास मेहमान है लेखिका कथाकार कवित्री साहित्यकार तो हैं ही साथ में आप समाज सेवी भी हैं हमें अभी अभी पता लगा और हमारी बेहद ही एक महत्वपूर्ण संस्था है पंखुरी से आप जुड़ी हैं जिनके माध्यम से हम इनसे हमारा परिचय हुआ भगवती सक्सेना जी स्टूडियो में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी आपने इतना सारा काम किया साहित्य के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में साहित्य के माध्यम से भी आपने समाज की देश की बहुत सेवा की इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं इतनी सफलता आपने अर्जित की कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी नारी का हाथ होता है तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति ना होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ हो सकता है और ये बताएं कैसा लगता है इतने सारे सम्मान लेके इतनी सारी सफलता अर्जित कर। भगवती जी
1: बिल्कुल होता है सबसे पहले मेरे श्रीमान जी जयप्रकाश गौर जी
0: क्या बात
1: मेरा बहुत साथ देते हैं और समझिए कि समय बदला है उन्होंने पग पग पर मेरा साथ दिया है। अगर मैं लिख रही हूँ तो वो बहुत कुछ बाहर घर किचन सब देख लेते हैं अगर वो अभी रिटायर्ड लाइफ में है
0: क्या
1: और मेरी बेटियाँ छोटी बेटी इंजीनियर है और वो भी मेरा बहुत साथ देती है सबके सहयोग से ही जो मुझे समय मिलता है उससे मैं बहुत कुछ लिखती हूँ।
0: मैं
1: मतलब इसमें सबसे बड़ा हाथ तो मेरे श्रीमान जी का है जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे।
0: और कैसा लगता है इतने सारे अवार्ड्स लेके
1: बहुत अच्छा लगता है
0: क्या
1: असीम शांति मिलती है। अब ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कोई चीज की मुझे इच्छा नहीं रही मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से।
0: क्या मतलब गुजारिश करूंगी हम अंतिम दौर में हैं अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए।
1: बिल्कुल सुनाओ
0: जी स्वागत हम तो इंतजार कर रहे हैं।
1: मेरी इस कविता का शीर्षक है बदलाव।
0: ठीक है स्वागत।
1: चरित्र के समस्त आयाम केवल स्त्री के लिए ही परिभाषित थे कुछ दशकों ने बदल दिया इसे ऐसा बदलाव होना भी चाहिए। अब सुरक्षा चक्र के लिए कोई भी स्त्री मैरिड लिखना पसंद नहीं करती करीबी दोस्त अगर पुरुष भी हो तो वो नहीं डरती क्यों डरे
0: क्या बात
1: शब्दों के चयन में भी नहीं डरती वस्त्र भी कपड़े भी मन मुताबिक ही पहनती है भावों की उन्मुक्त अभिव्यक्ति उसकी बेबाकियां उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती उन्मुक्त हंसी और कर्तव्य की अभिव्यक्ति उसे किसी कटघरे में नहीं बांधती अब चार भी वो साथी से बनवा सकती है बराबरी से जिम्मेदारियों का बोझ भी उठा सकती
0: क्या बात है
1: उसकी सोच उसकी संवेदनाएं अब उसे अंदर ही अंदर घुटने का सबब नहीं बनती
0: क्या बात है
1: स्त्री के लिए बने आयाम बदल चुके हैं कुछ दशकों ने इसे बदल दिया है। धन्यवाद।
0: क्या बात है कंकरिया मार के जगाया
1: कल तूने

0: भगवती जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला, आप हमारे स्टूडियोज में चले आए ऑल द वे फ्रॉम बेंगलोर, आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ मुझे नहीं पता।
1: धन्यवाद मैम, आपने मुझे समय दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप इस मंच का और आपके एफएम रेडियो का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके आपने सुनने से।
0: और दोस्तों, संगीता अहलावत जी सुन रही हैं, राजेंद्र अग्रवाल हैं, अरविंद सिंह हैं, उमा शंकर शुक्ला, अलका शर्मा, प्रीता कौशिक, तनिष्क शर्मा, प्रियम वत्स, वीनू, नीता, अमृता, प्रभात, सुदर्शन, उपमा, रितेश, पूर्वा, आर के सिंह जी हैं, सुजीत है, सलमान है, अंकित है, मुकेश शर्मा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको रेडियो मानव रचना और सृजन भी, SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना, फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और अक्सर हम बातें करते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी के बारे में बात करनी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि सबसे अनमोल तो यही है ना हमारे पास, जिसका ख्याल हमें रखना है। पर ख्याल कैसे रखना है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है जहां पर हम जाते तो ऑफिस सिर्फ 8 घंटे के लिए हैं, लेकिन समय देते हैं अपने काम को लगभग 12 से 15 घंटे, क्योंकि घर आकर भी आप नॉनस्टॉप काम करते रहते हैं अपने ऑफिस का। दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, सड़कों पर पोल्यूशन और ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। इन सब से अगर थोड़े दिन के लिए आप छुट्टी लेके कहीं चले भी जाएं, तो वहाँ पर भी सोशल मीडिया आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और अगर ये सारी चीज़ें कभी ठीक भी हो जाएं, तो फिर खाना कुछ ऐसा खा लेते हैं जो बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाता है। लेकिन जब हम बात हेल्थ की करते हैं, तो ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपकी डाइट हो, चाहे फिर मेडिसिन ही क्यों ना हो। अब अक्सर हम दवाइयों के बारे में बात करते हैं, पर हम आयुर्वेदा को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आयुर्वेदा तो थोड़ा सा स्लो ट्रीटमेंट है। जी हाँ, आज हम आयुर्वेदा की कुछ ऐसी ही बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, कुछ ऐसी ही जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आयुर्वेदा हाल ही में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आयुर्वेदा की सोशल मीडिया पर रील्स देखते देखते आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इतनी सारी एडवाइस इतने सारे लोग दे रहे हैं। बट क्या ये हेल्थ एक्सपर्ट्स जेन्युइन हैं? क्या आप तक जो जानकारियां पहुंच रही हैं वो आपकी बॉडी को वाकई फायदा पहुंचाने वाली हैं? ऐसी कुछ बातें करने वाले हैं हम। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है, ये जानना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्होंने फरीदाबाद से इनके परिवार ने शुरुआत करी आयुर्वेदा की, बहुत सारे लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई, सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया और आयुर्वेदा को घर घर ले जाने का दायित्व उठाया। जीवा आयुर्वेदा के सीईओ मधुसूदन चौहान जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जो कि बोर्ड मेंबर हैं आयुष एक्सेल एंड को चेयर फिक्की आयुष कमेटी भी हैं। साथ ही 15 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस है इन्हें आयुर्वेदा में। सिर्फ आयुर्वेदा को आप तक पहुंचाने का ही नहीं बल्कि इनोवेशन का भी। जी हाँ, इनोवेशन अपने आप में ही टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर ये जुड़ जाए तो बहुत कमाल कर सकता है। 80 से ज्यादा आयुर्वेदा क्लिनिक पूरे देश भर में पहुंचाने का और साथ ही 35 से ज्यादा कंट्रीज में भी आयुर्वेदा को एक नई पहचान दिलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। टेलीमेडिसिन और डॉक्टर ऑन कॉल जैसी सुविधाएं इन्होंने शुरू करी, जो आपने अक्सर बाकी फील्ड्स में देखी होंगी पर आयुर्वेदा में जरा कम है, वो शुरुआत भी इन्होंने करी है। आयुर्वेदा को लेकर रिसर्च पेपर्स लेकर आना, वो भी डेटा बेस्ड, आसान नहीं होता है आज के समय में, जहां पर हर थोड़ी देर में कुछ चीज़ें बदल रही हैं, बातें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है। इसके साथ साथ ये एक रिनाउंड पब्लिक स्पीकर हैं होलिस्टिक हेल्थ और भारतीय नॉलेज सिस्टम्स में, और साथ ही कई पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो मधुसूदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में।
2: नमस्कार दीक्षा जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि आज रेडियो मानव रचना में आने का मुझे मौका मिला।
1: जी तो मधुसूदन जी, बहुत सारी बातें मैं करने वाली हूँ, क्योंकि जीवा आयुर्वेदा एक ऐसा नाम है जो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, क्योंकि हम ब्रांड के बारे में बात नहीं करें, हम आयुर्वेदा के बारे में बात कर रहे हैं। फरीदाबाद में जब बहुत साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, तब हम भी छोटे बच्चे हुआ करते थे और आप भी बच्चे ही होंगे उस दौर में, आपके पिताजी ने इसकी शुरुआत करी और बहुत सारे, मैं कहूँगी कि फॉरेन से आए हुए एक्सपर्ट्स भी जुड़े इसके साथ, जो फरीदाबाद में पहली बार हुआ था। सो ये जो शुरुआत हुई, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, ताकि उससे जुड़ी हुई जानकारियां हम आगे सभी के साथ शेयर कर सके।
2: जीवा का जो शुरुआत हुआ वो इस उद्देश्य और इस मकसद के साथ हुआ कि कैसे जो भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं, जिनको आज हम एक सहज भाव से इंडियन नॉलेज सिस्टम्स भी बोल देते हैं
1: जी,
2: तो जो ये भारतीय ज्ञान कला विज्ञान संस्कृति है, इसको कैसे एक मॉडर्न परिवेश में, एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लोगों के सामने पेश किया जाए, जिससे एक हेल्दी, वेल्दी और प्रॉस्पेरस समाज, एक स्वस्थ, संपन्न और निर्भय समाज की स्थापना की जाए। तो इस एक थॉट के साथ जीवा की शुरुआत हुई, जिसमें से आयुर्वेद हेल्थ के क्षेत्र में हमने शुरू किया
1: जी।
2: एक जो घर था वहीं से शुरुआत हुई, उसके गैराज में आयुर्वेदा क्लिनिक शुरू हुई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बच्चा था तो शाम को स्कूल के बाद मैं भी पुड़िया बनाना या दवाई बनाना, खरल में उसके जो जड़ी बूटियां हैं उनको पीसना, तो बचपन से ही आयुर्वेद के एक माहौल में परवरिश हुई
1: जी। आयुर्वेद के माहौल में परवरिश हुई और उसके बाद आपने आयुर्वेदा को मॉडर्न तरीके से लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया। मधुसूदन जी, आयुर्वेदा को सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ना कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि आयुर्वेदा मतलब बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कि सुबह उठकर ये पिए, दोपहर को ये खाएं, फिर शाम को ऐसे करें, वॉक करें, प्राणायाम करें, इतना सब कुछ जब वो सुनते हैं तो आज के बिजी लाइफस्टाइल में घबरा जाते हैं।
2: बिल्कुल, और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और कई बार धारणा ये है कि आयुर्वेद का मतलब ये तो कुछ ऑर्थोडॉक्स पुराने विचार का होगा, तो आज के नए दौर में शायद इसका क्या महत्व है, वो कन्फ्यूजन में आ जाता है। बट अगर आप सिंपल तौर के से देखें, तरीके से देखें, तो संस्कृत की एक बड़ी खूबसूरती है कि शब्द के अंदर ही उसका अर्थ छुपा होता है।
1: बिल्कुल,
2: तो आयुर्वेद मतलब आयुष जमा वेद। वेद हमें सब पता है, वेद का मतलब है नॉलेज, किसी भी चीज का ज्ञान।
1: बिल्कुल,
2: आयुष का मतलब क्या है? आयुष बोलते हैं शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का जो सम्मिलन है, इसको आयुष बोलते हैं। अगर सरल भाषा में बोले तो लाइफ
1: जी।
2: तो द नॉलेज ऑफ लाइफ इज आयुर्वेद। तो अगर आप अपने लाइफ में एक हेल्दी, पीसफुल, फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, इमोशनली हेल्दी, स्पिरिचुअली कॉन्शियसली हेल्दी एक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आयुर्वेद आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है।
1: बिल्कुल,
2: ये कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं। आप आज गाड़ी खरीदते हैं तो, या कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप, मोबाइल खरीदते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि यार इसका वारंटी कैसे चलेगा, इसकी बैटरी को कैसे ख्याल रखें, इसकी अंदर का जो स्क्रीन है उस पे गार्ड लगाते हैं, पीछे कवर चढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो गाड़ी का भी हवा, पानी, तेल सब चेक करते रहते हैं।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमें बताया गया है। आपकी ये इतनी शानदार गाड़ी भगवान ने आपको दी है, इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल साथ में आयुर्वेद के तौर पर है
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि किसी प्रॉब्लम को आने से पहले अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो वो ज्यादा अच्छी चीज होती है। जैसे आप गाड़ी की सर्विस समय समय पर कराएं तो गाड़ी खराब ही नहीं होगी, लेकिन अगर आप सर्विस को ही टालते रहेंगे तो ऑफ कोर्स गाड़ी कहीं ना कहीं तो दिक्कत देगी। तो जीवन की गाड़ी भी ऐसी ही होती है जिसको कंट्रोल करना, जिसको सही तरीके से सर्विस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सी बातें हम जान रहे हैं आज आयुर्वेदा के बारे में। वक्त है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। दोस्तों कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। बातचीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं और आयुर्वेदा से जुड़ी हुई दुनिया के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा एक ऐसी फील्ड है आपको फिट रखने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो एक्चुअली में आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना ठीक कर रही है। और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसलिए भारत में इसका प्रचलन तो शुरू से रहा है, पर अब ये दुनिया भर में पहुंचने लगा है। सो आयुर्वेदा से जुड़ी हुई बहुत सी बातें जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीवा आयुर्वेदा के CEO मधुसूदन चौहान जी, जिनसे हम बातचीत का सिलसिला जारी रख रहे हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है और यहाँ पर आयुर्वेद कितना रेलेवेंट है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बीमारी होने के बाद दूसरी तरफ ज़्यादा जाएं, यहाँ कंपटीशन की बात नहीं है, पर लोगों को लगता है कि जल्दी जिसका असर हो उस तरफ जाना चाहिए। तो आयुर्वेदा बीमारी को होने के बाद किस हद तक कंट्रोल कर सकता है, ख़ासतौर पर से बड़ी बीमारियाँ जैसे कैंसर है या फिर लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है?
1: नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आयुर्वेद को हम बोलते हैं 5000-6000 साल पुराना ज्ञान है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ इतनी पुरानी है वो आज जब आधुनिक दौर में चीजें हर 6 महीने में बदल जा रही हैं, हमारा कोई ना कोई चैट GPT आ गया है, यू नो, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सब बदलती रहती हैं, तो ये 5000 साल पुराना ज्ञान आज के समय में कैसे रेलेवेंट है? मेरा ये मानना है कि जिस तेजी से समाज में, हमारी जीवन शैली में, हमारे खान पान में, हमारे रहने के तरीके में बदलाव आ रहा है, उतना ही ज्यादा रेलेवेंसी आयुर्वेद की आज के समय में बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद बात करता है आहार विहार विचार व्यवहार की, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, डाइट, लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ एंड योर रिलेशनशिप, योर बिहेवियर, इन सबको मिलाकर हम एक हेल्थ की बात करते हैं। आज जो आपने बीमारियों की बात करी या जो समस्याएं हमारे को आ रही हैं स्वास्थ्य में जी। ये एक होता है कम्युनिकेबल बीमारी। आज से 25-30 साल पहले हम बोलते थे हैजा हो गया, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, डिप्टेरिया हो गया, या कोई बैक्टीरियल अटैक हो गया, उसकी वजह से लोग मर गए, प्लेग फैल गया। ये कम्युनिकेबल बीमारियां कम हो रही हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट, कैंसर, लिवर, किडनी, स्किन, रेस्पिरेटरी, ये सारी बीमारियों का कॉज कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया नहीं, ये हमारी जीवन शैली है, हमारा खान पान है। तो अगर जो ज्ञान विज्ञान इसको ठीक करने की बात हमें समझा सकता है, तो इससे बेहतर कोई इलाज ही नहीं।
0: बिल्कुल। आपके मुताबिक जो भी प्रॉब्लम्स हमारी, हम जो बात करें बड़ी बीमारियों की, ये शुरू होने से पहले कंट्रोल की जा सकती है अगर आप आयुर्वेदा का साथ लेते हैं तो, जीवन शैली को सुधार।
1: बिल्कुल, आयुर्वेद बात करता है षड्विध क्रियाकाल की, यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो 6 stages ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन। हम जो बीमारी की बात करते हैं, चाहे आप डायबिटीज लें कि शुगर आपको बढ़ी हुई दिखी तब आप बोलेंगे हाँ मेरे को डायबिटीज हो गया है या प्री डायबिटीज हो गया है, आयुर्वेद के हिसाब से ये 4th stage होता है। अच्छा। जब बीमारी का लक्षण दिखने लग जाए ये 4th stage होता है, फिर बीमारी और घर करती है और जड़े गहरी करती,
0: मतलब वो आपके शरीर में आ ही गई है।
1: आ ही गई है, वो तो उसका बीज का रोपण हो गया है, उसका पौधा भी बन गया है, पौधे पे अब आपको फल भी दिखना चालू हो गया है। ये 4th stage है। आयुर्वेद बात करता है कि कैसे पहले ही ब्लॉक पर, जब उसको बोलते हैं आपका दोष प्रकोप या इसका संश्रय हो रहा है, इसका स्थान बदल रहा है, ये जब पहला स्टेज या दूसरा स्टेज होए, अगर हम इसको, और उस समय पर बहुत आसान है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कोई पौधा है अभी ये सिर्फ फूटा है, इसको निकालना जमीन से आसान है, या जब इसका पेड़ बन गया और पेड़ की जड़ें पूरी फैल गई तब इसको निकालना आसान है।
0: बिल्कुल, यानी स्टार्टिंग से कंट्रोल करने वाली चीज।
1: तो आयुर्वेद में तो जो सरल नुस्खे हैं, जो उसकी जीवन शैली है, जो खान पान के बारे में बताया गया है, और वो भी हर व्यक्ति विशेष के लिए, ये आपके लिए है। आयुर्वेदा इज, I call it the oldest but the most advanced medical and life science in the world.
0: Absolutely, absolutely. और जब हम बात करते हैं अपनी lifestyle को ठीक रखने के बारे में, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या से शुरुआत करनी चाहिए। जो लोग रात भर काम करते हैं और सुबह देर से उठते हैं, क्योंकि रात भर काम किया है, सुबह आप 5-6 बजे सो रहे हैं, फिर आप दोपहर को 12 बजे उठ रहे हैं, तो आप अपना एक प्रकृति के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी शरीर में। सर, अक्सर लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट बहुत स्लो होता है, हम अगर इलाज कराना भी चाहें
2: तो भी हम नहीं करा पाते क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है। आपको अगर जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, खांसी हुई है या फिर कोई और दिक्कत हुई है, एलर्जी हुई है, अब आप एक टैबलेट लेते हैं और उससे ठीक हो जाते हैं, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, आप अपने काम पे चले जाते हैं क्योंकि आप ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते या बच्चे एग्जाम्स नहीं मिस कर सकते हैं। सो इसलिए लोग आयुर्वेदा की तरफ जाने से थोड़ा सा पीछे इसलिए हट जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं खासतौर पर से जो अपने लाइफ में इतना समय नहीं दे पाते हेल्थ को, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए?
1: नहीं, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी और ये एक बहुत ही कॉमन सवाल लोगों के जहन में रहता है जब वो अपने बीमारी के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए किसी प्रणाली का चुनाव कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है जो आपने बोला कि आप बीमारी से निजात चाहते हैं, उसका इलाज चाहते हैं या सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहते हैं, ये दोनों में फर्क है
2: जी,
1: है ना। तो मान लीजिए हम किसी भी रोग की बात करें, हम जोड़ों के दर्द की बात करें, तो जोड़ों के दर्द में, जोड़ों में दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, ये तो उसका एक लक्षण हो गया, लेकिन जोड़ों का दर्द हुआ क्यों, क्या बिगड़ा शरीर में, ये क्यों बिगड़ा और ये क्या बिगड़ता ही चला जा रहा है, इसकी रोकथाम कैसे करी जाए। तो जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो हो सकता है सिस्टम बदलने में थोड़ा समय लगे,
2: समय लगे,
1: है ना। अभी मान लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें उनकी मांग है, है ना, फिर उसका काउंटर ये आता है कि क्या एक व्यक्ति का रिजाइन कर देने से एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा, वो एक सिम्टोमेटिक चेंज है, लेकिन सिस्टमिक चेंज तो करना पड़ेगा। क्या दोनों जरूरी हैं? बिल्कुल दोनों जरूरी हैं। अगर मेरे को कोई बीमारी हुई है, आज मेरे सर में दर्द है, मेरे को आज ऑफिस जाना है, आपका कोई ऐसा इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, आप लीजिए, बट ये जान के लीजिए कि आप सिर्फ सिम्टम सप्रेशन या सिम्टम मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना। अब मेरे को बीमारी भी ठीक करनी है, अगर मान लीजिए आपके घर में कहीं पे सीलन आ जाए, तो मैंने पुट्टी लगाकर उस पर
2: पेंट कर दिया,
1: ठीक है, आपने तभी के लिए, आपके घर में आज गेस्ट आ रहे थे या आपके घर में शादी है तो आपने कर दिया कि वो इलाज हो गया, लेकिन सीलन क्यों आ रही थी? कोई अंदर से पाइप लीक है क्या, कहीं पे कचरा फंसा हुआ है पाइप में, या कोई पाइप फट गया है उसकी वजह से पानी रिस रहा है, समस्या क्या, या ऊपर आपकी वाटर प्रूफिंग नहीं है छत पर तो बारिश का पानी नीचे आ रहा है क्या, ये तो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ठीक नहीं करोगे तो समस्या ये होगी कि ये कल को सीलन कहीं और आएगी या वहीं पर ही अंदर अंदर बढ़ती चली जाएगी और आपकी दीवार को खराब करेगी।
2: बिल्कुल।
1: तो अमूमन हम यही करते हैं कि हम समझते हैं सिम्टम हमने मैनेज कर लिए तो हमने बीमारी ठीक कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो खराब होता चला जाता है, फिर कुछ और लक्षण में मैनिफेस्ट होता है, या जब बीमारी और एडवांस स्टेज पे चली जाती है तब हम बोलते हैं यार अब तो आयुर्वेद में आना पड़ेगा, फिर आयुर्वेद को तो आपको समय देना पड़ेगा, उस समय पर आ पाएंगे तो।
2: बिल्कुल, और मुझे लगता है आयुर्वेद का जो समय है वो समय बिना किसी नुकसान के होता है, आपकी बॉडी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते जो आपको बाद में परेशान कर सके, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में ऐसा होता है कि आपने कोई दवाई खाई है उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं होगा, ये डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ आप ना लें क्योंकि इसका बाद में आपको क्या नुकसान होगा ये नहीं जानते, तो जितना ज़रूरी है डॉक्टरी सलाह से वो दवाइयाँ लें। तो दोस्तों, आयुर्वेदा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें कर रही हैं, लेकिन इन सभी बातों के बीच अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, मैं हूँ दीक्षा।

0: फील गुड फील लाइव आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम बातचीत जारी है आयुर्वेदा से जुड़ी हुई। हम अपनी बीमारियों का इलाज जनरली कुछ दवाइयां खा के करवा लेते हैं, छोटी हो या बड़ी प्रॉपर डॉक्टरी सलाह बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या ये डॉक्टरी सलाह सिर्फ एलोपैथी या होम्योपैथी की जरूरी है या फिर आयुर्वेदा भी हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमें बड़े लेवल पर मदद कर सकता है, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीवा आयुर्वेदा के सीईओ मधुसूदन चौहान जी, जिनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। आइए और भी बातों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा का सबसे बड़ा फायदा क्या है। आजकल युवाओं के लिए बात करना चाहूँगी जिनको लगता है कि घंटों स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लाइफस्टाइल जो है वो कुछ हद तक ख़राब कर चुके हैं, फिटनेस के मामले में सिर्फ जिम जाना पसंद करते हैं और प्रोटीन का इनटेक पसंद करते हैं, ये कुछ चीज़ें जो है दिमाग में उनके बैठ चुकी हैं। जिम जाना ठीक है आप जाइए, लेकिन आयुर्वेदा को कैसे अपनाएं, यंगस्टर्स खास तौर पर से मैं जानना चाहूँगी।
1: नहीं, मैं आपने बिल्कुल कहा, यंगस्टर्स आज जिस तरीके से जिम में जा रहे हैं, फिटनेस के लिए जागरूक हो रहे हैं, अलग अलग तरीके सप्लीमेंट ले रहे हैं, ये एक दिशा दिखाता है कि यूथ अपने फिटनेस को लेकर जागरूक हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप फिटनेस, लॉन्ग टर्म हेल्थ और लॉन्जिविटी के बारे में वाकई सीरियस हैं, तो आप आयुर्वेद को मिस नहीं कर सकते। इसके दो तीन उदाहरण मैं आपको देके बताता हूँ। ये ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेद में बिल्कुल सरल भाषा में आराम से हमारे जीवन शैली में उतार दी गई थी। हम बोलते हैं यार अपना पाचन तंत्र ठीक रखो, जितनी आपकी अग्नि अच्छी रहेगी उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। सिंपल भाषा में बोले तो कि सब बीमारियों का जड़ जो है वो आपका पेट है, इनडाइजेशन है, है ना। आज आप गट में जितना भी काम देखें, जो यूथ भी है आज हम प्रोबायोटिक ले रहे हैं, प्रीबायोटिक ले रहे हैं, बीसीएएज लेते हैं, एंजाइम्स लेते हैं, कोएंजाइम्स लेते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेते हैं, जितना प्रोटीन पाउडर यूथ खा रहा है आप उसमें पीछे लेबल उठाकर देखेंगे तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपका गट ठीक नहीं है तब तक आप दुनिया का बेस्ट प्रोटीन खाते रहिए, उसका सिंथेसाइज नहीं होएगा, उसका बॉडी में कन्वर्जन नहीं होएगा। और जब आपके गट का बैक्टीरिया, जो गट माइक्रोबायोम है, वो खराब हो जाएगा, वो रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। वो एक तरीके से एक फैक्ट्री भगवान ने आपको आपके अंदर दी हुई है, जो आप जो भी खा रहे हो उसको ब्लड में, मसल में, टिश्यू में, आपके एनर्जी में, आपकी बोन्स में, बोन मैरो में, स्टेम सेल सबको कन्वर्ट करता है। तो ये फैक्ट्री में अगर हड़ताल हो गई या अच्छे वर्करों को आपने बाहर फेंक दिया तो ये फैक्ट्री खराब हो जाएगी, तो इसको फिक्स करना मुश्किल है। तो गट को मैं पहली चीज बोलता हूँ। दूसरी चीज स्लीप। आप आज फिटनेस में नंबर वन ट्रेंड देखेंगे तो वो कहते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है और जिमिंग है उतना ही या शायद उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिकवरी है। रिकवरी का नंबर वन टूल है स्लीप,
0: गुड स्लीप।
1: और स्लीप का मतलब सिर्फ घंटे नहीं, आप कितना सो रहे हैं, कब सो रहे हैं, कितना डीप सो रहे हैं और आपकी रेस्टफुलनेस क्या है।
0: बिल्कुल,
1: आयुर्वेद इसकी बात करता है। आयुर्वेद बोलता है कि तीन ट्राइपॉड हैं हेल्थ के, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य से यहाँ पर मतलब वो नहीं है जो अमूमन हम समझते हैं, आहार तो न्यूट्रिशन जो आप खा रहे हैं, दूसरा निद्रा स्लीप, और तीसरा ब्रह्मचर्य मतलब सेंसरी कंट्रोल। आपने जैसे बोला हम चार चार घंटे अगर रील्स पे लगे रहेंगे तो ये सेंसरी कंट्रोल नहीं हुआ, इससे प्रॉब्लम आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, गलत तरीके की चीज खा रहे हो, मेरे जीभ पे कंट्रोल नहीं है, वो मेरे दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, माइंड इमोशंस थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, तो मेंटल हेल्थ, ये सारे चीजें बड़े ही सिंपल तरीके से, हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत में हैं जिसके पास आयुर्वेद की एक्सेस है, आयुर्वेद का नो हाउ है, हम ये ज्ञान हमारे को अवेलेबल है।
0: बिल्कुल,
1: तो हम इसका इंतजार ना करें कि कल को विदेश में कोई रिसर्च हो फिर वो इधर आए और जब यहाँ पर आए फिर हम उसको किसी और नाम से बड़े खुश हों, तीन गुना चार गुना प्राइस देकर एक्सेस करने के लिए।
0: और ये बहुत कॉमन सी चीज है, जब

0: हम योग की बात करते हैं तब तक लोगों को समझ नहीं आया, जैसे ही हमने उसको योगा बनाया
1: बिल्कुल
0: वो अपने आप में बढ़िया आउटफिट्स के साथ और मैट्स के साथ और एक एयर कंडीशन्ड हॉल में कराने के लिए 2500 से 3000 रुपए फीस देने वाले लोगों की लाइन हमने देखी है, और स्पेशली हमने कोविड में बहुत देखा। और कोविड की बात मैं इसलिए मधुसूदन जी करना चाहूँगी क्योंकि कोविड ने आयुर्वेद का जो परसेप्शन था वो बदल दिया। लोगों को लगता था सिर्फ और सिर्फ बेसिक दवाइयाँ ही ज़रूरी हैं, आयुर्वेदा की बात ज़रा कम की जाती थी और उसको मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन 2020 के बाद पूरी दुनिया ने ये चीज़ मानी कि आप काढ़ा बना के पीजिए। आयुष ने अपने पैकेट्स लोगों के घर घर तक पहुंचाए मंत्रालय ने कि आप ये काढ़ा पीजिए ठीक हो जाएंगे, या बेसिक इतनी ज़्यादा चर्चाएं होने लगीं, एक्सपर्ट एडवाइस आने लगीं, प्रधानमंत्री तक कहने लगे कि आप ये चीज़ों का काढ़ा बनाएंगे तो आप ठीक रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। वो गिलोय जिसका नाम नहीं पता था लोगों को वो पैकेट्स में डिलीवर होने लग गई। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोविड ने आयुर्वेदा को वाकई एक अलग पिक्चर दी है और वर्ल्ड वाइड एक अलग प्रसिद्धि दी है?
1: 100%। आई थिंक कोविड के दौरान क्योंकि समय ऐसा था और ऑब्वियसली इस लेवल का क्राइसिस शायद हमारी जनरेशन ने हेल्थ में पहली बार देखा, महसूस किया और ऑब्जर्व किया। कोविड ने हमें ये सिखा दिया 2-3 चीज़ें। पहला, स्वास्थ्य को तोड़ने से पहले संजोकर रखना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा लॉजिकल है, सही है, है ना? तो पहला तो कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ कैसे बढ़ें, ये कोविड के बाद लोगों में जागरूकता आई, जो आपने भी बोला, आप देख रहे हैं कि लोग फिटनेस की तरफ और स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, लोगों को ये समझ में आया कि हेल्थ के लिए सिर्फ ये मैंने गोली खा लिया और हो गया खत्म काम, है ना, जो बोलते हैं कि बाम मलिए काम पे चलिए, वो वाला जो एक स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग था हमारा हेल्थ को ठीक करने के लिए, ये शायद कारगर हर समय पर ना रहे। हमारे को अपना खान पान, जीवन शैली सब में कुछ ना कुछ बदलाव लाने पड़े। तो हेल्थ इज नॉट जस्ट पॉपिंग अ पिल, इट इज ऑल्सो मेकिंग चेंजेस इन माई डाइट, इन माई लाइफ स्टाइल, दूसरी चीज। तीसरी चीज, बिल्कुल मतलब बिना किसी संदेह के आयुर्वेद और योग का अडॉप्शन जो हुआ, खासकर यूथ ने बहुत अडॉप्ट किया, वो आज ये देखते हैं कि क्या आयुर्वेद में कोई ऑप्शन है, हम आयुर्वेद की क्या अच्छी चीज अपनाएं जिससे हम अपना जीवन सुधार पाएं। ये इसके साथ साथ मैं एक और चीज जो कहना चाहूंगा बड़े ही सीरियस नोट पे, वो ये कि आयुर्वेद में एक चीज और हुई, हमें ये लगा कि ये तो आयुर्वेद है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, तो ले ओ, है ना। साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हम अगर समझें इसको, तो साइड इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप कोई चीज इंटेंडेड डोज में लो तो भी उसका ये दुष्प्रभाव रहेगा, ये साइड इफेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध किसी चीज को लेते चले जाएं और उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होएगा। आप पानी भी पिए, आप लिमिट से ज्यादा पानी पिए, वो भी आपकी किडनी खराब कर देगा।
0: बिल्कुल,
1: तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि पानी का क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है आप इसको आंख बंद करके जैसे भी पिए जो भी पिए। हम अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेद के साथ कोविड के बाद ये हुआ, बहुत लोगों ने आयुष काढ़े को मतलब ऐसे पिया जैसे वो मतलब पानी भी नहीं पी रहे इतना,
0: बिल्कुल
1: दिन में 3-3 लीटर आयुष काढ़ा पी रहे हैं। अगर उससे नुकसान हुआ तो ये गलत एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदा है, इसमें आयुर्वेदा का दुष्प्रभाव नहीं है। एक व्यक्ति थे केरला में, उनका एक बहुत ही नेशनल न्यूज़पेपर में खबर भी छपी, अनफॉर्चुनेटली खबर ये छपी कि आयुर्वेदिक दवाई कंज्यूम कर व्यक्ति का लिवर खराब हुआ। वो जब उसका पूरा मंत्रालय ने चिट्ठी लिखा उस अखबार को और उस उनका प्रकाशन
0: हेडलाइन इस तरीके से बना दी,
1: उसका जब स्टोरी निकल कर आया तो वो ये निकल कर आया कि एक जो कॉफ सिरप होता है आयुर्वेद का, आप जानते हैं कि आयुर्वेद में एक आशा वरिष्ठ करके कल्पना होती है जिसमें 4-6% एल्कोहल की मात्रा होती है
0: जी।
1: वो दिन की उसका जो डोजेज है वो है 20 ml पानी में डाइल्यूट करके दिन में 2 बारी, यानी कि 40 ml दिन का। वो ले रहे थे 3 बोतल दिन की,
0: 3 बोतल
1: 600 ml दिन की। तो अब आप बताइए कि अगर ऐसा करने से किसी का कोई दुष्प्रभाव होगा तो ये आयुर्वेद का समस्या नहीं है। लेकिन आप इस बात को खास करके जो सामान्य लोग हैं वो ये जरूर समझें कि एक है नॉर्मल जीवन, है ना, जिसमें आपको बीमारी नहीं है, आप अपनी सेहत को बचाने के लिए कुछ हल्दी, अजवाइन, लौंग, जीरा,
0: या जो आपके देसी मसाले हैं,
1: देसी मसाले हैं, देसी नुस्खे हैं, घर के नुस्खे हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है कि आपको कुछ छुटर पुटर खांसी जुकाम नजला ये सब हो गया, आप उसके लिए कुछ घर में कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सीरियस बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो कभी भी बिना एक अच्छे वैद्य से बात करके कंसल्ट करे आप नहीं करें वो, क्योंकि उस साइड पर जो आयुर्वेद का चिकित्सा साइड है वहां पर आप अगर सेल्फ मेडिकेट करने लग जाएंगे तो शायद हो सकता है आपको कुछ दुष्प्रभाव हो, क्योंकि आप सही जगह सही चीज नहीं ले रहे होंगे, आप सही मात्रा में नहीं ले रहे होंगे। तो आप जरूर एक वैद्य के कंसल्टेशन के और परामर्श के बिना अपने बीमारी के इलाज के लिए आप कोई चीज ना लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम एलोपैथी में करते हैं कि डॉक्टरी सलाह के बिना दवाई ना लें, वैसे आयुर्वेदा में भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक साइंस है
1: जी।
0: और इसका भी दुष्प्रभाव हो सकता है अगर लिमिट में कोई चीज कंज्यूम ना की जाए।
2: तो दोस्तों, बातें आगे भी चलती रहेंगी, आपके मन में कोई प्रश्न हो आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078।

0: आप सुन रहे हैं अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ जो जुड़ी हुई है आयुर्वेदा की फील्ड से। आयुर्वेदा एक ऐसी हेल्थ साइंसेस जो बेसिकली आपकी मदद करती है नेचुरल तरीके से। हमारे आसपास, हमारे देश में, हमारे पर्यावरण में ना जाने कितनी जड़ी बूटियां हैं, ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बहुत गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाए लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। कोरोना में हमने ये सब कुछ देख लिया है कि किस तरीके से काढ़े से लेकर अलग अलग जड़ी बूटियों द्वारा किस तरीके से पेशेंट्स को ठीक किया गया है, और आयुष मंत्रालय इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन आपके आसपास बहुत सारे ऐसे भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको सलाह तो देते हैं रील्स के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से, पर वो सलाह कितनी जेन्युइन है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक्सपर्ट हैं जो कि ऐसी एक संस्था से जुड़े हुए हैं, ऐसे एक नाम से जुड़े हुए हैं जो कि आयुर्वेदा के क्षेत्र में वर्ल्ड लेवल पर कार्य कर रहा है, वो भी अनगिनत एक्सपर्ट्स के साथ। जीवा आयुर्वेदा के सीईओ मधुसूदन चौहान जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। इसमें मैं आपसे अब जानना चाहूंगी, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, क्या एआई जो है मेडिकल साइंस में काफी ज्यादा आ गया है और एलोपैथिक मेडिसिन और डायबिटीज, बीपी, हार्ट, इन सब में कहीं ना कहीं एआई का सपोर्ट मिलने लग गया है और बहुत सारे देश उसमें रिसर्च करें, क्या आपको लगता है आयुर्वेदा में भी एआई से कुछ नया कमाल किया जा सकता है?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट हम तो एआई के कुछ प्रोजेक्ट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कर रहे हैं जिनमें एआई को यूज़ कर मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कैसे आयुर्वेद की चिकित्सा को और बेहतर किया जा सकता है, कैसे मरीज तक जो परामर्श और दवाई पहुंच रही है उसको और सटीक और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी है या एआई है, ये सब संसाधन है, है ना। मैंने सूट बूट पहना हो या मैंने धोती कुर्ता पहना हो, अगर एरोप्लेन है तो एरोप्लेन में तो दोनों व्यक्ति सफर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जस्ट बिकॉज आयुर्वेद है इसका मतलब ये नहीं कि वो एआई का प्रयोग नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल।
1: मैं तो ये कहता हूँ कि खासकर क्योंकि आयुर्वेदा इज अ डीप साइंस, है ना, ये एक काफी कॉम्प्लेक्स साइंस भी है इसका जो अंदर का सब वर्किंग है। अगर एआई का इस्तेमाल इसमें होएगा तो शायद हम और बेहतर समझ पाएं या समझा पाएं कि ये सब चीजें काम कैसे करती हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो बिल्कुल होना चाहिए। सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट सेटअप करे हैं जिसमें अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई कैसे आयुर्वेद को और सरल और साइंटिफिक और जन जन तक पहुंचाने के लिए कारगर बना सकती है।
0: जी, एक टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो आपने इंडिया का पहला डॉक्टर ऑन कॉल सर्विस शुरू किया
1: जी,
0: और जनरली ये हमने बड़े हॉस्पिटल्स में देखा है, मेडिकल साइंस में देखा ही है कि डॉक्टर ऑन कॉल की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन ये आयुर्वेदा की फील्ड में कैसे इसकी शुरुआत हुई? और ये एक प्रोग्राम भी मैंने देखा जीवा का, एक टेलीविजन पे भी आता था, उसमें डॉक्टर प्रताप चौहान होते थे और लोग कॉल करते थे। सो वाकई ये बहुत ज़्यादा कारगर आज भी साबित हो रहा है?
1: बिल्कुल हो रहा है। इसका शुरुआत ऐसे हुआ था कि डॉक्टर चौहान ने विश्व का पहला आयुर्वेदिक क्लिनिक 1995 में शुरू किया। उस समय में जब पूरे भारत का बैंडविड्थ 512 kbps था, यानी कि आधा mbps। आज आपका जो मोबाइल है इसमें 4G 5G चलता है, आप जब नेटफ्लिक्स देखते हैं तो उसी में ही 15 से 25 30 40 mb पर सेकंड पे डाउनलोड होता है
0: जी,
1: ना। उस समय पूरे भारत का बैंडविड्थ आधा mbps था। तो डॉक्टर चौहान ने जब ये शुरू किया तो विदेश से बहुत लोगों ने उनको अप्रोच किया अपने स्वास्थ्य के लिए, तो वो उनका इलाज कर रहे थे। उनको ये लगा यार, ये बाहर के लोग तो आयुर्वेद का बेनिफिट उठा पा रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: भारत देश के लोगों का क्या? तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया टेलीडॉक। ऐसे गांव जहां पर कोई स्वास्थ्य सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी, ना कोई आयुर्वेदिक या एलोपैथिक डॉक्टर नहीं था, कोई पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं था, कोई केमिस्ट नहीं था, तो ऐसे गाँव में जाकर वहां पर एक बंदे को लेकर आयुर्वेद में ट्रेन करा, आयुर्वेद का पहला ऐप बनाया, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पर गांव में उस व्यक्ति को जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ सुविधा उपलब्ध नहीं है उसको हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और एडवाइस उसके घर पे अवेलेबल करवाई। इस प्रोजेक्ट के लिए जीवा को 2004 में वर्ल्ड समिट अवार्ड जनीवा स्विट्जरलैंड में मिला, यूनाइटेड नेशंस में। इसने वही डॉक्टर जो लंदन या यूएस या फ्रांस के पेशेंट को देख के परामर्श दे रहा है, वही डॉक्टर इस पेशेंट को भी परामर्श दे रहा है
2: जी।
1: तो जब ऐसा हुआ तो ये समझ में आया कि आयुर्वेद को तो लोगों को चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि अच्छे आयुर्वेद के लिए कहाँ जाएं।
2: हाँ।
1: तो तब ये एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे वो अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आयुर्वेद को चुन सकते हैं। और ये डॉक्टर ऑन कॉल सर्विस शुरू किया कि लोग फोन करके डॉक्टर से बात करके ये जान पाए कि आयुर्वेद उनके लिए क्या कर सकता है। ये विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट बना
2: जी।
1: जिस समय में, जिस दौर में ये हो रहा था, आप समझिए उस समय पर स्मार्टफोन्स नहीं थे, एप्पल का आईफोन नहीं आया था, अमेज़न भारत में नहीं था, कोई होम डिलीवरीज नहीं थी, कोई कैश ऑन डिलीवरीज नहीं थी, ई फार्मेसीज नहीं थी, जो आपका आजकल ऑनलाइन आप दवाइयां खरीद लेते हैं या डॉक्टर का परामर्श ले लेते हैं, ये सब कुछ भी नहीं था।
2: इन मिनट्स वाली सुविधा तो किसी ने सोची नहीं थी,
1: और उस समय में ये चीज आयुर्वेद में करना तो ये एक बहुत दूरदर्शी प्रोजेक्ट था। और आई थिंक इसके दम पर बहुत अलग अलग ऐसे प्रदेशों में, ऐसे एरियाज में हम लोग आयुर्वेद का सेवा प्रदान कर पाए उन लोगों को जिनको शायद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जुटा पाना ही एक बड़ी चीज होती।
2: बिल्कुल बिल्कुल। आयुष मंत्रालय ने बहुत सपोर्ट किया है और पिछले कुछ सालों में, लगभग 8-10 सालों में आयुष मंत्रालय जब से आया है लाइमलाइट में, जब से सामने आया है, आयुर्वेदा को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी अस्पताल में भी एक आयुष का अलग से क्लिनिक बना होता है। सो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग अभी भी हेजिटेंट होते हैं, ख़ासतौर पर से जब बात आती है बड़ी बड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, तो लोगों को कन्विंस करने के लिए कुछ 5 टिप्स आप देना चाहेंगे कि आयुर्वेदा की तरफ बढ़ें। आप भले ही अपना इलाज जो है वो एलोपैथी से कराएं, पर आयुर्वेदा की तरफ अपने लाइफस्टाइल के कुछ चेंजेस, कुछ आदतें जो हैं वो अपना सकें, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। कौन सी आदतें हैं? सुबह जल्दी उठना एक सबसे बड़ी आदत है, वो मैं जानती हूँ, इसके अलावा?
1: बिल्कुल नहीं, आपने जल्दी उठने वाली बात बिल्कुल ठीक बोली। इसमें हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं। आप समय से सोइए
2: जी,
1: है ना? आप समय से सोएंगे तो शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, और ये आयुर्वेद तो शुरू से बोलता आ रहा है। हमारे आयुर्वेद की एक बड़ी खासियत ये थी कि एक कहावत है जो मेरे को किसी ने बोली थी और मेरे को बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि ग्रेट साइंस इज साइंस दैट सीजेस टू बी साइंस।
2: ओके,
1: या ग्रेट, आप इसको टेक्नोलॉजी पे भी डाल सकते हैं कि ग्रेट टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी दैट सीजेस टू बी टेक्नोलॉजी। जब ये फोन आया था, मेरा पहला फोन वो नंबर वाला कीपैड वाला फोन था, फिर ये स्मार्टफोन आया तो मैं अब स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत गजब की टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो आप बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनके लाइफ का एक पार्ट है। उनके लिए तो ये हाथ का एक एक्सटेंशन है। देर इतना गजब का टेक्नोलॉजी है ये, दैट दिस हैज सीज्ड टू बी टेक्नोलॉजी। आयुर्वेद ऐसा था, हमारे जो आयुर्वेद है, योग था, इसको इतना ग्रेट साइंस के तौर पे इवॉल्व हुआ कि घर घर में एक सबसे दूर दराज इलाके में जो सबसे अनपढ़ महिला होगी, आप अगर उस घर का जीवन शैली और उस वो महिला क्या करती हैं आप वो देखेंगे, तो आप ये समझेंगे कि वो सारे प्रिंसिपल्स वो फॉलो कर रहे हैं जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और जीवन के लिए चाहिए। दिस वाज द ग्रेटनेस ऑफ द साइंस दैट इट हैड परकोलेटेड डाउन टू द कंप्लीट ग्रास रूट लेवल। तो हम सूरज के साथ उठते थे, सूरज के साथ सोते थे, ये मॉडर्न साइंस भी बोलता है। अभी
2: बिल्कुल
1: नोबेल प्राइज विनिंग काम हुआ है जो सर्केडियन रिदम पर हुआ है, वो ये प्रूव करता है कि अगर आप 11 से 2 के बीच में उठे हुए हैं तो बॉडी कैन नॉट डू डीप टिश्यू रिपेयर। डीप स्टेट में अगर आपकी बॉडी जाती है, डीप स्लीप में, वहां पर डीप टिश्यू रिपेयर होता है। अगर आप उस समय पर उठे हुए हैं, आपकी बॉडी डीप रिपेयर में नहीं जा पाएगी। इसके बाद एक REM साइकिल होता है जिसमें आपका मेंटल क्लेंजिंग होता है। अगर आप उठे हुए हैं उस दौरान, आपको डीप स्लीप नहीं आया है, तो आपकी बॉडी मेंटली क्लेंज नहीं कर पाएगी। ये मॉडर्न साइंस का रिसर्च है।
2: बिल्कुल,
1: आयुर्वेद में इसको सिंपल भाषा में ये बोला कि यार सूरज के बाद अपना वाइंड अप करना चालू कर दो। और गांव में तो लोग 8:30-9 बजे तक सो जाते थे। तो पहला चीज कि आप अपना सोने का समय ठीक कीजिए। सोने का समय ठीक होगा, आप अपने आप जल्दी उठेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना हो सके, आजकल हमारा जीवन शैली ऐसा है कि संभव नहीं हो पाता,
2: बिल्कुल,
1: बट जितना हो सके आप प्रोसेस्ड खाना अवॉइड कीजिए,
2: है ना, पैकेट में बंद,
1: घर का बना हुआ, जो भी जो खाना 10 मिनट में डिलीवर हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो कैसे बन रहा है, उसमें क्या न्यूट्रिशन है, वो आप तक डिलीवर कैसे हो रहा है 10 मिनट में अगर हो रहा है तो आप जितना हो सके प्रोसेस्ड खाना अवॉइड कीजिए, घर पे बना हुआ, ताजा बना हुआ, ये सब आप लीजिए। तीसरी बात, आप जितना हो सके जो सीजनल खाना मिल रहा है ना, हम खासकर जब हम अच्छा कमाने लगते हैं तो फिर हम बोलते हैं हाँ हम वो वाला एवोकाडो खाएंगे जो न्यूजीलैंड एवोकाडो है ये, है ना, या ये मेरा जो अमरूद है ये तो उस फलाना देश से आ रहा है, संतरा हमारा साउथ अफ्रीका से आ रहा है, बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो ठीक है, बट आपका जो पूरा सिस्टम बनाए ये जहाँ पर आप पैदा हुए हो, जहाँ पर आप पले बड़े हुए हो, और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, आपका जो गट माइक्रोबायोम है ये डेवलप हुआ है बेसिस द फूड दैट यू ग्रोन अप ईटिंग,
2: बिल्कुल,
1: तो वो सबसे ज्यादा उसको अलाइन करेगा। तो तीसरा, जो आपका लोकल सीजनल अवेलेबल जो आपका ओरिजिनल खाना है आप उसकी तरफ रुझान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चौथी चीज ये कि कुछ समय चाहे एक घंटा चाहे आधा घंटा आप अपने साथ व्यतीत कीजिए। आज हमने
2: बिना फोन के
1: ऑब्वियसली आप चाहे उसमें ब्रीदिंग करें या आप चाहे उसमें कोई अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, परिवार के साथ स्पेंड करें, चाहे दोस्तों के साथ स्पेंड करें, बट ये सब मोबाइल ऑफ कर प्रेफरेबली अकेले करें। अगर अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किसी दोस्त के साथ करें। इससे आपका जो इंटरनल मेंटल बैलेंस है, थॉट प्रोसेस है, स्वाध्याय है, खुद के बारे में, दिन के बारे में सोचें, ये एक बड़े लेवल पे कारगर होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: पांचवा, जो शायद आज हमारा जो यूथ है शायद ये मिस कर जा रहा है कि प्रायोरिटाइज रियल कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स ओवर डिजिटल कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। एक रिसर्च हुआ है जिसमें लॉन्जेविटी यानी कि लंबा जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या पांच चीजें हैं, उनमें से एक चीज जो है वो है कम्युनिटी कनेक्ट। जिन लोगों का कम्युनिटी कनेक्ट होता है, आप इतना बढ़िया रेडियो चला रहे हैं जो एक कम्युनिटी रेडियो है, इससे आप समाज से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की समस्या से जुड़ते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तो आप जितना कम्युनिटी कनेक्ट और एक सौहृदय अपने समाज में बनाकर रखेंगे, दिस इज अ साइन ऑफ लॉन्जेविटी। इसलिए आपने गांवों में देखा होगा गांव पूरा एक परिवार की तरह रहता था। तो जितने भी एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोग लंबा जीते हैं, दे हैव ग्रेट कम्युनिटी रिलेशंस।
2: बिल्कुल।
1: तो पांचवी चीज ये है कि प्रायोरिटाइज रियल रिलेशनशिप्स, रियल कनेक्शंस ओवर डिजिटल।
2: बिल्कुल बिल्कुल, यानी सोशल मीडिया पे रहे ना रहे लेकिन अपने आस पड़ोस में ज्यादा घुलते मिलते रहे तो आपकी जिंदगी ज्यादा खुशहाल भी होगी। और मुझे लगता है सोशल मीडिया पे दिखावा ज़्यादा होता है, रियलिटी कम होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली किसी सोसाइटी में, कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर आप खुशियों की बातें करते हैं, अपना गम भी शेयर करते हैं, तो सॉल्यूशंस मिलते हैं जो कि आपको सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स नहीं मिलते हैं। सो मधुसूदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें आपने आज आयुर्वेदा के बारे में करी। वो बातें जो बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर से एक भारतवासी होते हुए जानना, क्योंकि हम बात तो करते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी साइंसेस की लेकिन अपनी साइंस को भूल जाते हैं, और धनतेरस पे धन खरीदे ना खरीदे लेकिन धनवंतरी की पूजा करके अपनी हेल्थ को ठीक रखने का प्रयास ज़रूर करें और एक अपने आप से वादा ज़रूर करें कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे।
1: बहुत में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एज अ भारतवासी, देखिए भारत आज इस कगार पे खड़ा है कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, है ना?
2: बिल्कुल।
1: हम वी आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन इकोनॉमिक सुपर पावर इन द वर्ल्ड, है ना? ऑलरेडी टॉप 5 इकोनॉमीज में से भारत है और अगले 15-20 सालों में हम विश्व की टॉप 2 टॉप 3 इकोनॉमीज से होंगे
2: जी।
1: तो इंडिया इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर। हमारा जो ये विश्व गुरु भारत एक समय पर था, सोने की चिड़िया बोलते थे हम इसको, 33% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वॉज कंट्रोल्ड बाई इंडिया, 33%, आप समझिए मतलब एक तिहाई भारत विश्व गुरु था। तो भारत इकोनॉमिक सुपर पावर तो बन रहा है, बट क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे? आज अमेरिका सुपर पावर है, क्या हम अमेरिका को विश्व गुरु बोलते हैं? उससे पहले यूके था, क्या हम यूके को विश्व गुरु बोलते हैं? चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर यूएस का बन रहा है, क्या हम चाइना को विश्व गुरु बोलते हैं? नहीं। तो क्या इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन के रह जाएगा या विश्व गुरु बनेगा? इस सुपर पावर और विश्व गुरु के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है कि क्या हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अपने भारतीय ज्ञान परंपराओं को जो विश्व में हमारे को संपन्न भी बनाएंगी और हेल्दी पीसफुल और सक्सेसफुल भी बनाएंगी। तो आयुर्वेद अपनाएं, योग अपनाएं, ध्यान अपनाएं, भारतीय की ये जो भारत की ज्ञान प्रणालियां हैं इनको अपनाएं कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट के साथ साथ हम ह्यूमन एडवांसमेंट भी कर पाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अपनी देसी जो चीजें हैं उनको अपनाना शुरू करेंगे तो आप ज्यादा फिट रहेंगे। इंस्टेड के आप टर्मरिक लाते पिए, आप हल्दी वाला दूध फॉलो करेंगे तो ज्यादा हेल्दी रहेंगे और ज्यादा खुश रहेंगे। जो बेसिक चीजें हमारी रसोई में, हमारे घर में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा यही सिखाया है, जिसके सूर्य नमस्कार सिखाया है, सूर्य प्रणाम सिखाया है और सुबह जल्दी उठना सिखाया है, अगर आज के समय में आप वो चीज़ें थोड़ा सा भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर, दादी नानी के साथ बैठकर उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। और इतना तो मुझे पता है कि आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि इस खराब पोल्यूशन वाली हवा में भी आपको फिट रखने की कुछ गुण तो सिखा ही सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया मधुसूदन जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत आपके साथ हुई है, धन्यवाद।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद।
2: तो बहुत सी बातें हमने कर ली हैं और बहुत सी बातें हम आपसे करना चाहते हैं, लेकिन अभी वक्त थोड़ा सा कम है, फिर कभी करेंगे मुलाकात कुछ नई और खास इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड करें, रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और इस इंटरनेट रेडियो के माध्यम से आप पॉडकास्ट सेक्शन में जाएं, आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि वो भी फिट रह पाएं। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं आपको ऐसी संस्थाओं से मिलवाती हूँ, ऐसे इंडिविजुअल से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। आज के जमाने में जहाँ हम ये कहते हैं कि लोगों की मानवता खत्म हो गई है, वहाँ आज भी ऐसे इंडिविजुअल्स और संस्थाएं हैं जो मानवता का काम करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है एडवोकेट गायत्री प्रजापति। एडवोकेट गायत्री प्रजापति जी नेशनल लीगल एडवाइजर हैं वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन की। करते हैं इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। गायत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच भावना जी।
1: गायत्री जी पहला सवाल मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सभी लिसनर्स को बताएं, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन इसका गठन कब हुआ, किस तरीके से काम करती है और इसके पीछे की कहानी क्या है?
2: ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन की स्थापना 2010 में हमारे फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह जी ने की थी। उसका विजन बहुत ही सिंपल और पावरफुल था, इंसानियत को एक मोमेंट में बनाना। श्री वीरेंद्र सिंह जी का मानना यह है कि देश तभी बदलेगा जब हम आम नागरिक हम प्रगति की अपनी जो जिम्मेदारी है वो खुद से समझे और खुद सेवा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। और उन्होंने हमेशा ग्राउंड लेवल पर काम किया है। उनकी कुछ काम का जो उनका मैं बताऊं आपको तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए। सरबजीत सिंह की रिहाई जो थी, आपने शायद वो मूवी जो बनी हुई है उसमें अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया था जहां उन्होंने पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर तक भी अपनी बात को पहुंचाया था। और उसके बाद उन्होंने एक जब हमारी आम आदमी की जो सरकार रही थी उस टाइम पे भी जो CNG के दाम जो बढ़ गए थे जिसमें बहुत सारे ऑटो चालकों को साथ में रख के उन्होंने बहुत बड़ी सेवा करी थी उनकी। और उस टाइम पे उन्होंने 7 रुपए तक की CNG कम कराई थी जो जिससे बहुत अच्छी राहत मिली थी उनको। और ऑटो यूनियन के लीडर जितने भी थे या ऑटो यूनियन के जितने भी भाई थे उनके लिए बहुत ही ज्यादा उन्होंने अच्छा और लगातार मतलब काम किया और उनका समर्थन भी उनको बहुत अच्छा मिला था। उसके अलावा उन्होंने ट्री प्लांटेशन और जिनके द्वारा मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिले उसके लिए भी बहुत सारे काम किए हुए हैं। और सोशल मीडिया पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम पर भी उन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। मेरे लिए श्री वीरेंद्र सिंह जी सिर्फ एक फाउंडर नहीं है बल्कि एक ऐसे लीडर हैं जो खुद को उदाहरण देकर लीडरशिप करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और हमेशा लोगों को साथ लेकर चलना उनकी सबसे बड़ी एक खूबी है। जो उनके नेतृत्व में जितने भी लोग काम करते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ते हैं और अच्छी सलाह देते हैं जिसमें हमेशा प्रोग्रेस होती है और अच्छा विजन होता है उनका खुद का
1: जी।
2: तो मैं तो यही चाहती हूँ कि उनकी मतलब जो उनके साथ रह के जो मैंने काम किया हुआ है मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे
1: जी। तो भाई गायत्री जी अगर देखा जाए तो वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर पर काफी सारे काम कर रही हैं और साथ में इनकी जो फाउंडेशन है ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन, इसके बारे में करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजी भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं एडवोकेट गायत्री प्रजापति के साथ, जो कि नेतृत्व करती हैं विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का, नेशनल लीगल एडवाइजर भी हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की। गायत्री जी, महिलाओं की बहुत सारी परेशानियां होती है, और आपके ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन की मैं बात करूँ तो ये महिलाओं और बच्चों का किस प्रकार से वेलफेयर करती है?
1: देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ, और ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन में मैं एक लीगल एडवाइजर हूँ, जिसमें मैं वुमन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती हूँ। और ये मतलब जो है, जिसमें लॉ जो होता है, अकॉर्डिंग टू मी लॉ सिर्फ कोर्ट के साथ सीमित नहीं है। लॉ एक असली उद्देश्य है, जो लोगों को उनके अधिकारों के साथ जागरूक बनाना और उनके अधिकारों के लिए अवेयर करना, ये एक एडवोकेट की अहम भूमिका होती है, अगर वो सही तरीके से अगर अधिवक्ता पद पे काम कर रहे हैं तो। मेरी जिम्मेदारी ये है कि वुमन और चाइल्ड में मैं ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ कि मैं अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊं, और मैं उन चीजों के लिए उनको अवेयर करूँ जो आजकल जिस तरीके से सोसाइटी में, समाज में जिस तरीके से लोग पैनिक हो रहे हैं हर तरीके से, जो आपको पता ही है कि जितने भी करंट अफेयर्स में भी कितने सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चों को लेके, वुमन्स को लेके बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ, और मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू मैं बहुत अच्छा काम करूंगी आगे जाके भी। और हम उस पे वुमन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस, वुमन सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन और लीगल राइट्स में, जिसमें जितने भी मतलब अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं और हम आगे उस पे काम भी करते हैं। और कई बार महिलाओं को पता नहीं होता है कि कानून उनके साथ खड़ा है, मतलब वो कई बार अवेयर नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों को, तो बहुत सारी जगह पे वो चाहते हुए भी अपने आप को वो स्टैंड नहीं कर पाती है, या अपने लिए वो स्टैंड नहीं ले पाती है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करूँ उनको, और उनके लिए मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ जिसके लिए मैं समाज में अपना अच्छे से अच्छा योगदान दे पाऊँ। और बाकी आगे जितना भी हमसे हो पाएगा थ्रू ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के थ्रू, या जैसे भी जो भी मेरा रहेगा सहयोग, तो उसमें आप समझ सकते हो कि एक अधिवक्ता के तौर पे मैं कोई भी सेवा देने के लिए, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है।
0: जी, तो भाई विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की अगर बात की जाए तो अवेयरनेस से लेकर ना सिर्फ लोगों की सलाह और साथ के साथ उनका सपोर्ट, ये एक बहुत ही अहम काम है जो कि ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन कर रहा है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो दोस्तों, आप सभी को पता है महिलाओं के खिलाफ कितने सारे क्राइम्स होते हैं। अब ना सिर्फ सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन घर की चार दीवारी में होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस की मैं अगर बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं को पता ही नहीं है कि घर में ही उनके साथ अगर ताड़ना हो रही है तो वो उसके बारे में क्या करें, चुप रहे, सह लें या बाहर जाकर आवाज उठाएं। तो ये सारे काम ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन करती है, ना सिर्फ उन्हें अवेयर करती है लेकिन उनके साथ के साथ क्षमता बनती है और उनको कोशिश करती है कि ये सारे की सारी चीजें पहुंचाई जाएं। फिलहाल जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस आती हूँ आप ही के पास। फील गुड, फील लव।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम बात कर रहे हैं एडवोकेट गायत्री प्रजापति के साथ। एडवोकेट गायत्री जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम AIYF की बात करें, यानी ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन, सो मान रहे हैं कि यूथ का फाउंडेशन है, सो ये जो यूथ के फाउंडेशन है, इसके अलग अलग विंग्स कौन से हैं?
1: हमारे मुख्य विंग्स जो है भावना जी, वो है वुमन एंड चाइल्ड वेलफेयर विंग्स, यूथ एम्पावरमेंट विंग्स, लीगल असिस्टेंट विंग्स, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट विंग्स है, हेल्थ एंड मेडिकल अवेयरनेस विंग्स है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट विंग्स है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस विंग्स है, सोशल वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट विंग्स भी है। ये सभी विंग्स मिलकर लीगल अवेयरनेस कैंप, हेल्थ कैंप, एजुकेशन सपोर्ट, सपोर्ट एक्टिविटीज, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स और कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम चलाते हैं। हमारी सोच ये है कि समस्याओं की सिर्फ चर्चा नहीं पर उसका समाधान भी दिया जाए, तो आगे भी हम इस पे बहुत अच्छे काम करने वाले हैं थ्रू ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन।
0: सो भाई, समस्याओं के बारे में सिर्फ बात नहीं, उनके सॉल्यूशन होने चाहिए, ये तो हमेशा से हर कोई यही कहता है, लेकिन ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन का ये कहना है कि भाई हम इन समस्याओं पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में करते भी रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ गायत्री जी, तो आप AIYF से कितने लंबे समय से जुड़ी हैं?
1: जी, वैसे मैं सिंस लास्ट 1 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। श्री वीरेंद्र सिंह जो है हमारे ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट, वो भाई साहब से मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और उनके नेतृत्व में मैं काम कर रही हूँ। और मुझे जो पर्टिकुलर जो उन्होंने पोस्ट दी है वो बिफोर 6 मंथ दिया हुआ है, बट मैं जुड़ी हुई 1 साल से हूँ उनके साथ। और मैंने बहुत अच्छा मतलब अपने आप को स्टैंड किया है इस यूथ फाउंडेशन में और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और आगे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए उनके साथ, और उनके साथ हमेशा वो सपोर्टिव भी रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो गाइड करते हैं कि हम देश में, समाज में, सोसाइटी में किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं।
0: वाकई। सो भाई देखिए, अगर मैं ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन की बात करूं तो ये उतनी ही यंग है, और साथ के साथ ये जो फाउंडेशन है ये अलग अलग किस्म के काम कर रही है, ना सिर्फ इसके अलग अलग विंग है, लेकिन ये कोशिश कर रही है कि हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, जिनसे अक्सर लोग परेशान रहते हैं, उन बुराइयों पर काम किया जाए। फिलहाल जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडवोकेट गायत्री प्रजापति के साथ, जो कि नेशनल लीगल एडवाइजर है ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन की। गायत्री जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं हमारे रेडियो के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए, सो मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई इससे आपसे मदद मांगना चाहता है या बेनिफिशियरी बनना चाहता है, कोई महिला है जिसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ किसी प्रकार की प्रताड़ना हो रही है या घरेलू हिंसा का वो शिकार हो रही है या यंगस्टर्स हैं, सो किस तरीके से कोई आपसे जुड़ सकता है, किस तरीके से इस फाउंडेशन के बारे में जान सकता है, और साथ के साथ कोई अगर वॉलंटियर करना चाहता है सो किस प्रकार से वो इस फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं?
1: थैंक यू भावना जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही आसान है जो आप बता रहे हो मुझे। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे, क्लिक कर देंगे कि कौन सी वेबसाइट पे जाना है। सिर्फ कुछ स्टेप है जिससे आप मतलब AIYF का हिस्सा बन सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन का। चाहे आप स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो या होम मेकर हो, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ भी करना चाहते हो तो आप ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन में अपना योगदान दे सकते हो और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस फाउंडेशन में। आप किसी भी तरीके से आप जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए हम आपको वेबसाइट और हमारे जो ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन की एक जो नंबर है जो जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नंबर अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो अभी, तो मैं आपको भेज दूंगी, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, आप अपने सोशल मीडिया पे दे सकते हो।
2: 9971885138। यस, तो ये हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में यशवंत जी है जो ये कॉल को रिसीव कर
1: और वो आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप AIYF को ज्वाइन कर सकते हो।
0: तो दोस्तों, ये वो नंबर है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है और अगर चाहिए कि कोई कानूनी सलाह मिल जाए या फिर कोई मदद मिल जाए तो 9971885138 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के साथ जुड़कर न सिर्फ काम कर सकते हैं लेकिन इनके द्वारा किए गए सेवा का लाभ भी उठा सकते हैं। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं आज ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के साथ, जिसके नेशनल लीगल एडवाइजर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एडवोकेट गायत्री प्रजापति हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन काम कर रहा है। देखिए भाई, मानवता की राह पर चलते हुए जब हम चलते हैं तो बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं और बहुत सारे अच्छे काम भी हम करते हैं। सो आज हम इस फाउंडेशन के साथ चले, बहुत अच्छा लगा गायत्री जी आपसे बात कर पता लगा कि ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन किस प्रकार से काम करती है। जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी सभी को?
1: जी थैंक यू भावना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस चैनल के थ्रू हमारे फाउंडेशन के बारे में कहने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 107.8 का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे फाउंडर और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छा गाइड किया, सिखाया। उन्होंने ये बताया कि असली लीडरशिप का मतलब क्या होना चाहिए। सिर्फ आपको कोई पहचान मिलती है या आपको कोई पोजीशन मिलती है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि सेवा और समर्पण का भाव होना चाहिए। जिसमें मैं सभी लिसनर को यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप देश के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई पोजीशन और उस चीज की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी अपने आप को सेवा, मतलब देश के लिए सेवा करनी है, समाज, सोसाइटी, घर के लिए भी अगर कुछ करना है, अपने खुद के लिए भी, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। आप बस अपने हिसाब से, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए और इसमें, इस टाइप के आप फाउंडेशन में आप जुड़िए तो आपको अपने आप ही अपनी पहचान और अपना मतलब बेस्ट देने का मौका मिलता है। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे फाउंडर श्री वीरेंद्र सिंह जी का, आपका भी, आपकी चैनल का भी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन फिलहाल मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

पुरस्कार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिखकर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितनी अच्छी मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का 2 कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती।

0: कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है, तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता। लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता। पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी, और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है, और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था, और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती, और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था, निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

सारी बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे इंटरव्यूज और साथ ही लेकर आता है आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही खूबसूरत से गाने भी, जिसे सुनकर आप खुश हो जाते हैं और आपकी खुशी देखकर हम भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत सारी बातों के साथ साथ गाने का सिलसिला भी हमारा चलता रहता है। इसी के साथ मैं आ गई हूँ लेकर प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हाँ, लाइफ में सक्सेस सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, आप खुद सोचिए ना। हर कोई चाहता है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं, कोई कामयाबी हासिल कर ले या फिर कुछ अपनी लाइफ में कर ले और कुछ बन कर निकले। दोस्तों, ये बात तो सच कही है, जरूरी नहीं होता कि सबके पास सब कुछ हो तो इंसान सब कुछ तभी कर पाता है। नहीं, मैं आपके साथ ना बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी जर्नी शेयर कर चुकी हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे किसी के पास कुछ ना होते हुए भी उसने कितने संघर्ष से, कितनी मेहनत से, कितनी लगन से सब कुछ हासिल कर लिया। तो बस लाइफ का ना यही मोटिव रखना चाहिए कि बस आप ना अचीव करने के ऊपर ध्यान दो, आप बस मेहनत करने पर ध्यान दो। वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। आप बस काम करिए, मेहनत करिए, सक्सेस आपको जरूर मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज भी आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए बहुत सारी बातें, जहां पर आज हम किसी की जर्नी के साथ चलने वाले हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ, आज हम बी आर अम्बेडकर की जर्नी के साथ चलने वाले हैं। उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनकी लाइफ से हम मोटिवेशन लेने वाले हैं कि ताकि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि कभी कभी अगर हम खुद आस छोड़ देते हैं, पर अगर सामने कोई इंसान आ जाए और अपनी बातों से अगर हमें मोटिवेट कर दे, हमें भी अंदर से हौसला आ जाता है कि यार हम भी कर सकते हैं। तो बस इसीलिए आपके लिए जर्नी लेकर आ जाती हूँ और ये सिलसिला पूरा एक घंटे का रहता है, जहाँ पर हम बहुत सारी बातें भी करते हैं, बहुत सारी गाने भी सुनते हैं। तो चलिए इसी के साथ अभी सुनाऊंगी मैं आपको बहुत ही प्यार सा गाना, उसके बाद हम इस जर्नी पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। पर उससे पहले सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और साथ ही एक संकल्प के साथ एक कहते ना इतिहास रच दिया। और आज की हमारी कहानी है भारत के एक ऐसे महान विचारक की, एक ऐसे समाज सुधारक की, अर्थशास्त्री की, राष्ट्र निर्माता की, जिनका नाम भारत के इतिहास में सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा, लिया जाता है और आगे भी सम्मान से लेंगे। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं B.R. अंबेडकर की, जिन्हें पूरा देश बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जानता है। दोस्तों, हर महान सफलता की कहानी की शुरुआत किसी न किसी संघर्ष से ही होती है। बाबा साहेब अंबेडकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका जन्म हुआ 14th of April 1891 को, जी हाँ, मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता रामजी मोलजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवा करते थे और शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्वता भी देते थे। बचपन से ही बाबा साहब एक तेज और जिज्ञासुक विद्यार्थी थे। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उस समय भारत में सामाजिक असमानता और भेदभाव गहरा था। छोटी सी उम्र में ही उन्हें कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार अलग अलग व्यवहार का सामना भी करना पड़ा था। ये अनुभव किसी भी बच्चे का हौसला तोड़ सकता है, लेकिन बाबा साहेब ने इन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जी हाँ, जितनी मुश्किलें उनके सामने आती गई, उतनी ही उनकी पढ़ाई के प्रति लगन और ज्यादा बढ़ती गई। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो शक्ति है जो इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। इसी सोच ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब कई लोग परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, तब कुछ लोग उन्हें बदलने का संकल्प ले लेते हैं। जी हाँ, बाबा साहेब उन्हीं लोगों में से एक थे। दोस्तों, बचपन की कठिनाइयों ने उन्हें बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत ज्ञान और शिक्षा से ही होगी। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। यहीं से हमने बाबा साहेब अम्बेडकर का पहला सक्सेस मंत्र भी मिल गया। जी हाँ, वो ये है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं होती है, बल्कि सोचने, समझने और अपनी जिंदगी को बदलने की एक ताकत होती है। जी हाँ, इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की बचपन के बारे में, उनके शुरुआती संघर्षों के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उनके अद्भुत सफर की, जो उन्हें भारत के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक बनाता है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि अगर जिंदगी में सच्चा बदलाव लाना है तो उसका रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। जी हाँ, इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और समर्पण के साथ जारी रखा। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने मुंबई के एल्फिनस्टोन कॉलेज में एडमिशन लिया। उस दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करना ही एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था, लेकिन बाबा साहेब के सपने भी इससे और ज्यादा बड़े थे। उनकी प्रतिभा और मेहनत को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की। जी हाँ, ये स्कॉलरशिप उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसकी मदद से बाबा साहेब को अमेरिका के प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला। जी हाँ, अमेरिका पहुंचकर उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री जैसे विज्ञानों का गहरा अध्ययन किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने दुनिया को एक नए नजरिए से समझा। वहाँ उन्हें एक ऐसा वर्ताप मिला जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी मेहनत और योग्यता से होती थी। इस अनुभव ने उनकी सोच को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। लेकिन बाबा साहेब का सीखने का जो सफर यहीं नहीं रुका, वो अमेरिका के बाद भी इंग्लैंड गए थे। वहाँ पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की, साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की। इतनी कठिनाइयों के बावजूद लगातार पढ़ाई करना उनके संकल्प का प्रमाण था। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास सीखने की इच्छा हो और मेहनत करने का जज्बा होना, तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं होती। उन्होंने ज्ञान को सिर्फ अपनी सफलता का जरिया नहीं बनाया, बल्कि समाज में बदलाव लाने का माध्यम भी बनाया है। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का दूसरा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है, नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा तरक्की के दरवाजे खुलते जाएंगे। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरती स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज हम B.R. अंबेडकर की जर्नी के साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे

बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत से लेकर अमेरिका और इंग्लैंड तक की शिक्षा यात्रा को पूरी की और ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब का उद्देश्य सिर्फ खुद सफल बनना नहीं था, बल्कि उनका सपना था कि एक ऐसा समाज बनाना जहाँ पर हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय मिल सके। अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद जब बाबा साहेब भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि समाज में असमानता और भेदभाव की समस्याएं अब भी मौजूद थी। उन्होंने फैसला किया कि जो ज्ञान और अनुभव उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से प्राप्त किया है, उसका उपयोग वो समाज के हित में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक विद्वान ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा की महत्वता के बारे में बताया, शिक्षा से जागरूक करना सिखाया, और उसके बाद उनका मानना था कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो लोगों को शिक्षित और सशक्त बनना बहुत जरूरी होगा। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने कई लेख लिखे, भाषण दिए और सामाजिक जागरूकता के अभियान भी चलाए। साल था 1924 जिसमें उन्होंने बहिष्कृत हितक्रांति सभा की स्थापना की। इस संस्थान का उद्देश्य था कि शिक्षा पर प्रसार, सामाजिक जागरूकता, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। बाबा साहेब ने हर उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाई जिसे समाज में समान अवसर नहीं मिल पा रहा था। उनकी एक और खास बात थी कि वो समस्याओं की सिर्फ आलोचना नहीं करते थे, बल्कि उनके समाधान भी प्रस्तुत करते थे। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए सोच के साथ साथ संगठित प्रयास भी बहुत जरूरी है। इसी वजह से धीरे धीरे लोग उनकी बातों को सुनने लगे और उनके विचारों से प्रेरित होने लगे। दोस्तों, लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि नेतृत्व करना हो। असली लीडर वही होता है जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है और उन्हें अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित भी करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी इसी उद्देश्य को समर्पित कर दिया। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का तीसरा सक्सेस मंत्र भी मिलता है, जो कि है कि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी समाज के हित के लिए भी करते हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज हम चल रहे हैं बाबा साहेब अंबेडकर की जर्नी के साथ। बहुत सारी सीखें मिल रही हैं हमें, बहुत सारे सक्सेस मंत्रा मिल रहे हैं उनकी लाइफ से। तो चलिए, पिछले सेगमेंट में हमने जैसे उनके बारे में जाना कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग समाज को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए किया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ विचार रखना ही काफी नहीं होता है, कभी कभी बदलाव लाने के लिए हिम्मत के साथ खड़े होना भी जरूरी होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी यही किया। जी हाँ, उस दौर में समाज में कई ऐसी परंपराएं और व्यवस्थाएं मौजूद थी जो लोगों के बीच में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देती थी। बाबा साहेब ने इन समस्याओं को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ आवाज भी उठाई। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। फिर आया साल 1927, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे महत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इस आंदोलन का उद्देश्य था सार्वजनिक जल स्रोत पर सभी लोगों का समान अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। ये सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं था बल्कि समानता और मानव अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक भी था। बाबा साहेब ने हमेशा कानूनी और शांतिपूर्वक तरीके से बदलाव लाने पर ज्यादा जोर दिया। उनका विश्वास था कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जरूरी है, लेकिन उस संघर्ष में सोच, तर्क और संगठन की भी उतनी ही अहमियत है। इसी वजह से उनके आंदोलन ने हजारों लोगों को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी बनाया। दोस्तों, कभी किसी बड़े बदलाव के लिए हिम्मत चाहिए होती है। कई बार जब कोई व्यक्ति पुरानी सोच को चुनौती देता है तो उसे विरोध का सामना भी करना पड़ता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी मुश्किलों और विरोध का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। उनका फोकस हमेशा एक ही भारत का निर्माण था, जहाँ पर हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिल सके। उनकी लीडरशिप ने लोगों को ये सिखाया कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना और न्याय के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। उनका संघर्ष सिर्फ एक समय के लिए नहीं था बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता तैयार कर रहा था। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का चौथा सक्सेस मंत्रा मिलता है कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो हिम्मत के साथ उसके लिए खड़े होना भी जरूरी है। सिर्फ सपने देखने से नहीं बल्कि उनके लिए संघर्ष करने से परिवर्तन आता है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने सक्सेस मंत्रा में बात करी बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलनों और समानता के लिए किए गए संघर्ष के बारे में, इसके बारे में हमने जाना। लेकिन अब बात करते हैं आगे इस सेगमेंट में उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अध्याय। ये वो अध्याय था जिसने उन्हें भारत का सबसे महान राष्ट्र निर्माताओं में शामिल कर दिया था। जी हाँ, जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था तब देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर नागरिक को समान अधिकार दे, न्याय सुनिश्चित करे और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। इस महान जिम्मेदारी के लिए बाबा साहेब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। जी हाँ दोस्तों, ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। भारत एक विशाल और विद्वताओं से भरा हुआ देश था। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और सामाजिक परिस्थितियां थी। ऐसे में एक ऐसे संविधान बनाना जो सबको साथ लेकर चले, एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने गहरे अध्ययन, कानूनी ज्ञान और दूरदर्शी सोच का उपयोग करते हुए संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर किया कि हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिले। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब देश के हर व्यक्ति को अवसर और सम्मान मिलेगा। फिर आया दिन 26 नवंबर 1949। जी हाँ, भारत का संविधान अपनाया गया। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं था बल्कि एक नए भारत का सपना था। एक ऐसे भारत का जहाँ पर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार हो, अपनी प्रगति का मौका हो और कानून के सामने सब समान हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें ये भी सिखाया कि किसी भी राष्ट्र की ताकत उनके नागरिकों और उनके संस्थानों में होती है। इसलिए उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों, लोकतंत्र और कानून के प्रति सम्मान की बात की है। दोस्तों, आज जब हम जिस भारत में अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं उसके पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके सहयोगियों के वर्षों की मेहनत छुपी हुई है। इसीलिए उन्हें भारत के संविधान का शिल्पकार के रूप में याद किया जाता है। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का पांचवा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है कि बड़ी जिम्मेदारियां उन्हीं लोगों को मिलती है जो तैयारी, ज्ञान और ईमानदारी के साथ उन्हें निभाने की क्षमता रखते हैं। वक्त हो गया है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आगे और भी बातचीत हमारी बाकी है जिसे हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, फील गुड फील

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्नी हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर यानी कि B.R. अम्बेडकर की जर्नी के साथ चल रहे हैं। दोस्तों, पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई और एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां न्याय, समानता और स्वतंत्रता को महत्वता दिया गया। और अब इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे उनकी विरासत, उन्हें मिले सम्मानों और उनके विचारों की, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, कुछ व्यक्ति अपने समय में महान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव उनके जीवन के बाद भी कई पीढ़ियों तक बना रहता है। बाबा साहेब अम्बेडकर उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय और महान अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहेब का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति का सबसे बड़ा आधार शिक्षा है, इसीलिए उन्होंने हमेशा लोगों को पढ़ने, सीखने और जागरूक बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार आज भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और सामाजिक स्थानों में चर्चा का विषय बना रहता है और उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। ये सम्मान उनके द्वारा राष्ट्र और समाज के लिए किए गए अमूल्य योगदान की पहचान है। आज देश के कई संस्थान, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस उनके नाम पर स्थापित हैं, जो उनकी अमर विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वो एक विचारक, अर्थशास्त्री, लेखक, समाज के सुधारक और दूरदर्शी नेता भी थे। उनके विचार हमें आज भी ये याद दिलाते हैं कि समानता और न्याय किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। और सबसे खास बात तो ये है कि उनकी सीखें सिर्फ इतिहास की किताबों में ही सीमित नहीं है, बल्कि आज के युवाओं के लिए उनका संदेश उतना ही महत्वपूर्ण भी है। खुद को शिक्षित बनाओ, अपनी सोच को मजबूत बनाओ और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझो। यहाँ से हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का सक्सेस मंत्र मिलता है कि आपकी असली पहचान आपके जन्म से नहीं, बल्कि आपके कर्मों और समाज पर छोड़े गए प्रभाव से बनती है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा के प्रेरणादायक सफर में हमने बात करी डॉक्टर B.R. अंबेडकर के जीवन के बारे में, उनके कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जाना, एक ऐसे बच्चे की कहानी जानी जो कठिन परिस्थितियों में बड़ा हुआ, एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी जिसने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, और एक ऐसे नेता की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दी। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी हमें कई ऐसे सबक देती है जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय में थे। उनका पहले सक्सेस मंत्र है, शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। जी हाँ, बाबा साहेब का विश्वास था कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो लोगों को गलत राहों पर, असमानता और असीमित सोच से मुक्त कर सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ने और सीखने को महत्वता दिया। दूसरा सक्सेस मंत्र है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी क्यों ना हो, कभी हार मत मानिए। बचपन से लेकर जीवन के कई पड़ाव तक उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष सफलता का विरोध नहीं बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा सक्सेस मंत्र है, अपनी सफलता को समाज के हित से जोड़िए। जी हाँ, बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान को समाज को सशक्त बनाने और देश को मजबूत बनाने में किया। चौथा सक्सेस मंत्र है, न्याय, समानता और सम्मान के मूल्यों पर विश्वास रखिए। जी हाँ, उनका मानना था कि एक मजबूत समाज वही है जहाँ पर हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और उनकी गरिमा का सम्मान किया जाए। अब आखिरी सक्सेस मंत्र, जी हाँ, जहाँ पर बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी अपनी सीमाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने अपने सपनों को अपनी पहचान बनाया और कैसे वो आज लोगों में इतने महान व्यक्ति बन गए। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जिंदगी सिर्फ एक इतिहास का एक अध्याय नहीं है बल्कि उनके हौसले, शिक्षा, मेहनत और दृढ़ संकल्प की एक जीवांत मिसाल है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एक व्यक्ति की सोच और मेहनत पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आरजी स्नेहा ले रही हूँ आपसे इजाजत, और अगले एपिसोड में हम फिर से मुलाकात करेंगे एक और ऐसी शख्सियत की कहानी के साथ जिनकी जिंदगी से हमें सफलता का एक नया मंत्र मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए, और साथ ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम।
1: हाँ जी नमस्कार, मैं हूँ आरजे सागर, आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग इस टाइम सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। हमारा शो हर बार बहुत स्पेशल होता है, लेकिन आज का शो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। ये मैं रिवील बाद में करूंगा, क्योंकि देखिए प्रोसेस होता है, पहले आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, फिर कंपनी के बारे में बताया जाएगा। कंपनी जो है आज एक ऐसे अभिनेता की कंपनी है, मतलब जो बहुत फेमस है, शी इज एन एक्ट्रेस और काफी काम किया है उन्होंने, इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, उनकी एक कंपनी है। अगर आप जानते हैं उसके बारे में तो कृपया करके व्हाट्सएप पर हमें बता दीजिए 8010781078, और नहीं जानते हैं तो आराम से भैया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चिल करिए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर तो मैं बता ही दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, अभी लेंगे हम एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, फिर हम लेकर चलेंगे कंपनी, फाउंडर, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

0: प्यार होता।
1: एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। आई मीन एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें, अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारा यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकेंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों, और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है, अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला। बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसी हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है, तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने है, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं, किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपने स्किन के ऊपर, और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कॉन्टेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कॉन्टेंट बनाते हैं, फुल फ्लैज्ड वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील रे।

ABC. Feel good, feel live. दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रश्न 107.8 FM। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चलें तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं अब ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान के पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं, उसमें भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजीली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कंटेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कंटेंट बनाएं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहां पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसका अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या, ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड, फील

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज की ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहां पर पहला जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा कि मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसीडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में। डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड।

वेलकम बैक। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझा है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीजें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गोना सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीजें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीजें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों, जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीज़ें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी।

0: हटा दो।
1: दोस्तों अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एजन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेस होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। इसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा कल्चर सब चीज होती है, तो तमाम चीजें पढ़ के जहां पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहां पर आपको वहां की कोई चीज देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ आप जान चुके हैं अभी तक। चलिए आगे लेकर चलते हैं शो को और फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की कंपनी जो ब्यूटी टेक में डील करती है, इसका नाम है हाइफन। हाइफन एक इंडियन D2C डायरेक्ट टू कस्टमर स्किन केयर ब्रांड है, जिसको जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। इट वॉज को फाउंडेड बाई एन एक्ट्रेस एंड हर नेम इज कृति सैनन। यहाँ कृति सैनन का ये ब्रांड है एंड इसके साथ साथ और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली। टीम जिसने मैककैफीन कंपनी स्टार्ट करी थी वो इसमें शामिल है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कृति ने सिर्फ ये नहीं किया कि मैं एक सेलिब्रिटी फेस की तरह आऊँगी, एंडोर्स करूँगी और हो गया मेरा काम। यहाँ पर वो एक्टिवली इन्वॉल्व रही, यहाँ पर हर एक चीज़ में, हर एक प्रोडक्ट में, उसके आइडिएशन में, टेस्टिंग में, ब्रांडिंग में, कस्टमर फीडबैक में। एंड कंपनी यहाँ पर कंबाइन करती है साइंस बैक्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ताकि मल्टी बेनिफिट स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जा सके। इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक, डील करती है स्किन केयर में, D2C कस्टमर ब्रांड है, पर्सनल केयर में फॉल करता है अगर इसको हम सब कैटेगरी वाइज देखें तो। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। तो कृति बहुत पैशनेट रही है शुरू से ही अपने स्किन केयर को लेके। इन्होंने देखा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो सेवरल प्रोडक्ट्स जो हैं बाय करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न्स के लिए। हाइड्रेशन के लिए अलग प्रोडक्ट होते हैं, पिगमेंटेशन के लिए अलग, ग्लो के लिए अलग, एक्ने के लिए अलग, बैरियर रिपेयर के लिए अलग। और जब आप इन सारी चीज़ों को मर्ज करते हो, कंबाइन करते हो, तो ये बहुत एक्सपेंसिव और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ बनाते हैं। तो मैककैफीन के जो फाउंडर्स थे इन्होंने उनको रीच आउट किया और प्रोडक्ट्स बनाने का आइडिया दिया और अपना विजन शेयर किया, ठीक है। जहाँ पर इन्होंने मल्टीपल इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये लेकर के आए एंड दे पुट एवरीथिंग इनटू वन फार्मूला। जो फाउंडर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट एक साल जो है वो अपना दिया उस एक चीज़ को फॉर्मेट करने में, समझने में, प्रॉपर लॉन्च करने में। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ दिस कंपनी, क्यों ये कंपनी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर इतना हमें क्लियरली समझ में आता है कि कृति को एक प्रॉब्लम नजर आई। एंड प्लीज हेयर इट आउट, उन्होंने ये नहीं किया कि मेरा फेस बिक जाएगा या मेरे फेस को देख करके लोग खरीद लेंगे। उन्होंने सिंपली एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने का सोचा। एंड इन चीज़ों की वजह से कोई भी कंपनी अलग होती है कि आप एडवांटेज ले सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी कोई एडवांटेज है तो यू शुड टेक दैट एडवांटेज। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर हैज़ टू बी समथिंग जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करें, जो इस कंपनी ने किया। फिलहाल लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे और चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। मैं सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। कंपनी का नाम है हाइफ़न, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया इसका, क्या करती है हाइफ़न, ये आपको ओवरऑल हमने बताया, एक ओवरव्यू मिला है। लेकिन थोड़ा प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात करते हैं। एग्जैक्टली स्किन केयर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। सनस्क्रीन है इनके पास, फेस सीरम्स हैं इनके पास, मॉइस्चराइजर्स हैं इनके पास, क्लींजर्स हैं इनके पास, लिप बाम्स हैं इनके पास, फेस मास्क हैं इनके पास, ठीक है। कंपनी सेल कहाँ कहाँ पर करती है, पहली बात अपनी खुद की वेबसाइट पर, दूसरा अमेजोन पर, तीसरा नायका पर, चौथा ब्लिंकिट पर, पांचवा जेप्टो पर, छठा फ्लिपकार्ट पर, एंड देर आर अदर क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। फिलोसफी बहुत सिंपल है, वी यूज 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन वन प्रोडक्ट कैन सॉल्व मल्टीपल स्किन कंसर्न्स, व्हाई आर वी डूइंग इट। तो ये इन्होंने सिंपल सा लॉजिक लेकर के आए और प्रॉब्लम जो है, मतलब आपके 3 प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दिया। अच्छी बात ये है कि मार्केट को बहुत अच्छे से समझा है कंपनी ने कि भैया क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स जहां से जो हो सके करो, हर जगह पर आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। ये इस कंपनी ने एक मंत्र जो है वो फॉलो किया। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि एक तो भाई एम कैफीन अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रांड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो जो फाउंडर्स हैं उन्होंने उस चीज को एक्सेल कर लिया कि काम कैसे करता है, स्किन केयर ही पूरा सेगमेंट कैसे काम करता है, लोग क्या पसंद करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कृति सनन भी वहां पर आ गई और आई भी इस थॉट के साथ कि यार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेट्स नॉट जस्ट सेल द फेसेस, लेट्स सेल द सॉल्यूशन, जो मुझे लगा बहुत बहुत आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट पार्ट। तो ये एग्जैक्टली चीज है जो स्ट्राइक की। अच्छा, कंपनी स्टार्ट कैसे हुई, कृति को अपना स्किन केयर कंपनी स्टार्ट करनी थी, उन्हें करियर वहां पर बनाना था अपना, ऑलरेडी बॉलीवुड में है लेकिन उन्हें करना था वहां पर। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, उन्होंने पार्टनरशिप की विद द पीपल जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, एम कैफीन के फाउंडर्स, ओके। उन्होंने रिसर्च की इंडियन स्किन केयर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, कंज्यूमर हैबिट्स के ऊपर, स्किन केयर पेन पॉइंट्स के ऊपर, देन उन्होंने एक फॉर्मुलेशन बनाया जिसमें उन्होंने कंबाइन किया मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रोडक्ट टेस्टिंग की बिफोर लॉन्च, एंड देन जुलाई 2023 में इस कंपनी को लॉन्च कर दिया। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे फाइनली फाउंडर्स के बैकग्राउंड की। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

आशा करता हूँ हर बार की तरह कि आपको ये वाइब अच्छी लग रही है, शो आपको पसंद आ रहा है, शो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। लेट्स टेक इट अहेड, फाइनली बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। हाइफ़न हमारी आज की कंपनी है और एक चेहरा अभी तक आपको पता है, कृति सैनन। तो चलिए शुरुआत इनसे ही करते हैं। सो कृति सैनन इज द को फाउंडर एंड चीफ कस्टमर ऑफिसर CCO ऑफ हाइफ़न। इनके एजुकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने बीटेक किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से, नोएडा से। ओके, प्रीवियस बैकग्राउंड इनका एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, अभी एंटरप्रेन्योर भी इनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। ये ब्रांड बिल्डिंग लेकर के आती हैं, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग लेकर के आती हैं, मार्केटिंग लेकर के आती हैं, प्रोडक्ट का फीडबैक लेकर के आती हैं। सो अनलाइक पैसिव सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स, शी इज पोजिशनड एज एन एक्टिव ऑपरेटर। मतलब होता क्या है कि पैसिव, अगर मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ तो एक तरीके से पैसा ले लो भाई, बनाओ तुम लोग, हम अपना चेहरा दिखाने आ जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर एक्टिवली काम किया, प्रॉपर कस्टमर को समझा, कस्टमर की नीड क्या है उसको समझ के तब जाकर के जो है इन्होंने मार्केट में उतरे और उसको प्रोडक्ट को अपने बेहतर बनाते गए। दूसरा नाम आता है तरुण शर्मा, ये को फाउंडर हैं एंड CEO हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करें तो को फाउंडर ऑफ एम कैफीन, इनको जाना जाता है D2C ब्रांड बिल्डिंग के लिए, ब्यूटी स्टार्टअप्स के लिए, स्केलिंग कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए, स्केलिंग में बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। तीसरा नाम है वैशाली गुप्ता, इनका रोल है को फाउंडर एंड चीफ ग्रोथ ऑफिसर CGO। प्रीवियस एक्सपीरियंस को फाउंडर ऑफ एम कैफीन, ब्रांड मार्केटिंग, ग्रोथ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट नेम आता है यहाँ पर सौरभ सिंगल का, रोल है इनका चीफ सप्लाई ऑफिसर। इनका बैकग्राउंड है मैन्युफैक्चरिंग का, ऑपरेशन का और सप्लाई चेन का। एंड नेक्स्ट नेम आता है यहाँ पर मोहित जैन का, फाइनेंस समझते हैं, व्यापार समझते हैं, फाइनेंस को फिक्स करना इनका काम है। तो ये ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस देखते हैं प्लस फाइनेंस देखते हैं। तो ये भी जो है एम कैफीन जो है उस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हैं, एक तरीके से रह चुके हैं। तो ये पांच लोग हैं जिन्होंने मिला करके स्टार्ट किया। कुछ मार्केटिंग लेकर के आए, कुछ फाइनेंस देख के आए, कुछ सप्लाई को फिक्स करने का बेड़ा लेकर के आए, कुछ अपना अनुभव लेकर के आए, कुछ अपना चेहरा लेकर के आए, साथ साथ इस झील के साथ कि कुछ सीखेंगे। That's how this company started. तो ये है जी इनके बैकग्राउंड सबके। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। Stay tuned with us. Feel good, feel live.

0: पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी गानों की चॉइस आपको पसंद आ रही है।
1: तो चलिए जी, इसी नोट पर शो को आगे लेकर चलते हैं। कंपनी का नाम है हाइफ़न। हम आपको कंपनी के बारे में बता चुके हैं, कब स्टार्ट हुई, क्या स्टेप्स रहे, कौन को-फाउंडर्स हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, सब कुछ आपको पता है। थोड़ा बिजनेस मॉडल समझते हैं। पर D2C प्लस ओमनी चैनल ब्रांड। इनका रेवेन्यू आता है वेबसाइट सेल से, मार्केट प्लेसेस से, रिटेल पार्टनरशिप से, क्विक कॉमर्स से। ओके, तो अच्छी बात यह है कि आपको किसी एक चैनल के ऊपर रिलाई नहीं करना है। यू शुड ओपन एज मैनी गेट्स एज पॉसिबल। अब यहां बात करते हैं की ग्रोथ ड्राइवर्स की। कैसे कंपनी भैया ग्रो कर रही है? पहला तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेलिब्रिटी फाउंडर। कृति सैनन जो है बहुत बड़ा नाम है, और अगर वो किसी ब्रांड के साथ आ रही है तो इमीडिएट विजिबिलिटी बढ़ेगी उसकी। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ वो उसके साथ जुड़ी रही है शुरू से ही, बिल्कुल डे वन से, जहां पर एक थॉट, एक विजन, एक मिशन क्लियर था उनके पास, तो उस थॉट के साथ काम किया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटजी। बहुत इन्वेस्ट किया इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर, कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटली अपने आप को एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है फास्ट प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, रेगुलर लॉन्चेस करते हैं, फटाफट इनोवेट करते हैं। मौसम बदल रहा है, कोई नया इशू आया है, लेट्स ट्राई टू फिक्स इट अगर हमारे एंड पर पॉसिबल हो सकता है तो। उसके अगला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग D2C एक्सपीरियंस, क्योंकि एम कैफीन भैया बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी अगर टीम इनके साथ जुड़ गई है तो इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस। आई मीन एक एडवांटेज आपके पास होता ही होता है जी। तो ये पांच हैं वो ग्रोथ ड्राइवर जिनकी वजह से कंपनी ग्रो करके यहां तक पहुंची है। अच्छा, इस कंपनी ने अलग क्या किया? सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इंग्रेडिएंट्स दे सोल्ड सॉल्यूशंस। कस्टमर्स को नहीं चाहिए भैया विटामिन सी, नायासिनामाइड एंड सेरामाइड एंड सो ऑन। दे सिंपली वांट अ क्लियर स्किन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी देखते ना हम लोग एड्स में आता है नायासिनामाइड है इसमें जी, इसमें विटामिन सी। हमें नहीं पता है, हमें इतना जानना है कि मेरी स्किन के ऊपर काम करेगा, क्योंकि मेरे को एक और स्ट्रेस मिलेगा ना कि अब मेरे को ये समझना है नायासिनामाइड होता क्या है भाई और ये काम कैसे करता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर स्ट्रेटजी को समझा और समझा कि कस्टमर को यार सिंप्लीफाई करके देते हैं ना, कॉम्प्लेक्स क्यों करना। ये इन्होंने थोड़ा सा अलग किया जो इनके काम भी आया, दिखा भी। सो यार दैट इज एग्जैक्टली द थिंग जो इन्होंने अलग किया जिसकी वजह से ये आउटशाइन कर पाए। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम शो को आगे लेकर चलेंगे और बात करेंगे कंपनी की USPs की। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम पर। कंपनी की यूएसपीज की अगर बात करें, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तो पहला तो है कि मल्टीपल पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक बॉटल में मिल रहे हैं।

डर्मेट्स की दुनिया में जिसको सपोर्ट किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अफोर्डेबल प्रीमियम स्किन केयर। सो रेदर देन लग्जरी प्राइसिंग, उन्होंने टारगेट किया मिडिल सेगमेंट को, प्रीमियम क्वालिटी विदाउट लग्जरी प्राइसिंग। ये अगेन मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव होता है कि किसी के लिए हो सकता है ये भी लग्जरी हो, बट कंपनी खुद को ऐसे पोजीशन करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलिब्रिटी ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर एक सेलिब्रिटी खुद इन्वॉल्व है जो सिर्फ वहां पर ब्रांड शूट करने के लिए नहीं आ रहा है, जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, को फाउंडर है, इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस। आई मीन लोगों को एक ट्रस्ट फैक्टर आता है, एक अपर हैंड मिल जाता है उस ब्रांड को। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टेस्टिंग हुई है, इंग्रेडिएंट सिलेक्शन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर फीडबैक, सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों के सामने होते देखा है और उसमें वो शामिल रही हैं। तो ये है जी, 2023 में ये कंपनी जो है लॉन्च की गई थी, 1 मिलियन से 4 मिलियन कस्टमर्स जो है इन्होंने विद इन 1 ईयर इन्होंने ग्रो किया था इतना, ठीक है। रिपीट परचेज रेट है एज पर कंपनी ऑलमोस्ट 60% जो है इनका स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है जो कंपनी क्लेम करती है। 19,000 से ज़्यादा पिन कोड्स के ऊपर इन्होंने प्रोडक्ट्स अपने डिलीवर किए हैं एंड 400 करोड़ जो है वो विद इन 2 ईयर्स इन्होंने ग्रॉस सेल करी थी। सो इट शो सो मच यार, इट टेल्स सो मच कि कंपनी ने एक्चुअली अच्छा काम किया है। तो ये थे हमारी आज की कंपनी जिसका नाम है हाइफ़न। आपको कैसी लगी बताइए हमें। फिलहाल मेरा वक्त है भैया शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, आपको मजा आया होगा। अब चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो लेकर, मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज आरजे सागर।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल पे? वहाँ क्या क्या कर रहा है?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
3: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जहां होती है बातें आपकी हेल्थ के बारे में। मौसम बदल गया है और इस बदलते मौसम में जहां कभी बारिश है तो कभी धूप है, कभी आप एसी में बैठते हैं, कभी आप बाहर निकलते हैं, बारिश के इन्फेक्शन भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे में सर्दी जुकाम खांसी होना बहुत कॉमन बात है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अपने पिछले कुछ एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी गंभीर विषय पर। बरसात का मौसम वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है? खास तौर पर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी दिमाग से जुड़ी हुई कुछ परिस्थिति भी बिगड़ सकती है। क्या इस बारिश के मौसम में, इस मॉनसून में आपको एक्स्ट्रा ख्याल रखने की जरूरत है? ऐसे इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर दिव्या गोयल। डॉक्टर दिव्या, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: थैंक यू दीक्षा।
4: तो सबसे पहले डॉक्टर दिव्या, बहुत सिंपल सा सवाल, बरसात के मौसम में मॉनसून की जब हम बात करते हैं तो वैसे बहुत अच्छा लगता है मॉनसून, लेकिन इस मॉनसून में सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है बीमारियों से। सर्दी जुकाम है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, इन सब के बारे में तो हमें अक्सर राय मिलती रहती है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते रहते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या मॉनसून में बढ़ जाती हैं, और अगर बढ़ती हैं तो क्यों बढ़ती हैं?
5: जी बिल्कुल, जो रेनी सीजन होता है इसमें कुछ ऐसी चेंजेस आते हैं जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस बढ़ जाती हैं। जैसे चेंजेस बीइंग डिक्रीज इन बेरोमेट्रिक प्रेशर, जो हमारा बाहर का प्रेशर होता है वातावरण का, वो गिर जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी रीएडजस्ट करती है, इम्यूनिटी गिरती है। सेकेंडली इसमें ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, उमस जिसे हम कहते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ने से हमारा जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन होने से भी बीमारियों को बहुत न्योता मिलता है एक तरह से। और तीसरा चेंज होता है वाटर लॉगिंग। अब जगह जगह जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें वाटर बेस्ड बहुत सारा कंटेमिनेशन और बहुत सारे मस्कीटोज का बेसिकली ब्रीडिंग शुरू हो जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो वेक्टर बॉर्न है, मस्कीटो बॉर्न है, उनकी शुरुआत होती है और CNS को इन्फेक्ट करते करते कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं।
4: ओके, सो ये बेसिकली जो नॉर्मल बीमारियां दिखती हैं वो भी प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट कर सकती हैं। तो मॉनसून को एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे हम जनरली लोगों को कहते हैं ना कि आप डेंगू मलेरिया से बचने के लिए फुल स्लीव्स के कॉटन के कपड़े पहनिए, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर किसी को पहले से हल्की बहुत है तो उसको एक्स्ट्रा केयर भी करनी चाहिए, जैसे आप विंटर्स में करते हैं। बस आपको हर मौसम में थोड़ा सा सतर्क रहना है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आखिर बढ़ती कैसे हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, लेकिन अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो जरूर पूछ सकते हैं। नंबर बहुत आसान है, 8010781078। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और इस प्रोग्राम में आज हम बात करें हैं मॉनसून में होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में. वो प्रॉब्लम्स जो खांसी जुकाम बुखार नहीं है लेकिन इससे काफी बड़ी है. क्या पता इनके होने से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है. पर ये प्रॉब्लम है क्या, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो मॉनसून में ज्यादा खराब हो जाती हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या गोयल, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर और एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे बीच हैं. डॉक्टर दिव्या, बारिश के मौसम में कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो ज्यादा देखने को मिलती हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है लोगों में?
1: जी, अगर कॉमनैलिटीज से शुरू करें तो माइग्रेन्स, माइग्रेन्स इंक्रीज इन द रेनी सीजन.
0: ओके,
1: उसका रीजन ये है, जैसे मैंने अभी बताया बैरोमेट्रिक प्रेशर कम हो जाता है तो उससे हमारे ब्लड की ब्रेन वेसल्स थोड़ी फूलती हैं.
0: okay.
1: और जब भी ब्लड वेसल्स हमारी फूलती हैं तो माइग्रेन जैसे हेडेक्स बहुत कॉमन होते हैं. हेडेक्स बढ़ते हैं, एक तो थोड़ा सा क्योंकि लोगों को पसीना भी आता है, स्वेटिंग होती है ह्यूमिडिटी के कारण, उसके कारण भी, टेम्परेचर चेंजेस के कारण भी, एंड एसी थोड़ा कम सहारा जाता है इस मौसम में. तो वो जो इंक्रीज्ड टेम्परेचर सेंसिटिविटी हो जाती है उसके कारण भी थोड़ा माइग्रेन्स की बढ़ जाती है तादाद.
0: मतलब बेसिकली टेम्परेचर चेंज होने से ज्यादा डिफरेंस होता है कि बाहर एकदम से ठंडा हो जाता है फिर एकदम से ह्यूमिडिटी हो जाएगी.
1: Exactly.
0: जैसे कभी तो 3-4 दिन लगातार इतनी बारिश रहेगी फिर अचानक से धूप आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम दे जाता है ज्यादा. तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग माइग्रेन से परेशान होते हैं. अब माइग्रेन का सोल्यूशन ज्यादातर लोगों के पास होता नहीं है, आपके पास कुछ दवाइयां हैं लेकिन जब माइग्रेन शुरू होता है तो 2-3 दिन परेशान करता है. तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या बेसिक दवाइयां लेके रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बार ऑफिस भी नहीं छोड़ा जा सकता.
1: बिल्कुल, माइग्रेन्स का सबसे पहले नेचुरल ट्रीटमेंट बताऊंगी जो रेनी सीजन में अप्लाई होता है, क्योंकि बहुत ह्यूमिड होता है और स्वेटिंग होती है लेकिन टेम्परेचर इतना ड्रॉप डाउन होता है कि प्यास नहीं लगती है. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम वॉलंटरीली प्रैक्टिस करें कि हम बार बार पानी पिए,
0: हर घंटे में एक ग्लास पानी.
1: इवन मतलब अगर हमें प्यास नहीं भी लगी है तो भी हमें थोड़ा सिप्स ऑफ वाटर लेनी चाहिए फ्रिक्वेंटली. तो मेंटेनिंग द हाइड्रेशन इज द की टू प्रिवेंटिंग माइग्रेन्स.
0: ओके,
1: तो एक तो हाइड्रेशन, दूसरी चीज सडन टेम्परेचर चेंजेस, सडन टेम्परेचर शिफ्ट को प्रिवेंट करना है. जैसे अगर आप एसी रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले एसी को थोड़ी देर बंद कर लें, 10 मिनट तक टेम्परेचर थोड़ा ठीक होने दे रूम का, एंड देन यू गेट आउट. सिमिलरली जब आपको अंदर आना है तो एकदम से आके एसी ना चलाएं, थोड़ा सा पहले टेम्परेचर में अडेप्ट हो जाएं एंड देन बहुत धीरे से वो करके या मॉइस्चर वाले उस पर सेटिंग पर एसी चला के देन यू कैन अडेप्ट टू द टेम्परेचर. तीसरा, डेफिनेटली माइग्रेन की मेडिसन्स बहुत कामयाब मेडिसन्स हैं. इसमें प्रिवेंटिव मेडिसन्स और अबॉर्टिव मेडिसन्स होती हैं. अगर हम प्रिवेंटिव मेडिसन्स लेंगे और रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो आइडियली माइग्रेन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही कम रहती हैं.
0: ओके,
1: पेन किलर्स की खपत हम बहुत ज़्यादा एडवाइज़ नहीं करते हैं, रीज़न बीइंग उससे किडनी डैमेज और गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है. बट येस, वंस इन अ वाइल अगर आपको पेन है तो आप पेन किलर्स भी ले सकते हैं.
0: ओके, यानी बीच बीच में पेन किलर्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है.
1: जी,
0: सो माइग्रेन पेशेंट्स को थोड़ा सा ध्यान अपना रखना है. पानी की कमी बॉडी में कोई भी व्यक्ति अगर होने देगा तो इस मौसम में ज़्यादा दिक्कत रहेगी. हमने अक्सर बारिश में देखा है कि मौसम बाहर ठंडा होता है, ह्यूमिडिटी होती है और हमें वीकनेस फील होने लग जाती है. बहुत सारी लेडीज़ को अक्सर किचन में काम करते हुए बहुत ज़्यादा थकावट होती है, क्योंकि एक तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, दूसरा पानी भी कम पी रहे होते हैं. सो इस मौसम में पानी

को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी और भी चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको डॉक्टर दिव्या गोयल के साथ ये सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी, जिसको आप कभी भी किसी के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत सब बातें और भी, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत सी बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में, और मानसून के सीजन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे बढ़ जाती हैं और ये प्रॉब्लम्स कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं या इसका सोल्यूशन क्या है, इस टॉपिक पर आज हम बात करें हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर दिव्या गोयल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर दिव्या, अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, वो है डेंगू और मलेरिया। अब डेंगू और मलेरिया के बारे में हम इतनी बातें सुनते हैं, एडवाइस होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो घर घर जाकर चेक भी करता है। अब ये एक अपने आप में गंभीर समस्या है जो कि जानलेवा साबित होती है, बट क्या इसका कोई कनेक्शन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी है? क्या इससे भी कोई और दिक्कत आ सकती है, बढ़ सकती है ये?
1: जी बिल्कुल, स्पेशली अगर हम मलेरिया का जिक्र करें तो मलेरिया एनोफिलीस मस्कीटो से स्प्रेड होता है, जो कि वाटर जहाँ पे भी लॉक्ड होगा वहाँ पे ब्रीड करते हैं।
0: जी,
1: तो जब वो RBCs को इन्फेक्ट करते हैं, अंदर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाते हैं, और ब्रेन में जाने के बाद दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ इन्फेक्शियस प्रोसेस इन द ब्रेन इटसेल्फ। इसको सेरिब्रल मलेरिया कहा जाता है, यानी दिमाग का मलेरिया। अब दिमागी मलेरिया जानलेवा भी होता है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि स्पेशली हेडेक्स से शुरू होके और कोमा तक प्रोसीड करते हैं। तो हेडेक्स, सीजर्स, कन्फ्यूजनल स्टेटस, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, बॉडी एक्स, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होना, 103, 104, 105 तक भी पहुंच जाता है, एंड फाइनली कोमा।
0: ओके,
1: तो कभी कभी जैसे मैंने बताया कि पेशेंट वेंटिलेट भी होता है, और इनफैक्ट कभी कभी दे आर डिफिकल्ट टू सेव अगर बहुत लेट हो जाए तो। तो वो सारा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि RBCs कितने इन्फेक्ट हुए हैं और ब्रीडिंग कितनी हो चुकी है बॉडी के अंदर। तो जितना जल्दी हम इंटरवीन करेंगे उतना जल्दी हम पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं।
0: तभी शायद बारिश के मौसम में जब फीवर 2-3 दिन नहीं उतरता तो फटाफट से टेस्ट कराए जाते हैं कि डेंगू मलेरिया सबसे पहले टेस्ट करें अगर सिम्टम्स यही हैं तो। तो यानी मलेरिया के केस में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद जानलेवा साबित होती है।
1: बिल्कुल,
0: अब चिकनगुनिया में या डेंगू में भी ऐसा कुछ हो सकता है?
1: जी बिल्कुल, डेंगू स्पेशली कभी कभी डेंगू इंसेफेलाइटिस हो जाती है। तो डेंगू इंसेफेलाइटिस का मतलब है डेंगू वायरस का ब्रेन की झिल्लियों को इन्फेक्ट कर देना। ब्रेन के ऊपर 3 झिल्लियां होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, अगर वो इन्फेक्ट हो जाएं तो उससे मेनिंगो इंसेफेलाइटिस नाम की प्रोसेस हो जाती है। वो एक इन्फेक्शन होती है जो बहुत तेजी से ब्रेन में स्प्रेड करती है, ब्रेन की नलियों को ब्लॉक कर देती है, और ब्रेन का जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा उसमें भी सीजर्स, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, कन्फ्यूजनल स्टेटस, हेडेक्स, कोमा, डिहाइड्रेशन, ये सब कुछ हो सकता है,
0: सारी चीजें वैसे।
1: और सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन जो डेंगू में होती है और चिकनगुनिया में होती है वो है क्योंकि प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ब्रेन हेमरेज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है।
0: बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है डेंगू में, खासतौर पर से ब्रेन हेमरेज के केसेस हमने सुने हैं कि अचानक से सब कुछ ठीक था लेकिन प्लेटलेट्स एकदम से फॉल करने शुरू हो गए और ब्रेन हेमरेज हो गया। यानी ये जो प्रॉब्लम्स जिनकी हम बात करें कि मच्छरों से होती है, बहुत कॉमन सी है और इसको लेकर मेडिकेशन भी अवेलेबल है, अगर टाइम पर इसे डिटेक्ट नहीं किया जाता तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना पेशेंट का। डॉक्टर दिव्या, थोड़ी सी बात अब और करना चाहेंगे दिमागी बुखार के बारे में। मेनिनजाइटिस या फिर एनसेफेलाइटिस, ये दो ऐसे शब्द हैं जो आम इंसान को नहीं पता होते, लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या आपके घर में बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आपने लिस्ट देखी है तो इसकी वैक्सीन अब आने लगी है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या इनका मानसून से कोई कनेक्शन है, या फिर क्या इसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं?
1: टेक्निकली स्पीकिंग मेनिनजाइटिस ब्रेन की झिल्लियों की इन्फेक्शन है, एनसेफेलाइटिस भी वही है, लेकिन मेनिनजाइटिस प्लस ऑल्टर्ड सेंसोरियम उसको एनसेफेलाइटिस बोल देते हैं। मेनिनजाइटिस में ज़्यादातर इंसान होश में रहता है, लेकिन उसी इन्फेक्शन में अगर दौरे पड़ने लग जाएं, ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाए, पेशेंट कोमा में जाना शुरू हो जाए तो वो एनसेफेलाइटिस कहलाती है। तो बहुत सारी बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंगस इन्फेक्शन से, देन ये माइकोबैक्टीरियल यानी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन से, ये सारी इंसेफेलाइटिस और मेनिनजाइटिस की बीमारियां जुड़ी हैं, जिसमें से रेनी सीजन्स में सबसे कॉमन वायरल इंसेफेलाइटिस और जापानीज इंसेफेलाइटिस है। तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस इंडिया के कुछ खास एंडेमिक एरियाज हैं इसके लिए, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मेघालय, हाँ। इधर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ये। साउथ में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये एंडेमिक जोन्स हैं इसके, क्योंकि वहाँ पर इसका जो वो मस्कीटो है, क्यूलेक्स मस्कीटो, वो पनपता है, तो रेनी सीजन्स में सबसे ज़्यादा उसका ब्रीडिंग होती है। और जैपनीज इंसेफेलाइटिस इसलिए ड्रेडेड है क्योंकि ये ब्रेन में बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्रेन को इन्फेक्ट करती है, उसको बेजल गैंग्लिया रीजन कहते हैं, डायरेक्टली वहाँ पे इन्फेक्ट करती है, और उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो काफ़ी केसेस में इरिवर्सिबल होते हैं।
0: ओके,
1: इनफैक्ट अप टू 50% ऑफ पेशेंट्स ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस सफर विद अ परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज इवन आफ्टर द क्योर ऑफ द डिजीज।
0: ओके,
1: तो प्रॉब्लम ये है कि मॉर्बिडिटी बहुत बढ़ जाती है, तो
0: काफी ज्यादा।
1: जैपनीज इंसेफेलाइटिस की आजकल वैक्सीन भी उपलब्ध है, तो इससे पहले कि इसका आप शिकार बने, इससे बेटर है कि पहले ही बच्चों में वैक्सीनेशन करवा के।
0: जी जी बिल्कुल, और गवर्नमेंट भी इसको काफी प्रमोट कर रही है, क्योंकि कुछ समय पहले कुछ ऐसे केसेस आए थे, बहुत हाईलाइट हुए थे, बच्चों को लेकर काफी सतर्क रहना जरूरी है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप उसे एक्चुअली में सेफ रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको आप डॉक्टर से जाकर दिमागी बुखार की वैक्सीन बोलेंगे तो वो आपको समझा देंगे और बच्चे को वो वैक्सीन दी जाएगी। बहुत सी और भी बातें जानेंगे लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हैवी हो जाता है कई बार, तो बीच बीच में एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

0: Feel Good, Feel Live, Radio Manav Rachna 107.8 FM. Program, All Is Well. हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में. बारिश का मौसम लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन अपने साथ साथ ये लेकर आता है बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हम आपसी झेलते रहते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरीके की चीज़ें. लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं तो ये दिमाग पर भी असर डालती हैं. कई लोगों को माइग्रेन की शिकायत बढ़ जाती है, कई लोगों को दिमागी बुखार जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं. तो कहने का तात्पर्य यह है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बढ़ने से पहले अगर आप समझ लें तो आप सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट करवा पाएंगे. हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर दिव्या गोयल. डॉक्टर दिव्या, अब बात करते हैं बेसिक हेडेक की, जो मानसून के सीज़न में आपने कहा माइग्रेन हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को माइग्रेन अगर नहीं है, क्या उनको तब भी मानसून में ज़्यादा हेडेक हो सकता है? और अगर हेडेक हो रहा है तो कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, हो सकता है. हेडेक्स सिर्फ माइग्रेनस नहीं होते, बहुत सारे ऐसे हेडेक्स हैं जो कि सिर्फ टेम्परेचर चेंजेस से होते हैं या दिमागी बुखार में पहला सिम्टम हेडेक हो सकता है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में पहला सिम्टम हेडेक हो सकता है, जो कि ये सारी चीज़ें मानसून में ज़्यादा होती हैं. तो अगर आपका हेडेक परसिस्टेंट है और पूरे सर को इन्वॉल्व किए हुए है, पॉस्चर से चेंज कर रहा है, जैसे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो बढ़ रहा है, और उसके साथ वॉमिटिंग्स आ रही हैं, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं कि आपको डॉक्टर की मदद चाहिए.
0: ओके, यानी खुद इलाज ना करें कि ठीक है भाई थोड़ा सा कुछ ले लिया, जैसे बहुत सारे लोग नींबू पानी पी लेते हैं या अजवाइन ले लेते हैं कि ठीक हो जाएगा ये घरेलू नुस्खे करके, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहिए. वो भी आप करिए बट एटलीस्ट डॉक्टर से मिलिए.
1: जी
0: डॉक्टर दिव्या, बात करते हैं स्ट्रोक की. अक्सर हमने देखा है कि मौसम बदलने के साथ सर्दियों में स्ट्रोक की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट सर्दियों में शो ज़रूर करती हैं क्योंकि लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जाए. क्या मॉनसून में भी स्ट्रोक का खतरा उतना ही बढ़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा तो डाउन होता है?
1: मॉनसून में एग्जैक्टली स्ट्रोक की स्टैटिस्टिक्स ये साबित नहीं करती कि स्ट्रोक्स बढ़ते हैं. हाँ, इतना ज़रूर पॉइंट आउट करूंगी कि ये जो इन्फेक्शंस हैं, मेनिनजाइटिस और एनसेफेलाइटिस जैसे इन्फेक्शंस, अगर इसमें बहुत थिक पस एग्जुडेट्स ब्रेन में बन जाएं, तो वो पस जो है वो नलियों को ब्लॉक कर देती है और स्ट्रोक्स हो सकते हैं. तो इट कैन अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन टू मेनिनजाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस बट नॉट एज अ डायरेक्ट प्रोसेस. तो स्ट्रोक्स हाँ बढ़ सकते हैं बट मेनिनजाइटिस एनसेफेलाइटिस में. बट इसके अलावा पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि ये इन्फेक्शंस के कारण एक पोस्ट इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको गुलियन-बारे सिंड्रोम बोलते हैं. ये एक नसों की पैरालिसिस है जिसमें हमारी अपनी जो इम्यूनिटी है वो हमारी ही नसों पर अटैक कर देती है. तो दिस इज एन ऑटो इम्यून प्रोसेस. तो ये गुलियन-बारे सिंड्रोम इन्फेक्शंस के बाद होता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड गट इन्फेक्शंस. जैसे किसी को दस्त लगे हैं या फिर खांसी जुकाम हुआ है तो उसके लगभग एक दो हफ्ते के अंतराल में गुलियन-बारे सिंड्रोम जैसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी, प्रिडिक्ट भी नहीं की थी. होता क्या है कि उन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी ओवर एक्टिव होती है, एंटीबॉडीज बनाती है. एंटीबॉडीज नॉर्मली सुरक्षा के लिए होती हैं, लेकिन अगर वही एंटीबॉडीज हमारी दुश्मन बन जाएं और हमारी अपनी नसों पर ही अटैक कर दें तो दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, और उसका प्रभाव होता है पैरालिसिस ऑफ द नर्व्स. इस प्रोसेस को कहते हैं गुलियन-बारे सिंड्रोम.
0: यानी ये पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है.
1: बिल्कुल, दिस इज अ ड्रेडेड डिजीज, अ फैटल डिजीज. इसमें मोर्टेलिटी रेट्स हाई होते हैं अगर इसमें ट्रीटमेंट सही वक्त पे ना दी जाए.
0: इसके सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या हैं अगर कोई पेशेंट ऐसा कुछ महसूस करता है तो?
1: ये बेसिकली ना एक तरह की असेंडिंग पैरालिसिस होती है. असेंडिंग पैरालिसिस मतलब नीचे से ऊपर चढ़ने वाली वीकनेस. यानी इंसान को पहले पैरों में वीकनेस आएगी, उसके बाद टांगों में आएगी, उसके बाद उसको बाजुओं में फील होगी, और फाइनली उसको सांस लेने में तंगी होने लग जाती है. कभी कभी गले की पैरालिसिस के कारण वो चीजें निगलना भी बंद कर देता है. तो ये असेंडिंग पैरालिसिस लगभग दो दिनों में पूरी हो जाती है, मतलब इतनी तेजी से स्प्रेड करती है. तो अगर हमारा सांस वाला जो सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व हो जाए तो पेशेंट को डायरेक्टली वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है. तो अगर पेशेंट उसको इन्फेक्ट होने से पहले पहुंच जाए, यानी हाथ पैर की पैरालिसिस तक ही पहुंच जाए, तो IVIG नामक ड्रग से वो वहीं पे कंट्रोल कर ली जाती है. बट अगर ये भी इन्वॉल्व हो जाए तो वेंटिलेशन पे कई दिन पेशेंट को रखना पड़ता है,
0: और ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ सकती है. तो डॉक्टर दिव्या, इसमें कितना विंडो होता है एक पेशेंट के पास कि जल्दी से जल्दी, मतलब कब तक वो ऐसा महसूस करें कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना ही है, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाना ही है?
1: देखिए, आइडियली एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी सिम्टम आपको सडन या एक्यूट ऑनसेट यानी बहुत तेजी से आगे आया है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ या तो आपके टांगों में या हाथों में सुन्नपना आया है और या फिर टांगों हाथों में वीकनेस आई है, आप उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को या पैर से आप चल नहीं पा रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं और ये एकदम से आया है, अनइन्वाइटेड आया है, तो दिस इज ऑलवेज अ रेड फ्लैग। आप वेट मत कीजिए बीमारी का बढ़ने का, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए।
0: जी,
1: एक चीज होती है कि आप आलती पालती मार के बैठे इसलिए आपका पैर सो गया है,
0: आपका पोस्चर ऐसा है,
1: आपकी नस दब गई है क्योंकि आप बैठे ही ऐसे थे, तब समझ आती है कि ठीक है वो थोड़ी देर में सर्कुलेशन वापस आ जाएगी। बट अगर आप नॉर्मल बैठे हैं जैसे मैं बैठी हूँ कुर्सी पर ऐसे बैठे हैं और फिर भी आपकी टांग में सुनपना आ रहा है, हाथ में सुनपना आ रहा है, तो दिस इज एन अनप्रोवोक्ड केस ऑफ वीकनेस, इसमें तुरंत आपको जाना है।
0: जी, यानी आप एक दो घंटे तक महसूस करें कि ये प्रॉब्लम है और वैसी की वैसी ये ठीक नहीं हो रही है, उल्टा बढ़ रही है, तो फिर वेट नहीं करना चाहिए। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आप ही की हेल्थ के बारे में, लेकिन इन सब पर रिएक्ट करना या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे बढ़कर अगर ट्रीट ना की जाए समय पर तो जानलेवा साबित होती हैं। बहुत सी बातें और भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे खुद को फिट रख सकते हैं और कैसे बच्चों और बुजुर्गों को फिट रखना चाहिए इस मौसम में, या उनको कुछ अलग से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिनसे हमें बचा कर रखना है, ये बात करेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल और आज हम बात करें हैं मॉनसून में होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर दिव्या गोयल, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर दिव्या, इन्फेक्शंस की हम बात करें हैं, ब्रेन में होने वाले इन्फेक्शंस की हम बात करें हैं, तो बच्चों का अक्सर लोग बारिश में बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे ख्याल रखने नहीं देते हैं। सो क्या बच्चों और बुजुर्गों की भी मैं बात करना चाहूँगी, उनको भी ये न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस अफेक्ट कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल दीक्षा, जो बच्चे हैं उनमें एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन होती है।
0: okay.
1: तो इसमें एक टेपवॉर्म नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, बड़ा सा एक पैरासाइट होता है जो कि सॉयल्स में बेसिकली रहता है और उसका कंटेमिनेटेड वाटर में बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हो जाती है शुरू। तो रेनी सीजन्स आर अ परफेक्ट टेम्परेचर सेटिंग फॉर दैट ऑर्गेनिज्म टू ब्रीड। तो वो ब्रीड करते हैं और डायरेक्टली खाने में कंटेमिनेटेड वाटर में, स्पेशली कैबेज की सब्जी में, पोर्क में यानी पिग के मीट में, ये चीज़ें बहुत ईजिली पनपती हैं। और वो जब हम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ वेजिटेबल्स या फिर नॉट प्रॉपरली कुक्ड पोर्क, तो वो हमारे इंटेस्टिन में जाता है और वहां से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में इन्फेक्शन करता है। और इसमें होता क्या है कि वो सिस्ट बना देता है, लार्वे होते हैं और जो ब्रीड करके वहां पे सिस्ट बना देते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में एक गांठ सी बन जाती है जिसके कारण दौरे उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों में ये बीमारी बहुत ही कॉमन है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान जैसे रीजन्स में तो बहुत ज्यादा।
0: ओके.
1: तो क्योंकि यहाँ का सॉयल कंड्यूसिव है फॉर द ग्रोथ ऑफ टेपवर्म्स।
0: ओके.
1: तो दौरे आते हैं, कई तरह के दौरे आते हैं, फोकल सीजर यानी एक हिस्से को इन्वॉल्व करने वाले या पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करने वाले, बट हाईली ट्रीटेबल है। अगर आप मतलब पहले दौरे में ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लो तो उस स्टेज में ये बिल्कुल फ्रेश स्टेज में ब्रेन में पनप रहा होता है, और अगर हम एंटी पैरासिटिक ड्रग देंगे जिसका 14 से लेकर 21 दिन

0: बहुत सारे हमने ये वीडियोस भी देखे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं ये कीड़ा मरता नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए दिखता भी नहीं है।
1: नहीं, ये कुकिंग से तो ये प्रॉपरली दिस इज
0: खत्म हो जाता।
1: जैसे मैंने कहा था कि अनकुक्ड वेजिटेबल्स या फिर हाफ कुक्ड पोक,
0: ओके,
1: जो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, तो उसी में ये कीड़ा पनपता है। अगर प्रॉपरली आपने कुक कर लिया है या माइक्रोवेव कर लिया है तो इसका इट कैन नॉट नरिश, इट कैन नॉट फ्लरिश। लेकिन अगर दूसरी तरह आप खाना चाहते हैं, रॉ में खाना चाहते हैं, सैलेड वाइज आप कैबेज की सब्जी खाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर एक लीफ को अलग अलग करके आपको बहुत अच्छे से उसको रनिंग वाटर के अंडर वॉश करना होता है। सोप की जरूरत नहीं होती है, बस रनिंग वाटर शुड बी देयर, और हर एक लीफ अलग अलग करके आपको धोना है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर रॉ खाना है तो। लेटस का भी सेम ही है, लेटस भी ऐसे ही होता है कैबेज जैसे ही, तो उसमें भी आपको हर एक लीफ अलग अलग
0: करके उसको प्रॉपरली
1: वॉश करना है रनिंग वाटर।
0: सो आई वुड सजेस्ट कि मॉनसून में अगर ये चीजें अवॉइड करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे चाइनीज खाने में ये बहुत डली होती है, पर कुक हो जाती है तो एटलीस्ट आप बच सकते हैं। डॉक्टर दिव्या, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं और बहुत सारी बातों से उम्मीद है कि लोगों को समझ आया होगा कि मॉनसून में कैसे खुद को सेफ रखना है। लेकिन अब मैं चलते चलते आपसे जानना चाहती हूँ, कोई 4-5 टिप्स आप ऐसी देना चाहें लोगों को जिससे वो मॉनसून में होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सकें।
1: जी, मॉनसून का सीज़न अपार्ट फ्रॉम एंजॉयिंग इट, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, पहली बात कि आपको रेन वाटर में बाहर नंगे पैर या बिना जूतों के नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे जो कीटाणु हैं वो पैरों के थ्रू ही जाते हैं। दूसरी चीज़, आपको हाई ह्यूमिडिटी में, क्योंकि स्वेटिंग होती है और प्यास उतनी नहीं लगती, तो आपने पानी टाइम टू टाइम पीते रहना है, अपनी प्यास के लिए वेट नहीं करना, आपने लगभग हर 2 घंटे में एक ग्लास पानी पीने की कोशिश करनी है। तीसरी चीज़, हैंड वॉशिंग, ये मैं ओवर स्पेसिफाई नहीं कर सकती, हैंड वॉशिंग इज द ओल्डेस्ट मेथड जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो कोई भी इन्फेक्शन है और वो अगर हमारे ओरल कैविटी से जा रही है, तो सबसे पहले हाथ उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छे से हैंड वॉश कीजिए, बच्चों में कल्चर बनाइए हैंड वॉश का, कि वो कोई भी चीज़ टच करने से पहले, खाने से पहले अपना हैंड वॉश करें। देन बैरोमेट्रिक प्रेशर जैसे लो हो जाता है तो उसमें माइग्रेन्स और जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए वही है कि सडन चेंजेस ऑफ, सडन शिफ्ट्स ऑफ टेम्परेचर आपको अवॉइड करने हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक एसी रूम से बाहर निकलना या बाहर से एसी रूम में जाना, उसमें आपको थोड़ा सा स्लो कन्वर्जन, स्लो ट्रांजिशन चाहिए। तो एसी पहले ही बंद करें, 10 मिनट रुकें, फिर बाहर जाएं, सो दैट आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाए।
0: जी,
1: तो दीज आर अ फ्यू टिप्स जो हम मॉनसून्स में अप्लाई।
0: बिल्कुल, यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी नहीं है। आप डेली रोज़मर्रा के जीवन में ये ऐसी चीज़ें समझते भी हैं पर कई बार गलती से छूट जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा फॉलो किए और अपने आप को हर मौसम में एकदम हेल्दी रखिए। बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और अब टाइम है आपसे इजाज़त देने का। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करेंगे आपसे एक हेल्थ एक्सपर्ट के साथ एक नए विषय पर। अभी फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel life.

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा, जहां हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया के एक बेहद प्रतिभाशाली और प्रॉमिसिंग यंग सितार मेस्ट्रो अधिराज चौधरी जी। अधिराज ने मात्र 6 वर्ष की आयु में सितार की साधना शुरू की और आज अपनी मेहनत, डेडिकेशन और एक्सेप्शनल टैलेंट के दम पर देश विदेश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। ये प्रसिद्ध जयपुर सेनिया घराना से जुड़े हैं और 17 फ्रेट सितार की दुर्लभ परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और संगीत तो मानो इन्हें विरासत में ही मिला है, क्योंकि ये महान सितार वादक पंडित देबू चौधरी जी के ग्रैंडसन हैं और पंडित प्रतीक चौधरी जी के सुपुत्र हैं। वर्तमान में ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विदुषी श्रीमती अनुपम महाजन जी, श्री नील रंजन मुखर्जी तथा इंटरनेशनली एक्लेम्ड सितार मेस्ट्रो एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी पंडित नीलाद्री कुमार जी के मार्गदर्शन में सितार की गहन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें CCRT स्कॉलरशिप, MS सुबुलक्ष्मणी फेलोशिप, कला उत्सव में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां और G20 समिट जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर प्रस्तुतियां और लगातार मिल रही सफलताएं इन्हें युवा पीढ़ी के सबसे प्रेरणादायक कलाकारों में शामिल करती हैं। और अपनी साधना, अनुशासन और संगीत के प्रति समर्पण के साथ अधिराज भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अधिराज की इंस्पायरिंग म्यूजिकल जर्नी, रियाज और इनके गुरुओं से मिली सीख और इनके सपनों और संगीत के प्रति इनके जुनून के बारे में। अधिराज जी, सबसे पहले क्रिएटिव मंच में आपका हार्दिक स्वागत है और संगीत से आपका पहला परिचय कैसे हुआ इस बारे में हमें बताइए।
5: थैंक यू सो मच। संगीत से मेरा पहला परिचय ऐसा ही हुआ कि मैं जब बहुत ही छोटी उम्र से मैं संगीत के माहौल में पला बड़ा हूँ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी क्लासेस लेते थे, वह सितार वादक थे, तो फिर वही मैं सितार के माहौल में पला बड़ा हूँ। तो मैं बचपन से ही म्यूजिक सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे इसीलिए म्यूजिक बहुत पसंद आने लग गया बचपन से। और उनके स्टूडेंट्स जब क्लास के लिए आते थे, मैं वहाँ भी बैठता था, मैं सबको सुनता था और मुझे बहुत मजा आता था। तो ऐसे ही करके मेरा संगीत से इंट्रोडक्शन हुआ था पहले।
4: लेकिन जैसे आपने बताया कि आपने 6 वर्ष की आयु से मतलब सीखना शुरू किया, तो हमें तो 6 साल का बच्चा बहुत ही छोटा लगता है कि अभी उसे सही से ABCD वगैरह भी सीख रहा है। और सितार तो एक अपने आप में बहुत शायद मुश्किल इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता
5: जी,
4: है
5: जी।
4: तो कैसे आपने उस चीज को किया, या दादाजी और फादर की डांट से, मतलब क्या था उसके पीछे का आपका एक व्यू पॉइंट?
5: जी, मुझे जैसे कि बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद आता था छोटी वर्ष की आयु से, और इसीलिए तो मुझे म्यूजिक, मेरे दादाजी और पिताजी मतलब सबने सोचा कि मुझे भी म्यूजिक में कुछ करना
4: सिखाना चाहिए।
5: तो और वो सितार वादक थे, तो उन्होंने मुझे शुरू करवाया सितार से
4: जी।
5: और फिर मुझे सितार, मैंने जैसे शुरू किया, मुझे सितार इतना पसंद आया कि मैं बस सितार ही करना चाहता था। बस मैंने यही सोचा कि मैं अब सितार ही बजाऊंगा। और मुझे तो मुझे उसी उम्र से सितार बहुत पसंद आने लग गया, तो मुझे उन्होंने फिर सिखाना शुरू करा। तो ऐसे ही करके मेरी रुचि बढ़ी म्यूजिक में और सितार की तरफ, इसलिए इस उम्र में मैंने सितार बजाना शुरू करा था।
4: जी जी जी। और अभी इस टाइम आपकी कितनी एज है?
5: जी, इस टाइम मैं 17 साल का हूँ।
4: वाओ, मतलब 6 से बहुत साल हो गए आपको स्टार्ट किया, आपका पूरा जी, अभी तक की लाइफ सितार बजा रहे हैं आप और फुल ऑन इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि आप अपने बहुत स्टेज शोज भी करते हैं हमने देखा। सो एक चीज बताइए, आपका कभी वोकल में भी ध्यान गया या इंस्ट्रूमेंट के प्रति ही रुचि थी?
5: जी, मुझे वोकल भी बहुत पसंद है, पर इंस्ट्रूमेंट के प्रति मेरी रुचि ज्यादा है
4: जी।
5: क्योंकि मैंने सितार ही सीखा है, तो जो चीज़ मैंने सीखी है उसके प्रति मुझे सुनना, मुझे सभी चीज़ें सुननी बहुत अच्छी लगती है, पर सितार के लिए मेरी एक अलग ही डेडिकेशन है, मुझे सितार बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
6: अच्छा, तो जैसे हमने देखा है कि गिटार जब सीखते हैं तो उंगलियां काफ़ी मतलब फिंगर पे लगती है और कहते हैं छिल भी जाता है, तो आपने सितार तो मुझे लगता है और टफ है, तो किस तरीके से आपको भी कभी ऐसा होता था कि बहुत प्रैक्टिस करने से आपकी फिंगर्स ऐसे छिल गई है या कुछ चोट लग गई हो?
5: जी, वैसे तो सितार अगर आपको बजाना है तो उंगलियां छिलनी है, आई थिंक कंपलसरी है, जरूरी
6: अच्छा।
5: है ये उंगली, अगर आपकी उंगली छिलेगी नहीं तो सितार आप बजा नहीं सकते, क्योंकि
6: अच्छा।
5: वो उंगलियों में कैलसेस जो होते हैं, लाइंस जो होते हैं जो हम इसको बोलते हैं, वो सितार बजाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और शुरुआत में तो किसी को भी दर्द होगा अगर बजाएंगे, जैसे आपने कहा गिटार जो लोग बजाते हैं उनकी उंगलियां इतनी छिलती है, लेकिन सितार में दो ही उंगली का प्रेशर पड़ता है और तार स्ट्रिंग ज्यादा हार्ड होता है बेसिकली, तो सितार में और ज्यादा डीप छिलती है उंगली, छिलती नहीं है बट डीप लाइन पड़ जाते हैं एंड शुरुआत में दर्द बहुत होता है, सो इसीलिए सितार काफी डिफिकल्ट है शुरू करना और बजाना भी बाद में, तो शुरुआत में भी काफी दर्द होता है बट इसको कंटिन्यू अगर करते जाओगे तो दर्द भी कम होता जाएगा और लाइन को मेंटेन करना पड़ता है, तो बजाने के लिए लाइन जरूरी है, कैलसेस जरूरी है उंगली में मेरे हिसाब जी,
6: मतलब आपके अकॉर्डिंग, और मेरे ख्याल से गुरुओं का भी यही मानना है
5: जी,
6: ना?
5: जी गुरुओं का भी यही मानना है
6: जी जी,
5: क्योंकि लाइंस के बिना सितार बजाना बहुत मुश्किल है और उसमें फिर दर्द भी बहुत होगा तो जी।
6: और अधीरा, जैसे चलिए आपने तो 6 वर्ष की आयु से सितार हाथ में लिया आपने और आपके दादाजी थे आपके गुरु रहे, आपके पिताजी आपके गुरु रहे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जनरल जैसे कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहे, अपने किसी बच्चे को सिखाना चाहे, तो क्या एज होनी चाहिए? मतलब आपके तो घर का माहौल, चलिए हम कह सकते हैं कि वही था बचपन से, तो बट अगर किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है तो क्या 6 वर्ष में पॉसिबल है?
5: जी, वैसे तो सीखने की कोई एज नहीं है
6: जी,
5: आप जब चाहो जिस एज में चाहो आप सब सीख सकते हो, सीख अगर डेडिकेशन है तो सब पॉसिबल है, पर अगर एक स्टार्टिंग में अगर एक कम वर्ष की आयु से आप सीखते हो और अगर आपके घर में म्यूजिक का माहौल है तो एक एडवांटेज मिल जाता है पहले से ही, आप अच्छे से सीख पाते हो बचपन से, पर मेरे हिसाब से सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए
6: जी, जी जी जी बिल्कुल, मतलब कोई एज नहीं है आपके हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में सीखी हुई चीज बहुत अच्छे से हमें याद रहेगी, इंस्टेड ऑफ के हम अगर 10th 11th 12th की एज में सीखे तो, है ना?
5: यस।
6: ओके, तो संगीत के क्षेत्र में आपके दादाजी और पिताजी दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं हमें पता है, तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का अनुभव कैसा है आपका?
5: जी, तो अभी अभी तो मेरी एज उतनी ज़्यादा है नहीं कि मुझे अच्छे से अनुभव हुआ हो और मुझे ज़्यादा म्यूज़िक में मैंने मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट अभी तक जो मैंने अपने ट्रेडिशन को आगे ले जाने की कोशिश रखी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही अपने ट्रेडिशन को ले जाते रहूँ और काफ़ी बड़े बड़े मंचों पे परफॉर्म करूँ, अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाऊँ और अपने दादाजी और पिताजी का नाम रोशन करूँ आगे जाके
6: जी।
5: तो अभी तक मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और मैं आगे जाके और अच्छा करना चाहता हूँ
6: जी अधिराज, और हमारे तो यही विशेष है कि आगे जाकर आप और भी सक्सेसफुल रहें। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त तो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। अभी तक अधिराज हमने जाना कि आपने 6 वर्ष की आयु से सितार सीखना शुरू किया। आपके घर का माहौल था बहुत ही अच्छा, जिसके प्रति आपने अपना सितार बजाने की क्रिया को जारी रखा। अब हमें एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपका घराना है जयपुर सेनिया घराना और गुरु शिष्य परंपरा, इन दो चीज़ों के बारे में हमें बताइए कि घराने एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जनरल जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उन्हें नहीं पता कि घराने क्या होते हैं और गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, तो थोड़ा इसके बारे में हमें समझाइए।
1: तो घराने बेसिकली होते हैं स्कूल्स ऑफ म्यूजिक, जैसे ट्रेडिशन होता है, जो लोग ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो घराने के लोग ही करते हैं। तो एक घराना बेसिकली एक स्कूल ऑफ म्यूजिक हो गया
0: जी।
1: जैसे कि बहुत अकेडमिक्स में बहुत स्कूल, जैसे आपने पढ़े होंगे बहुत सब्जेक्ट्स में स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं साइकोलॉजी में, जैसे वैसे ही घराने भी स्कूल्स ऑफ म्यूजिक है। और हर घराने का अलग स्टाइल है म्यूजिक अप्रोच करने का। कुछ घराने इंस्ट्रूमेंटल घराने होते हैं, सबसे पहले घराने वोकल घराने होते थे, उससे काफ़ी और घराने आए जो इंस्ट्रूमेंटल के घराने भी बने हैं। तो ऐसे ही कर करके बहुत घराने डेवलप हुए और सबका स्टाइल अलग होता है और यूनिक होता है। वैसे ही हमारा घराना है जयपुर सेनिया घराना, तो हमारे घराने की का हमारा घराना एक इंस्ट्रूमेंटल घराना है। तो उसका यूनिक स्टाइल ये है कि हमारे घराने में 17 पर्दे का सितार बजता है
0: जी,
1: 17 फेटेड सितार, और किसी घराने में नहीं है।
0: अच्छा।
1: हमारे घराने का यही यूनिक स्टाइल है 17 फेटेड सितार का, जो जनरेशन से पास होते आया है
0: जी।
1: हमारा घराना मसीद सेन जी से आता है, उस टाइम से लेके अभी तक ये जनरेशन में हमारा ट्रेडिशन पास होता गया है। तो ये हमारे घराने की खासियत है। और जी गुरु शिष्य परंपरा, उसमें जैसे मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे दादाजी और पिताजी से सीखने का मौका मिला, मेरे घर में ही म्यूजिक का माहौल था, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट उस लिए। तो मैंने उनसे सीखा घर पे, तो मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं मानता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा म्यूजिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: अगर आप म्यूजिक करना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु के साथ रहना भी पड़ेगा। उनके साथ रहने के साथ साथ आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है
0: जी।
1: म्यूजिक के अलावा भी काफ़ी आप चीज़ें सीखते हैं लाइफ में, और म्यूजिक भी आपका काफ़ी अच्छा होता है, आप जानते हैं चीज़ों को। तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है म्यूजिक में मेरे लिए
0: जी। तो आपके जीवन में आपके गुरुओं की सबसे बड़ी सीख क्या है
1: जी? मेरे लिए मेरे गुरुओं की सबसे बड़ी सीख है सिंसेरिटी, ऑनेस्टी और डिवोशन। म्यूजिक में सिंसियर रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है और ऑनेस्ट रहना है खुद से। कभी ऑनेस्ट ऑफकोर्स, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते।
0: बिल्कुल।
1: आपको अपना टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा म्यूजिक अगर आपको करना है सीरियसली तो। और डिवोशन ऑफकोर्स, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो आपको उस फील्ड में अपने आपको पूरा डिवोट करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा
0: जी।
1: तो जी यही है,
0: मतलब तन मन धन से अपनी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रियाज भी करना है और एक सच्चाई
1: इंजॉय भी करना है, म्यूजिक को सुनना भी है।
0: हाँ, कहीं वो प्रेशर लेकर नहीं करना।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: म्यूजिक तो ऐसी चीज ही नहीं है कि प्रेशर लेकर किया जाए। बिल्कुल। तो आप कितने घंटे रियाज करते हैं
1: जी? वैसे मेरा फिक्स तो नहीं है। जब मुझे अभी मैंने 12th ख़त्म करा है।
0: अच्छा,
1: तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब रियाज कर लेता हूँ। मैं रोज़ ही रियाज करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है जी, बट कोशिश करता हूँ कि मैं और आगे अपने टाइम को बढ़ाऊँ रियाज में और मेहनत करूँ। तो जी यही मेरी कोशिश है
0: जी। तो आपने 12th

0: ट्वेल्थ में क्या स्ट्रीम थी आपके पास?
1: जी ट्वेल्थ में मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी।
0: ओके जी। तो साथ में अपना प्रैक्टिस का समय निकाल पाते थे अपने लिए स्कूल के साथ साथ?
1: जी जी मैं निकाल पाता था।
0: जैसे बोर्ड्स के एग्जाम है तो एक अलग प्रेशर होता है कि मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए।
1: वो तो होता है।
0: हाँ, तो उसी के चलते मैं बोल रही हूँ कि आप कितना समय दे पाते थे अपनी प्रैक्टिस को, रियाज को?
1: उसी के मैं तब शाम के आज में रियाज करा करता था, 7 बजे इस टाइम के अराउंड रियाज करता था
0: जी।
1: तो इस टाइम पे मैं कोशिश करता था रोज 1-1.5 घंटा निकाल लो रियाज के लिए। तो कोशिश होती थी, कभी कभी नहीं हो पाता था, बट मेरी कोशिश तो थी कि मैं रोज रियाज करूँ फिर भी।
0: जी जी जी। वैसे कोई भी अगर चीज़ है तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो वोकल है, डांस है या इंस्ट्रूमेंटल है, तो प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो जैसे सितार को ही आपने अपना वाद्य, मेन वाद्य जो चुना है, तो आपको कभी ऐसा ही लगा कि सितार की जगह कुछ और मुझे इंस्ट्रूमेंट चुनना चाहिए था? कभी वो चीज़ मन में नहीं आई आपके?
1: नहीं, ऐसी चीज़ मेरे मन में कभी भी नहीं आई, क्योंकि पहले से ही मैंने जब सितार सीखना शुरू करा था तो सितार काफ़ी पसंद था, और अब भी मुझे तब से यही लगता आया है कि मैंने सितार को चूज़ करके काफ़ी अच्छी चीज़ करी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एंड फादर ने मुझे सितार के बारे में बहुत सिखाया, सितार मुझे सिखाया उन्होंने, तो तब से लेके और हमेशा मुझे यही लगता रहेगा कि सितार मेरे लिए बेस्ट है। मुझे बाकी और इंस्ट्रूमेंट सीखने का बहुत मन है, पर सितार ही मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट रहेगा, क्योंकि सितार की टोन बहुत पसंद आती है और सितार मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, हमें भी मतलब सुनने में बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ओके, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है धीराज के आपको थकान है या आपका मन नहीं कर रहा है, मतलब करना चाहते हैं प्रैक्टिस बट एक होता है ना कि अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा, कभी होता है ऐसा या कभी भी नहीं होता?
1: वैसे ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि जब मैं सितार बजाता हूँ, जब मैं रियाज करने जाता हूँ, तो इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी
0: जी,
1: क्योंकि पूरा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थकान हो, दिन की थकान हो, काम कुछ भी हो जाए, जैसे स्कूल की थकान हुई करती थी पहले, तो कुछ भी दिन में हो जाए, तो सितार जब मैं बजाने बैठता था और जब मैं अब भी बजाने बैठता हूँ, इट फील्स लाइक थेरेपी फॉर मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बजा के
0: जी।
1: और उसमें तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मोटिवेशन नहीं आ रही बजाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता है
0: जी।
1: उल्टा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बजाने के बाद तो जी, यही
0: मतलब एक फ्रेशनेस आती है,
1: फ्रेशनेस आ जाती है
0: जी जी जी, जी। बिल्कुल। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को अधिराज जी के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा,

0: भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: वेलकम बैक साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सितार वादक अधिराज चौधरी जी। अधिराज, आपने आपकी जो उपलब्धियां हैं हमने बहुत सारी देखी, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर। आपने देश के कई बड़े मंचों पर प्रस्तुति दी है अपनी, तो कौन सा मंच आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों?
1: जी, मेरे दिल के सबसे करीब है यूमैक फेस्टिवल। जब भी होता है मुझे उसमें बजाने का मौका मिलता है, तो वह इंस्टीट्यूशन मेरे दादाजी का है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था पहले, तो यूमैक फेस्टिवल में मुझे बजाने का जब भी मौका मिलता है, हमेशा मौका मिलता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वह मंच मेरे दिल के बहुत करीब है।
0: जी। और यहाँ आपने अपने दादाजी की बात की, मैं चाहूँगी एक बार आप उनके बारे में और अपने पिताजी के बारे में अपने मुँह से खुद बताइए।
1: मेरे दादाजी एक गुरु से बढ़कर थे, वो मेंटर थे सबके लिए, उनके जितने भी स्टूडेंट्स आते थे सबको वो अच्छे से सिखाते थे, उनके लिए एक मेंटर थे। और जस्ट उन्होंने उनको ज़िंदगी जीनी भी सिखाई और म्यूज़िक भी सिखाया, उन्होंने हमारे घराने के बारे में सबको सिखाया और सब सारी चीज़ें बताई जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और वो एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, और उनको जब भी वो अच्छा करते थे वो उनकी तारीफ नहीं करते थे, वो कहते थे और मेहनत करनी है हर बार में, ताकि वो और मेहनत कर सके स्टूडेंट्स। बट अंदर ही अंदर जब भी उनके स्टूडेंट्स अच्छा करते थे उनको भी अच्छा महसूस होता था, बट वो बताते नहीं थे। पर मेरे साथ मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे साथ कभी स्ट्रिक्ट नहीं थे वो, मुझे बहुत प्यार से सिखाते थे और मैंने ज़्यादा उन्हीं से सीखा है, अपने पिताजी से भी सीखा है पर मैंने दादाजी से ज़्यादा सीखा है। और मेरे पिताजी भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सिखाते थे, पिताजी का स्टाइल बहुत यूनिक था, उनका लयकारी पे ज़्यादा ध्यान था, लयकारी और उनकी स्पेशलिटी थी लयकारी स्पीड, और उनका अलग ही स्टाइल था, उनका बहुत यूनिक स्टाइल था मेरे पिताजी का।
0: जी।
1: और उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें सिखाई, तो जी सबने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे सबसे सीखने का मौका मिला।
0: जी लिसनर्स, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अधिराज से, उनके दादाजी और उनके पिताजी के बारे में, मैं आपको बता दूं पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी जी अधिराज जी के दादाजी हैं और प्रतीक चौधरी जी इनके पिताजी, तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अधिराज को उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, उनसे इतनी चीज़ें सीखने का मौका मिला। अधिराज, आई थिंक आप बहुत ही लकी, मैं कहूँगी आपको, क्योंकि अगर शायद वो ना होते तो 6 साल की वर्ष में बच्चा क्या करता है कुछ हमें पता ही नहीं होता।
1: मैं आज जो हूँ, मतलब मैंने सितार की फील्ड में उन्हीं की वजह से आया।
0: जी बिल्कुल। तो अभी हमने आपके जो उपलब्धियों की बात की, अब एक है G20 समिट, तो इसमें किस तरीके से आप पहुंचे यहाँ पर, इसके बारे में बताइए हमें।
1: G20 समिट में मुझे इनविटेशन जो वो स्टूडेंट्स को या म्यूजिशियंस
0: को
1: इनवाइट करते हैं, तो मुझे भी ऐसे इनवाइट करा था जी SNA के थ्रू, कि मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं G20 समिट में परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड आई फील दैट आई एम वेरी लकी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे G20 समिट में परफॉर्म करने का मौका मिला। एंड जी,
0: और आई थिंक वो बहुत ही बड़ा स्टेज,
1: बहुत बड़ा स्टेज था वहाँ पे, प्रेसिडेंट्स डिनर पे हमको परफॉर्म करने का मौका मिला और बहुत लोगों से मिला भी, मैं देश के अलग अलग जगह से लोग आए थे वहाँ पे, पूरे इंडिया के लोग थे, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत रेयर इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे थे वहाँ पे, तो मुझे बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला और मुझे बहुत नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिला, तो वो एक्सपीरियंस मिले काफी अच्छा था।
0: जी, और इतनी कम उम्र में आपको एक इतना बड़ा स्टेज मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। जी। अधिराज, जहां हमने आपकी उपलब्धियों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो साथ ही आपकी एक दो उपलब्धियां और बहुत ही अच्छी है, जैसे की CCRT स्कॉलरशिप और MS सुब्बुलक्ष्मिनी फेलोशिप, ये दोनों मिलने के बाद आप कैसा आपने महसूस किया और क्या है इसके बारे में थोड़ा हमें एग्जैक्टली बताइए।
1: जी, जब मुझे स्कॉलरशिप और फेलोशिप अवार्ड मिला, तो फिर मुझे बहुत ऑनर्ड और गर्व फील हुआ कि एंड आई फेल्ट वेरी लकी टू गेट दीज अवार्ड्स। एंड CCRT में जब मेरा नाम रजिस्टर हुआ, तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था CCRT के बारे में, क्योंकि तब मैं काफ़ी छोटा था, जब मैं 2019 में था आई थिंक CCRT। एंड CCRT इज बेसिकली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यंग आर्टिस्ट को मौका देती है परफॉर्म करने के लिए, सो वो हर साल या वो टाइम टू टाइम में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जहाँ पे वो यंग आर्टिस्ट को बुलाते हैं और साथ में परफॉर्म करवाते हैं, और म्यूजिशियन वहाँ पे सब कुछ होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है और भी चीजें होती है, थिएटर भी होता है.
0: अच्छा.
1: और वो बहुत एक्सपोजर भी देते हैं सब यंग आर्टिस्ट को और लोग के, और वो लोगों से मिल भी सकते हैं सब आर्टिस्ट.
0: मतलब यंग आर्टिस्ट के लिए बेसिकली ये है.
1: जी.
0: Nice, very nice.
1: मुझे फेलोशिप मिला था उसके लिए. आई एम वेरी ऑनर्ड बिकॉज फेलोशिप हर साल 50 स्टूडेंट्स को मिलता है, 50 म्यूजिक स्टूडेंट्स या म्यूजिशियंस को मिलता है फेलोशिप अवार्ड. और वहाँ पे भी सेम, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है. वहाँ पे बहुत इंडिया के बहुत बहुत जगहों से लोगों से मिलने का मौका मिलता है. जी.
0: नाइस. आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी उपलब्धियों की. हम आशा करते हैं ऐसे ही आप और नाम रोशन करिए. सो अब हम बात करते हैं अधिराज, युवा पीढ़ी और शास्त्रीय संगीत. तो आप क्या मानते हैं कि युवाओं को अगर शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा?
1: जी, युवाओं को शास्त्रीय संगीत की ओर अगर आकर्षित करना है तो उन्हें शास्त्रीय संगीत पहले सुनना पड़ेगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत गहरा है.
0: बिल्कुल.
1: और अगर जैसे कि अगर इंटरेस्ट आपका बाकी फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में है तो शुरुआत में आपको, अगर आप शास्त्रीय संगीत सुनेंगे तो आपको ज्यादा सुनना पड़ेगा अगर आपको आकर्षित होना है तो.
0: जी.
1: और शास्त्रीय संगीत क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत, म्यूजिक इज एंडलेस चाहे किसी भी फॉर्म में हो. तो आकर्षित अगर करना है तो आपको सुनना पड़ेगा पहले अच्छे से.
0: अधिराज, आपकी बातें भी ना बहुत गहरी हैं. उम्र आपकी इतनी छोटी है लेकिन आप इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को भी आज बहुत अच्छा लग रहा होगा आपका ये इंटरव्यू सुन के. आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया

0: या शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान दे रहा है?
1: जी जरूर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान मिल रही है, क्योंकि पहले जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो ज़्यादा लोग यंग जनरेशन जो थी वो शास्त्रीय संगीत को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती थी और म्यूजिशियंस को एक्सपोजर नहीं मिलता था। अभी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत म्यूजिशियंस को एक्सपोजर भी मिल रहा है और सब शास्त्रीय संगीत को सुन भी पा रहे हैं, लोगों तक संगीत पहुंच पा रहा है।
0: जी।
1: तो जी, सोशल मीडिया के थ्रू शास्त्रीय संगीत
0: मतलब
1: और लोगों
0: पहचान
1: तक
0: मिल रही है और लोग सुन भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
1: और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं लोग।
0: जी। सो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपने इस वार्तालाप को जारी रखेंगे अधिराज चौधरी जी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: डूबिया प्यार हो गया
1: सच
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अधिराज जी, और अधिराज एक बहुत ही अमेजिंग सितार प्लेयर हैं। सो अधिराज, अगर आप एक सितार प्लेयर ना होते तो आप क्या होते?
1: जी वैसे मैंने सोचा तो नहीं था कि अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता तो क्या होता। अच्छा। पर मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मैं आगे एकेडमिक्स ही परस्यू करता अगर मैं सितार प्लेयर नहीं होता।
0: जी जी।
1: मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है।
0: अच्छा।
1: शायद वो परस्यू करता
0: जी। और सितार के अलावा आपकी और क्या हॉबीज है? जैसे अभी तो जो भी आपका फ्री टाइम होता होगा आप सब अपना रियाज में ही देते होंगे, बट उसके अलावा क्या और हॉबीज है वो हम जानना चाहेंगे।
1: जी बाकी मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो अच्छा। मुझे स्पोर्ट्स देखना भी बहुत पसंद है।
0: तो स्पोर्ट्स में आप क्या खेलना पसंद करते हैं?
1: मुझे क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है।
0: जी
1: जी।
0: नाइस। और अधिराज, एक लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे जो यंग पीढ़ी के लोग सितार सीखना चाहते हैं या संगीत को अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
1: जी उनके लिए मैं वैसे मैं संदेश देने के लिए मेरी उम्र काफ़ी छोटी है, बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको सितार सीखना है यंग पीढ़ी को, तो फिर आपको पहले एक आप किसी भी गुरु के पास जाइए, क्योंकि आप खुद से सीखने की कोशिश मत करिए।
0: जी।
1: क्योंकि एक गुरु ही है जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: जी। तो आपको एक अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए, और उसके बाद आपको जो भी गुरु जी बताए आपको उसमें अपना ध्यान से आपको उसमें ट्रेन करना चाहिए और अपने टेक्निक्स सही करने चाहिए, और आपको सुनना चाहिए म्यूजिक अच्छे से। सुनना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: बजाने के साथ साथ सुनना भी बहुत जरूरी है। तो जी आप अगर म्यूजिक सुनेंगे ज्यादा तो आपको और आइडियाज आएंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा।
0: जी आई होप जो लोग सुन रहे हैं और म्यूजिक में अपना करियर चुनना चाहते हैं उन्हें अधिराज की ये जो उन्होंने सजेस्ट किया है उसे फॉलो जरूर करेंगे। सो अधिराज, अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे, ठीक है? सो आर यू रेडी?
1: जी जी।
0: ओके। सुबह का राग या शाम का राग?
1: वैसे मुझे सारे राग पसंद है, चाहे सुबह के हो कि शाम के हो, बट मैं शाम को रियाज ज्यादा करता हूँ, इसलिए मेरा शाम का राग।
0: जी। दादाजी, पिताजी या गुरुजी की डांट सबसे ज्यादा किसकी पड़ी है डांट आपको?
1: दादाजी की।
0: अच्छा। मंच पर जाने से पहले एक आदत?
1: मैं मंच पर जाने से पहले मैं उस दिन रियाज नहीं करता, उस दिन मुझे फ्रेश रहना होता है कि सीधा जाके स्टेज पे ही या उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लूं, पर उस दिन मैं रियाज नहीं करता हूँ।
0: वाओ। पसंदीदा कलाकार कौन है आपके?
1: जी मेरे दादाजी।
0: जी
1: मुझे बहुत कलाकार पसंद है, पर मेरे दादाजी मेरे फेवरेट।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक शब्द में संगीत को अगर डिफाइन करेंगे किस तरीके से?
1: डेडिकेशन।
0: वाओ। तो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें। और जाते जाते एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपके क्या आगे गोल्स हैं, क्या लक्ष्य हैं, किस तरीके से आप करेंगे उनको।
1: जी आगे तो अभी मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स तो अभी ऐसे तो मैंने सोचा नहीं है, पर मुझे बस यही है मेरे दिमाग में कि मुझे अपने घराने का ट्रेडिशन आगे लेके जाना है। मुझे आगे सितार परस्यू करना है और आगे अपने घराने को लेके जाना है और बहुत मेहनत करनी है, बस यही है मेरा गोल।
0: बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपकी एक सोच, और आप बहुत ही अच्छे आपने जो हमारे लिसनर्स को आज सीख दी, डेफिनेटली वो अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। और इतनी छोटी उम्र, सबसे बड़ी बात इतनी छोटी उम्र में इतना ठहराव, दिस इज अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच अधिराज, आपके साथ आज हमें बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हमारे स्टूडियो में। तो सो थैंक यू सो मच। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे ही कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat shri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto. Main hoon RJ Sagar, I am lekar ke show Voice of Youth. And this show is really special for us because yahan par har baar har ek episode mein hamare sath ek expert maujood hote hain jinke sath hum bahut sari baatein karte hain. Aaj hamare sath yahan par maujood hai Kashish. Kashish se hum bahut sari baatein karne wale hain because applied psychology ke student hain, professional hain, counseling sessions leti hain bachchon ke, bahut sari cheeze aapko yahan par janne ko milengi, especially हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. इसको हम दो एस्पेक्ट में कवर करेंगे, हमारा माइंड काम कैसे करता है जितना इनको पता ही बताएंगे. दूसरा हम ये कवर करेंगे कि अगर इसको एज अ प्रोफेशन आपको चूज करना है, वट आर द थिंग्स दैट यू शुड नो. बट लेट्स वेलकम कशिश. स्वागत है कशिश आपका.
2: थैंक यू सो मच.
1: थोड़ा सा बताइए अपने डोमेन के बारे में, क्या करते हो आप?
2: सो बेसिकली आई हैव डन बी अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें अपने बिहेवियर के बारे में और हाउ अ ह्यूमन माइंड्स वर्क, आप वो जानते हो, बहुत हेल्प करता है आपको ज़िंदगी में. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इमोशनली अवेयर ही नहीं होते अपनी इमोशंस के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, और वो सिर्फ इस्केप करते रहते हैं. एंड वो सिर्फ भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं. और एक टाइम आता है जब वो जितनी सारी चीज़ें आपके अंदर बॉटल अप हो गई है, तो जब वो फूटती है और उसके बाद जब आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करूं, और जब वो फूटती है तो वो सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं करती, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो उन सब के ऊपर फूटती है. तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ तक कभी पहुँचे, और हम चाहते हैं कि उस चीज़ को पहुँचने से पहले हम बहुत

0: पहले उस चीज़ को रोक दे, उस पर काम करे। तो उस पर काम हम ऐसे ही कर सकते हैं जब हम अवेयर होंगे अपने एक्शंस के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, मतलब व्हेन वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट। बेसिकली जब हमें पता है कि हम इस एक्शन के लिए सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप चाहे बाद में किसी को भी ब्लेम कर लो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये था वो था वो था, तो कुछ भी आपको हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप कॉन्शियस हो तो आप कुछ ऐसा करोगे ही नहीं जो कि आपको इन फ्यूचर ऐसा लगे कि अरे मैंने ये क्यों करा। अगर आप कॉन्शियस होते तो आप वो चीज़ करते ही नहीं, पर आप कॉन्शियस नहीं थे एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर एक्शंस, दैट्स व्हाई यू डिड इट।
1: So basically the study of your behavior, we can call it applied psychology, right?
0: Yes. Applied psychology में basically हम बहुत सारे practicals करते हैं, practical not, it's not just theoretical, practicals भी होता है। तो जैसे there is a personality test, draw a personality test when you are given a sheet of paper and you are asked to draw a boy। तो मेरे साथ जब मेरे मेरा एक क्लाइंट था, सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने उसको पेपर दिया था और उस टाइम पे ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो उसने इतनी छोटी सी, बहुत ही छोटी सी फिगर ड्रॉ करी थी बॉय की। तो जितनी छोटी आपकी फिगर होती है उतनी कम आपकी सेल्फ वर्थ होती है जो आप उस टाइम पे अपने आप को देख रहे होते हो कि मेरी बस इतनी ही वर्थ है। अगर आप बहुत बड़ी इमेज ड्रॉ करते हो इट मीन्स दैट येस You think that you are worthy, but अगर आप जितनी छोटी इमेज ड्रॉ करते हो तो आपकी वर्थ उतनी ही कम होती है अपनी नजरों में। So this is called draw personality test.
1: अरे बाप रे, मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा है, मेरे को जाके वापस अपनी सारी ड्रॉइंग्स देखनी पड़ेंगी कि मैंने कब क्या बनाया है और मैं कहाँ पे खड़ा हुआ था। So amazing, so interesting. If I may ask you, what was the thought that triggered you to pursue this? क्यों ये choose किया कि मेरे को psychology में जाना है?
0: Right. So when I was in school, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं थे और मेरी family में भी मेरे साथ कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें share कर पाऊँ। And I always search for a friend and for love. तो मुझे वहाँ पर लगा कि maybe I should enjoy my own company, मुझे अपनी own company enjoy करने के लिए क्या करना पड़ेगा। So when I was in 11th, there was this subject psychology और उनके उसमें option था that you can either choose sociology or psychology। तो psychology choose करने में मेरा कोई interest नहीं था पहले and I wanted कि मैं sociology ही opt करूँ, but उसमें बहुत कम बच्चे थे तो फिर वो subject ही cancel out हो गया और मुझे psychology choose करनी पड़ी forcefully। तो जब मैंने वो psychology choose करी तो उसमें एक टर्म थी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इफ़ यू नो अबाउट इट, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो डॉटर होती है उसको अपने फादर के लिए मतलब वो अपनी चाहती है कि वो फादर के साथ एक फैमिली बिल्ड करे। तो ये हर किसी के साथ होता है। तो वो सब चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मैंने बहुत कनेक्ट करा साइकोलॉजी से, सब्जेक्ट से। तो मुझे ये था कि ये जब साइकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी 11th 12th की तो मैं इसको परस्यू करूँ, मैं इसके बारे में और पढ़ूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होता था जो चीज़ें मैं वहाँ पर पढ़ती थी, बिहेवियरली जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैंने उसको परस्यू करा कि मे बी आई शुड चूज़ दिस। इसलिए मैंने 3 साल अपने दिए और मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी 3 सालों में, क्रिमिनल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, एक जो सीरियल किलर होता है उसका क्या पैटर्न होता है, वो क्यों करता है, कहाँ से आती है वो चीज़ें, एंड एवरीथिंग, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड आई वुड से कि अगर आपको खुद के बारे में जानना है और आपको अगर ज़िंदगी के बारे में जानना है, आपको लोगों के बारे में जानना है, तो आप प्लीज़ साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करिए। और बहुत सारी बुक्स भी है, बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास पढ़ने के लिए। अगर आप डिग्री भी नहीं कर सकते तो भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, देर आर मेनी बुक्स। आप ओशो को पढ़ना स्टार्ट करिए, एक्चुअली ओशो आपको बताएंगे कि कैसे यू कैन बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस and how your actions play a very important role कि आप आगे कहाँ जाएंगे इसके बाद।
1: I'm convinced. Alright, on this note, लेते हैं musical break, उसके बाद कशिश से हम आगे बात करेंगे। There are so many aspects that we need to cover, but we'll talk about it after this musical break. So stay tuned with us. I'm RJ Sagar.

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए या कशिश के लिए तो प्लीज 8010781078 पर जरूर अपनी बात पहुंचाइएगा। फिलहाल शो को अपने आगे लेकर के चलेंगे और कशिश हमारे साथ यहां पर मौजूद है। साइकोलॉजी को समझने की बात हो रही है। कशिश, मैं दो तरीके से इस टॉपिक को समझना चाहूंगा। फर्स्ट इज एज अ स्किल, जो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं समझना चाहता हूँ इन जनरल, हमें अगर साइकोलॉजी पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और मैं जानना चाहता हूँ जितना आपके बारे में हो सकता है मैक्सिमम, सो कैसे हम लोग पता करें। स्पेशली इसमें एक एस्पेक्ट होता है कि जब आप किसी इंसान से मिल रहे हो या डेट के लिए जा रहे हो या शादी के लिए बात चल रही है आपकी, किसी लड़का या लड़की को आप देखने जा रहे हो, सो यू नीड टू हैव अ फ्यू थिंग्स इन योर माइंड कि मैं ये चीज़ें जो मुझे ऑब्जर्व करनी चाहिए जिससे पता लगे कि हम दोनों कंपेटेबल हैं या नहीं है, या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, लाइक दिस।
1: ट्रू। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन प्लेस अ वेरी बिग रोल। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे किसी के साथ तो आप वो बिल्ड ही नहीं कर पाओगे कनेक्शन, और आप उसको फॉरवर्ड भी नहीं लेके जा सकते। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो एक इंसान से, वो आपकी बात सुन भी रहा है, वो एक गुड लिसनर है भी या नहीं। अगर वो गुड लिसनर नहीं है और सिर्फ वो मैं कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, तो ड्रॉप इट राइट देयर बिकॉज इट्स नॉट गोना वर्क। अगर आपको किसी रिलेशनशिप को चलाना है, आप उसको आगे लेके जाना चाहते हो, तो इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ आप बोल रहे हो और दूसरे वाला सुन रहा है, एंड इट शुड ऑल्सो नॉट लाइक कि सिर्फ दूसरे वाला ही बोल रहा है और आप ही सुन रहे हो। बोथ वेज होना चाहिए, आप भी बोलो, वो भी बोले, आप भी सुनो और वो भी सुने। तो अगर ये चीज़ सबसे पहली होती है कि अगर ये इसमें आप टिक कर पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, आप आगे जा सकते हो। उसके बाद आप देखो कि वो जो इंसान है उसके पैटर्न्स क्या है, वो कैसे सोचता है, वो चीज़ों को कैसे देखता है, और आप कुछ ऐसा उससे इंसिडेंट शेयर करो जिससे आप बहुत कनेक्टेड हो और आप जैसे उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो और जैसे वो इंसान उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, आप कहीं पर मैच कर रहे हो, आपके थॉट्स कहीं पर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि हाँ इस सिचुएशन में ये इंसान भी नॉट 100%, अगर वो 70% भी वैसा सोच पा रहा है जैसा आप सोच रहे हो, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि आपके पैटर्न्स भी मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप फुटबॉल नहीं बन सकते दूसरे के ओपिनियन के लिए। यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ फुटबॉल टू अदर्स ओपिनियन, राइट? यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझाओ, एंड एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट्स तो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सोचो कि सिर्फ आपकी बात ऊपर है और आप दूसरे को सप्रेस करते रहो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं चलेंगी आपकी चीज़ें। तो सबसे पहले दूसरे को बोलने के पहले आपको खुद को भी समझना पड़ेगा कि क्या आप इतने एडजस्टिंग और एक्सेप्टिंग हो सकते हो इस इंसान को लेकर। इफ़ येस, इट इज़ गुड, और तभी चीजें चल सकती है, मुझे ऐसा लगता है।
0: यू शुड नो द पैटर्न्स, यू शुड कम्युनिकेट। सो इंटरेस्टिंग। अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं, क्या चीजें हैं जो टाइम बीइंग हमारे सामने खुलती हैं लेयर्स, या जो हमें खोलनी चाहिए एटलीस्ट इंसान के बारे में और अच्छे से जानने के लिए, कि सामने से सब झूठ बोलते हैं।
1: ट्रू।
0: सो व्हेनेवर यू मीट समवन, मे बी अ कॉलीग, मैनेजर, आपको फर्स्ट टाइम ये लगेगा बहुत अच्छे इंसान है, हर आदमी अपना बेस्ट लेके आता है, बट How can we maximize that thing to peel off the layers?
1: Right. सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप मिलो उस इंसान से। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये काफ़ी नहीं होता, क्योंकि इसमें सब प्रिटेंड कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। किसी ऐसी सिचुएशन में रहो जिसमें कि आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से कि आप किसी ऐसी जगह पर जाओ और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, आप दूसरे इंसान का भी, दूसरे इंसान के पास भी फ़ोन नहीं है, आपके पास भी फ़ोन नहीं है, आप सिर्फ आप दो लोग हो, बहुत ज़्यादा सड़ी गर्मी हो रही है और आपके पास कोई चारा नहीं है, आप फंसे पड़े हो एक जगह पर, आप वहाँ पर देखो कि तब वो इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या वो पेशेंट है उस टाइम पर, क्या वो आपके साथ है, या फिर वो भी चिड़चिड़ा चुका है और वो बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, रेस्टलेस हो रहा है अगर वो, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रूथ रिवील होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये इंसान ऐसे एक्ट करेगा। अगर वो उस टाइम पे भी पेशेंट है और वो इफ़ ही इज़ देयर विद यू और वो समझ पा रहा है और वो काम कर पा रहा है आपको उस सिचुएशन में, तो वहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि इंसान ऐसा ही रहेगा अगर कोई आगे भी ऐसी सिचुएशन आती है तो। पर अगर वो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बौखला गया है और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो नाउ अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये इंसान आगे भी ऐसे करेगा। और दूसरा कि मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दो चार मीटिंग्स में आप नहीं समझ सकते किसी को। लोग बहुत आजकल प्रटेंड कर सकते हैं, इट इज़ वेरी ईजी टू प्रटेंड, और फेक करना भी बहुत ईजी हो गया आजकल। तो एक्सट्रीम्स पहले जानो इंसान के, कोई ऐसी सिचुएशन लाओ जिसमें आप ऐसा सामने वाले को प्रवोक भी कर सकते हो कि वो गुस्सा करे, तो आप देख सकते हो कि इसका क्या पैटर्न है, कितना गुस्सा कर सकता है। अगर वो उस टाइम पे गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, और वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो वो आगे भी नहीं सुनेगा आपकी बात उसका, क्योंकि पैटर्न ही ये है कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड हो जाता है, और वो उसके अपने थॉट्स इतने ओवरपावरिंग होते हैं कि वो दूसरे इंसान को कंसिडर ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली तो आप देखो ऐसी सिचुएशंस में एंड अप करो जहाँ पर आपको इंसान को जानने का मौका मिले। जितने आपके पास फालतू क्वेश्चंस है, नो मैटर कि वो रिलेवेंट है या नहीं है, आप पूछो। अगर आपको वो दे रहा है आंसर, पेशेंटली दे रहा है, कामली दे रहा है, तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि वो सुनेगा आपकी बात, और वो समझना भी चाहेगा और आपको समझाना भी चाहेगा। पर अगर वो आपको ऐसे लेट डाउन कर रहा है कि अरे क्या फालतू क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये तो इररिलेवेंट है, तो फिर आप समझो ये बात कि उसके लिए मैटर नहीं करता आपके थॉट्स और आपके जो क्वेश्चंस है वो। अगर आपको किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो इंसान जैसा भी है, आप उसको वैसा एक्सेप्ट करो। तो अगर कोई इंसान आपको वैसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, चाहे आपके कितने भी बेवकूफ़ क्वेश्चंस और इररिलेवेंट क्वेश्चंस है, अगर वो नहीं कर पा रहा उस चीज़ को एक्सेप्ट, और अगर वो आपको ये बोल रहा है कि अरे तुम ये क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये तो बहुत फालतू बातें हैं, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, इट डजंट मैटर आप बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो या फिर आप बहुत समझदारी वाली बातें पूछ रहे हो। अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, और आपको अपने पार्टनर से वो क्वेश्चन पूछना है, तो आपको वो पूछना है, और उसका काम है उसको आंसर करना। चाहे वो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला आंसर ना दे, बट अगर वो सिर्फ उसको सुन रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, और आपको वो आंसर दे रहा है, तो वो भी एक अचीवमेंट है।
0: सो अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है कशिश ने इस चीज़ को। मैं रिएट्रेट करना चाहूँगा इसको कि अगर आपके पास कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है, डोंट एवर बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग इज दैट वी हैव दैट एबिलिटी टू क्वेश्चन थिंग्स, और ये चीज़ कभी जानी नहीं चाहिए। एंड इट डजेंट मैटर कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो देयर वाज एन इंसिडेंट, मैं एक बहुत फेमस एक्टर है बॉलीवुड के, उनका इंटरव्यू ले रहा था एक बार। सो ही वाज सेइंग द सेम थिंग कि मैं अपने बचपन में अपने माँ बाप से, बाकी लोगों से पूछता था कि मेरा बर्थडे 5 अक्टूबर को क्यों आता है। क्या इससे ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, बट इट इज़ वट इट इज़, इट शोज़ कि आप क्यूरियस हो हर चीज़ को लेकर के। एंड एवरी थिंग, एवरी इन्वेंशन, एवरी सिंगल इनोवेशन, या जो भी अचीवमेंट आप दुनिया में आज देखते हो, जो भी चीज़ें आई हैं, हर चीज़ एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। अगर किसी ने फ्लाइट बनाई है, पहले उसने क्वेश्चन पूछा होगा कि क्या हम लोग उड़ सकते हैं, अगर नहीं उड़ सकते तो क्यों नहीं उड़ सकते। उसके बाद जाकर के फिर घूम फिर के जनरेशन वाइज चीज़ें बदली होंगी, फ्लाइट बनी, फिर इतनी सारी चीज़ें आई, फ़ोन आया आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आई, वाईफाई आपके पास आया, सब कुछ स्टार्ट हुआ एक क्वेश्चन से। सो ये बहुत ब्यूटीफुल बात कशिश ने बोली यहाँ पर, कि अगर आप सवाल पूछने का स्कोप आपके पास है, वहाँ पर नॉन जजमेंटली कोई इंसान आपसे सवाल पूछ सकता है, इट शोज हाउ ब्यूटीफुल दैट बॉन्ड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, मोस्टली पीपल दैट आर वर्किंग आउट देयर, ओवर अचीवर, इनसिक्योर, अंडर परफॉर्मर्स, दे ऑल आर इनसिक्योर एंड दे ऑल आर एंशियस। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टैप इन टू दिस थिंग कि वाई आर वी सो एंशियस, क्यों हम इतने एंशियस हैं, और अगर है तो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, कि इसका रूट कॉज क्या है। कई बार समझ नहीं आता, फॉगी होता है दिमाग कि क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, कुछ

0: डीपेस्ट कुछ छुपा हुआ है वहां पर, उसको कैसे समझना होता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट एंजाइटी।
1: ट्रू। सो जो हमारी इनसिक्योरिटी आती है वो सबसे पहले उस डर से आती है कि हम इस चीज़ को खो सकते हैं। अगर कोई इंसान इनसिक्योर होता है किसी चीज़ को लेकर, खुद को लेकर या किसी इंसान को लेकर, तो उसके पीछे एक डर होता है और वो डर यही होता है उसको खोने का डर। और इंसान को वो जो डर तभी आता है जब वो उसको बहुत कस के पकड़ के रखता है। तो जितना आप चीज़ों को कस के पकड़ के रखोगे आपको उतना ही डर लगेगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा कि लाइफ जो होती है ना उसमें आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होगा आपके साथ। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें नहीं पता था कि हम यहाँ पर बैठेंगे, राइट? तो लाइफ इज़ फिल्ड विथ सरप्राइजेस, बट जितना आप खुद को रिजिड और जितना आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे उतनी ही तकलीफ आपको होगी और किसी को भी नहीं होगी। तो आई वुड से कि चीज़ों को पकड़ना छोड़ दो, और जितना कस के आप पकड़ोगे उतना आप खुद ट्रिगर होगे, किसी को शायद इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और आपकी इनसिक्योरिटीज़ खुद अपने आप में ही बढ़ेगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो इट्स बेटर दैट यू टेक लाइफ वेरी ईजी और प्रेजेंट में जीना अगर हम स्टार्ट कर दे। ऑल दो ये सब चीज़ें बोलनी बहुत आसान होती है, बट जब एप्लीकेशन की बात होती है तो हम बहुत बार फेल कर जाते हैं। बट अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड इफ़ वी कीप रिमाइंडिंग आर सेल्स दैट आई एम हियर, ये एक लूप होता है जो छूटेगा आपसे, पर जब आपको दोबारा याद आएगा, हो सकता है एक घंटे बाद याद आए, तो आप फिर से अपने आप को रिमाइंड कराओ दैट आई एम हियर, फिर से वो छूटेगा, वो जो थ्रेड है वो दोबारा छूटेगा, आप दोबारा अपने आप को रिमाइंड कराओ। तो जैसे जैसे आप रिमाइंड कराओगे वो जो टाइम स्पैन है वो कम होगा, और जब वो कम होगा और जब आपको पता चलेगा कि दैट यू हैव एक्सेप्टेड दैट यू आर हियर इन द प्रेजेंट एंड यू आर लिविंग योर लाइफ, वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर द बेस्ट, तो शायद आपकी इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाए बाय द टाइम। आई एम नॉट प्रोमिसिंग कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, बट हाँ, जो ज़िंदगी होती है उसमें ये नहीं होता कि सब कुछ एक रात में ठीक हो जाता है, क्योंकि हम जहाँ पर आए हैं बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आए हैं, तो उसका जो बोझ होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कंधों पर हमेशा रहता है। बट उस अच्छा आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। एक साधु होता है, वो बहुत तप करता है, और वो इतना तप करता है कि एक जो छोटा लड़का होता है वो ये चाहता है कि मैं बस इसकी शरण में आ जाऊँ और ये मुझे अपना ले और ये मेरा गुरु बन जाए। तो वो पहाड़ पे चढ़ता है ऊपर, इतनी मेहनत करके ऊपर जाता है उस साधु के पास, और वो उनको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो और मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। साधु कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि चलो ये जो पत्थर है ना इसको उठाओ, और वो नीचे चलने लगता है, पहाड़ से नीचे उतरने लगता है। साधु जो होता है वो नीचे उतरने लगता है, और वो जो लड़का होता है वो इस कन्फ्यूजन में आ जाता है कि खुद तो खाली हाथ चल रहा है ये आगे, और मुझे इतना बड़ा पत्थर उठाने के लिए बोल दिया। तो अब वो उस पत्थर को लेकर नीचे चलता जाता है। तो फिर जब वो नीचे आ जाता है वो इतना थक जाता है, उसकी सांसें फूल रही होती है, उसको समझ नहीं आता कि मैं, उसको गुस्सा आ रहा होता है कि खुद तो खाली हाथ चल गया है और मुझे बोल दिया पत्थर उठाने के लिए। जब वो नीचे पहुँचते हैं तो साधु पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है कि ये पत्थर तुम क्यों लेकर आ रहे हो? तो वो कहता है कि आपने तो कहा था उठाने के लिए। तो साधु कहता है मैंने तो सिर्फ उठाने के लिए कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि इसको अपने साथ नीचे लेकर आओ। तो द थिंग इज कि वो उसकी चॉइस थी कि वो उस बोझ को अपने साथ लेकर आया, इसलिए वो परेशान हुआ। अगर वो उसको उठाकर वहीं छोड़ देता, क्योंकि साधु ने तो नहीं कहा था कि उसको अपने साथ लेकर आओ, बट उसकी चॉइस थी कि वो साथ लेकर आया। तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का जो बोझ है हम छोड़ सकते हैं, जैसे हम उठाते हैं हम छोड़ भी सकते हैं, पर हम चूज़ करते हैं उसको अपने साथ कैरी करना और आगे बढ़ना उसके साथ। इसलिए ही मोस्ट ऑफ द पीपल इनसिक्योर और परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इट्स बेटर दैट यू लेट गो ऑफ थिंग्स, एंड इट्स बेटर दैट यू एक्सेप्ट इट एट द वेरी मोमेंट। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे और जैसे ही आप लेट गो कर दोगे, वैसे ही चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ट्राई करिए कि चीज़ों को पकड़ना छोड़ते हैं हम।
0: सो ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट, देयर इज अ बिगर रियलाइजेशन ऑफ दैट पार्ट कि लाइफ में जो भी चल रहा है डजंट मैटर, बट आपने क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या आपका है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, क्या ट्रॉमा है, इट ऑल गोइंग टू बी जीरो वन डे, वी ऑल आर गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी एंजाइटी आपकी खत्म कर भी सकता है एक थॉट कि एक दिन वैसे भी जाना ही है भाई। तो इन बिटवीन ठीक है, जो आपके पास कोशिश है आप करते रहो, जितने आप मैचेस खेल सकते हो खेलो, कहीं में सेंचुरी मार भी दोगे, कुछ भी नहीं मार पाओगे, बिल्कुल जीरो पे आउट हो सकते हो, इट डजंट मैटर. सो जस्ट बी इन द मोमेंट एंड ऑलवेज हैव दिस रियलाइजेशन कि सब कुछ परमानेंट नहीं है यहाँ पर, कुछ भी परमानेंट नहीं है एक्चुअली. फिलहाल लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे. आगे हम बात करेंगे साइकोलॉजी अगर आपको पढ़नी है या समझनी है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, बट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील.

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: वंस अगेन आई एम होपिंग यू आर लविंग द म्यूजिकल वाइब। अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो 8010781078 पर अपनी बात जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूं आरजे सागर, शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज के हमारे मेहमान है कशिश। कशिश, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अगर किसी इंसान को साइकोलॉजी पढ़नी है, डिग्री नहीं करनी है, जस्ट समझनी है हाउ एग्जैक्टली आवर माइंड वर्क्स, हाउ बिहेवियर वर्क्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, कैसे शुरुआत की जाए?
1: राइट,
0: जस्ट गिव अस अ रोड मैप।
1: ओके, सो सबसे पहले तो अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें। देयर इज दिस बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड बहुत फेमस बुक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी। और मैं चाहूँगी कि एक बार एफर्ट करके आप उस बुक को पढ़ें। और उसके अलावा भी देयर आर सो मैनी बुक्स जो बहुत कुछ इंसान के बारे में बताती है, उसके पैटर्न्स के बारे में बताती है। उसके अलावा डिग्री करना ज़रूरी है साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, क्योंकि आप इतनी डेप्थ में किसी भी चीज़ को उठाकर नहीं पढ़ सकते। बट हाँ, अगर आप नहीं कर सकते डिग्री, तो आप रिसर्च पेपर्स उठाइए और आप रिसर्च पेपर्स पढ़िए। वहाँ पर केसेस होते हैं बहुत सारे, और उसके नीचे उन केसेस को जैसे सॉल्व करा गया है, और जो जो उसमें आंसर्स, जो हमने केस पढ़ा, जो आंसर्स अब हमें मिलने चाहिए, वो सब होते हैं उसमें अटैच्ड होते हैं। आप वो पढ़िए, आपको आपका परसेप्शन चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। अब जैसे एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था, तो उसमें था कि एक लड़की होती है और वो जॉइंट फैमिली में रहती है। उसके जो ताऊजी ताईजी होते हैं, वो सब ये चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उनको मिल जाए। और वो जो लड़की होती है ना, उसके जो पापा होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट और ऑर्थोडॉक्स पर्सनालिटी उनकी होती है, तो वो हमेशा अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को सप्रेस करते रहे, पूरी ज़िंदगी डोमिनेट करते रहे। बट उसके बाद जब टाइम आया अपने लिए स्टैंड लेने का, अपनी प्रॉपर्टी के लिए स्टैंड लेने का, तो वो नहीं ले पाए स्टैंड, और वो सारी प्रॉपर्टी जो थी उनके ताऊजी के पास चली गई। एंड शी इज़ लेफ्ट विद नथिंग, हर फादर इज़ लेफ्ट विद नथिंग। और अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो जो लड़की होती है वो पता क्या करती है, वो अपने बेड के नीचे, अपने पिलो के नीचे ब्लेड्स रखती है, और वो चुपके से कभी भी अपने आप को हार्म कर लेती है, काट लेती है, अपना हाथ काट लेती है, कुछ करती है। और फिर उसके बाद वो ऐसे दिखाती है कि मेरे ऊपर कुछ है, देर इज़ सम सुपर नेचुरल थिंग अराउंड मी विच इज़ हर्टिंग मी। ओके, तो बहुत सारे लोग उनके पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप तांत्रिक के पास जाओ और आप ये सब चीज़ें कराओ, बट एक समझदार व्यक्ति होता है जो बोलते हैं कि आप इनकी काउंसलिंग स्टार्ट करो। जब वो फर्स्ट सेशन के लिए जाती है, तब उसको पता होता है कि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा आई तो सबको पता चल जाएगा कि मेरा सच क्या है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती आना किसी भी सेशन के लिए, और वो अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा घुमाती है कि यही हो रहा है, कोई सुपर नेचुरल चीज़ है मेरे साथ। तो वो क्या करती है, इसे चुटकी बजाती है और अपनी वॉइस चेंज करती है, और एक मेल वॉइस में बोलती है कि मैं सबको मार दूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, जस्ट टू डराने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को इन एवरीथिंग। ठीक है, तो अब जब फोर्सफुली उसको काउंसलिंग सेशंस में भेजा जाता है, तो एक दिन ये ट्रूथ सामने आता है कि वो ये सब इसलिए कर रही थी बिकॉज शी वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड अपने फादर को लेकर, कि जब अपने लिए स्टैंड लेना था तो वो नहीं ले पाए। और अगर वो एज अ गर्ल डराती तो कोई नहीं डरता, बट एज अ मेल जब उसने चूज़ करा कि मैं एज अ मेल वॉइस यूज़ करके इन सब लोगों को डराऊँ, तो वो सब डर गए। तो हियर जो मेन चीज़ थी, उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, वो ये थी कि उसके फादर ने हमेशा उसको सप्रेस करा, और जब अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम आया तो वो नहीं ले पाए, तो वो उस चीज़ में फंस गई, तो इसलिए उसने ये कार्ड पुल करा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको समझ आएंगी अगर आप ऐसे रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ब्रॉड होगा और बहुत ग्रो करोगे आप टाइम के साथ। तो आप रिसर्च पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करिए, और कुछ बुक्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी मैंने बताया, और भी है, एल्केमिस्ट पढ़ सकते हो आप, एल्केमिस्ट इज़ अ वेरी नाइस बुक,
0: सो अमेजिंग। आप बिकमिंग सुपरनेचुरल पढ़ सकते हो, डॉक्टर जो डिस्पेंसा की बहुत खूबसूरत किताब है, आप पढ़ सकते हो द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ, एंड सो मेनी बुक्स आर देयर जो आप जरूर पढ़ें एक बार लाइफ में, एटलीस्ट आपको पता लगेगा माइंड काम कैसे करता है। अगर किसी इंसान को प्रॉपर एक काउंसलर बनना है, फर्स्ट थिंग इट इज नॉट फॉर एवरीवन. क्या ट्रेट्स होनी चाहिए इंसान में कि लेट्स से कोई 12th क्लास का बच्चा इस टाइम सुन रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे को काउंसलिंग में जाना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है मेरे को, कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरे लिए सही डोमेन है, क्या ट्रेट्स क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस इंसान में?
1: सबसे पहले तो दे शुड बी अ गुड लिसनर. एक साइकोलॉजिस्ट का काम ही होता है सुनना. सुनाता तो वो बहुत बाद में है, पहले वो सिर्फ सुनता है और वो सिर्फ एनालाइज करता है कि सामने वाले के क्या पैटर्न्स है. तो अगर आप वहीं पर फेल हो रहे हो और अगर आपको ओके यू कैन नॉट बी वेरी नोजी, मतलब अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है तो वो बहुत ट्रस्ट करके आपको बात बता रहा है और आप उस मोमेंट पे चाहे आपको कितनी भी बातें उसके बारे में पता चल रही हैं या आपको कितना भी उसके बारे में समझ आ रहा है, आप स्टिल वो बातें रख नहीं सकते उसके आगे. क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें रख दी अभी इनिशियल फेज में तो वो शायद पुल बैक कर सकता है जो सामने वाला है. तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट और आपको पहले पूरी तरह से उस इंसान को कम्फर्ट करना है, कम्फर्टेबल करना है अपने साथ. एंड यू शुड हैव दैट वॉर्म्थ विद इन यू कि लोग आपके साथ खुल पाए. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ऐसे होती है कि वो सामने वाले को कम्फर्ट नहीं दे पाते और लोग उनके आगे खुल भी नहीं पाते. तो अगर इंसान आपके आगे खुल ही नहीं पाएगा तो आपका साइकोलॉजिस्ट होने का मोटिव ही ख़त्म हो गया वहाँ पर. तो यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, यू शुड बी वेलकमिंग आई वुड से. और सबसे बड़ी चीज़ कि डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होती है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए. क्योंकि अगर मेरे सामने रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा केस आता है जिससे अगर मैं अटैच हो गई, उस इंसान से अगर मैं अटैच हो गई, तो मैं उसको कुछ हेल्प तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी और मैं और फंस जाऊँगी उसके साथ. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनली ही रखें और बिल्कुल भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो उस चीज़ में. तो ये बहुत ज़रूरी है. और अगर हम 12th क्लास के बच्चे की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट बनने का थॉट रैंडमली नहीं आता, हमेशा तभी आता है जब किसी इंसान के अंदर कुछ बहुत सारी बातें होती है जो वो अपने बारे में जानना चाहता है. और तो वो जो बच्चा है ही शुड बी अ वेरी गुड लिसनर और उसको ज़िंदगी के बारे में अपने उम्र के बच्चों से थोड़ा ज़्यादा पता होगा और वो चाहता होगा और ज़्यादा अपने आप को समझना, तभी वो ये डिसीजन पर आएगा कि अब मुझे काउंसलर बनना है.
0: एटलीस्ट क्यूरियस होगा.
1: यस ऑफ कोर्स.
0: कि दिमाग काम कैसे करता है.
1: यस yes.
0: कोई इंसान सिचुएशन में खुश है, दूसरा इंसान उस सिचुएशन में उदास है, तीसरा इंसान गुस्सा है, तो अगर ये तीनों चीज़ें आपको कॉन्ट्रास्टिंग नज़र आती हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये सिचुएशन तो सेम है लेकिन तीनों के अंदर कुछ अलग चल रहा है, तो वो जो क्यूरियोसिटी है ना कि इनके अंदर क्या चल रहा है, वो आई थिंक दैट इज़ अ राइट वे टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. करियर ऑप्शंस क्या होते हैं इसमें, हाउ टू बी अ गाय अ गर्ल हु कैन अर्न वेल इन दिस फील्ड.
1: टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली आपको साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा तो अर्निंग नहीं होती, इवन इंटर्नशिप्स भी पेड ही होती हैं. बट अगर आप एक सब कुछ करने के बाद, जैसे अगर आपने बी ए अप्लाइड साइकोलॉजी कर ली एंड देन यू आर डन विद योर एम ए एम फिल पी एच डी, देन यू कैन अर्न वेरी वेल एंड तब बहुत स्कोप होता है. बट इनिशियली भी साइकोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया है. मतलब स्कूल्स में भी देर इज़ मैंडेटरी कि आप काउंसलर होगा ही. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ देयर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ देयर, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एवरीथिंग. इवन इन ऑल द क्रिमिनल केसेस एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी इज़ देयर, अब नॉर्मल साइकोलॉजी इज़ देयर. सो देर आर सो मैनी इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स एंड इट इज़ वेरी वास्ट. But it's just that you have to stick with one subject. You cannot just hop in here and there ki thodi si sports padh li, thodi si criminal padh li, thodi si ye. You have to make up your mind ki aapko kis mein aage jana hai, jisme aap bahut zyada drawn feel kar rahe ho aur jisme aapko lag raha hai ki this is my area and I'm very passionate about it. You just choose that area. Aur although bahut interesting hai psychology, bahut interesting hai और बहुत हेल्प करती है आपको ज़िंदगी को समझने में, तो अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि आपको ये डिग्रीज़ लेना बहुत मैंडेटरी है. क्योंकि सिर्फ बी ए अप्लाइड साइकोलॉजी करके, एम ए साइकोलॉजी करके आपको बहुत अच्छी जॉब तो नहीं मिलेगी. एम फिल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसमें आपको लाइसेंस मिलता है. एम फिल इज़ फॉर वन ईयर, आपको उसमें लाइसेंस मिलता है जिसमें आप ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो. अपने पेशेंट को विदाउट एम्फिल, यू कैन नॉट डू दैट. आप अपनी नॉर्मल काउंसलिंग कर सकते हो पेशेंट की, बट आप उसको कोई भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते विदाउट एम्फिल. तो बहुत ज़रूरी है एम्फिल करना. अगर आपको एज अ करियर काउंसलिंग को चूज़ करना है तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, और आपको बहुत सारा अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाओगे.
0: सो अमेजिंग, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस. कोई भी ऐसी चीज़ें मैं ना पूछ पाए और आप कहना चाहते हो प्लीज़ फील.
1: आई थिंक आपने सब कुछ पूछ लिया.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच कशिश फॉर जॉइनिंग अस. इट मींस अ लॉट टू अस एंड थैंक यू फॉर गिविंग ऑल दोज वैल्यूएबल थिंग्स टू अस. आई मीन एंड जस्ट होपिंग लिसनर्स को मजा आया होगा, आपको पसंद आई होंगी सारी बातें, क्योंकि बातें हुई हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं. हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग की पढ़ाई एक तरीके से आप कह सकते हो साइकोलॉजी है. पैटर्न्स, बिहेवियर्स, एक्शंस, रिएक्शंस, सब कुछ उसमें आता है. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. एंड आई वुड से कि अगर आप कोई भी एक इंसान है जो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हो, यू आर अ सर्वाइवर, सो यू शुड नो दिस एटलीस्ट, कि दुनिया कैसे सोचती है, बिहेवियर्स क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना होता है. अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई चोर है, कोई सीरियल किलर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई एथलीट हो सकता है, सबकी अपनी एक साइकोलॉजी है, जिसको समझना मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड हो जाता है. ऑलराइट, ऑन दिस नोट वक्त है अपने शो का कंक्लूड करने का. आई होप आपको पसंद आया होगा. चलिए फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो. लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए. दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ.

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: देखिए किसान भाइयों, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है रसीले चारे की फसल की बात। उसका नाम है मकचरी। मकचरी का वानस्पतिक नाम यूकेलियाना मैक्सिकाना है। ये रसीले चारे की फसल है जिसका औसतन कद 6 से 10 फीट होता है। इसके पत्ते लंबे और चौड़े होते हैं। पौधे की चारों तरफ बहुत लंबी शाखाएं होती हैं। मादा पौधे जब पूरी तरह तैयार हो जाते हैं ना किसान भाइयों, और फूल और शाखाएं निकल आती हैं, तो उसे मुख्य भाग को बालियां कहा जाता है। इसमें 5 से 12 दाने होते हैं। इसका मूल स्थान मेक्सिको और केंद्रीय अमेरिका है। भारत की बात करें तो भारत में पंजाब सबसे ज्यादा मकचरी उगाने वाला राज्य है। ये मुख्य तौर पर नवंबर के महीने में चारा पैदा करने वाली फसल है और लंबे समय तक हरी बनी रहती है। तो मकचरी के बारे में यानी कि रसीले चारे की फसल के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, बात हो रही है आपसे मकचरी के बारे में, तो सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं। ये फसल चिकनी से रेतीली मिट्टी में उगाई जा सकती है। ये भारी मिट्टियों में बढ़िया पैदावार देती है। हल्की रेतीली जमीनों में इसकी खेती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फसल के विकास पर बुरा प्रभाव डालती है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका बढ़िया विकास हो, तो उसके लिए मिट्टी का जो पीएच है, पीएच 5.8 से 7.0 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किस्मों की। एक किस्म है जिसका नाम है TL1। ये किस्म 1993 में तैयार की गई थी और इस किस्म का पौधा दानों के सुरंगी कीटों का रोधक होता है। इसके पत्ते पकने तक हरे बने रहते हैं। इसके बीजों की परत सख्त होती है और स्लेटी भूरे रंग के होते हैं। अगर हम दूसरे राज्यों की किस्मों की बात करें, तो सिरसा इम्प्रूव्ड और रूरड़ी नाम की किस्में भी तैयार की गई हैं। लेकिन किसान भाइयों, जमीन की जब तैयारी की बात आती है, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जमीन की तैयारी किस तरह की जानी चाहिए मकचरी के लिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं जमीन की तैयारी की, मक्चरी की। जब भी आप फसल बोएं तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तैयारी की अगर बात करें तो मक्चरी की बिजाई के लिए ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। ज़मीन को बढ़िया तरीके से समतल करने के लिए एक बार हैरो से जुताई ज़रूर करें और फिर दो बार सुहागा ज़रूर फेड़ दें। फसल की बिजाई तैयार किए बैंडों पर की जाती है और बिजाई की अगर हम बात करें तो इसका समय भी होता है। मई जून महीने में नर्सरी तैयार करें और जून जुलाई महीने में बीजों की बिजाई करें। अगस्त में बिजाई बिल्कुल न करें, क्यों? क्योंकि इससे पैदावार कम हो जाती है। फासले की बात कर लेते हैं पौधे के विकास के लिए। पौधे के विकास के मुताबिक बीजों को 30x40 सेंटीमीटर के फासले पर बोएं और बीज की गहराई की अगर बात आती है तो बीज को 3-4 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोएं। बिजाई को केरा विधि, कौन सी विधि? केरा विधि या बिजाई वाली मशीन की सहायता से की जाती है। तो ये हो गया आपका बिजाई का ढंग, बीज की गहराई, फासला क्या होना चाहिए और बिजाई का समय क्या होना चाहिए, जमीन की तैयारी कैसे होनी चाहिए। ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अब बात आती है बीज की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जितना अच्छा बीज होगा फसल आपकी उतनी ही बेहतर होगी। तो बीज के बारे में आपसे कुछ जरूरी बातें करूंगा और खाद की बात भी करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है उस फसल के बारे में जिसका नाम है मगशरी। जमीन की तैयारी कैसे की जाए, इस बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, बिजाई का तरीका भी बता दिया। बीज की जब बात आती है तो हमें बहुत सारी सावधानियों की जरूरत होती है। बीज की मात्रा का जरूर ध्यान रखें। बढ़िया अंकुरण वाले किस्मों के लिए 16 किलो प्रति एकड़ बीजों का प्रयोग करें। अब बात आती है खाद की, तो इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। खेत की तैयारी करते समय रूड़ी की खाद 8 टन प्रति एकड़ जरूर डालें। नाइट्रोजन 20 किलो यानी यूरिया 44 किलो की मात्रा का प्रति एकड़ में प्रयोग करें। बिजाई से एक महीने के बाद नाइट्रोजन 20 किलो यानी यूरिया 44 किलो का छींटा जरूर दे दें। लेकिन किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे खेत में जो फसल है वहां पर अगर खरपतवार आ जाती है तो उस खरपतवार से कितना नुकसान होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फसल चाहे कोई भी हो, खरपतवार उसकी एक तरह से दुश्मन है, दुश्मन। अब इस दुश्मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता फहीम के साथ।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खरपतवार की, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है हमारी फसल के लिए। नदियों की प्रभावशाली रोकथाम के लिए बार बार गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर नदियों पर काबू ना पाया जाए तो पैदावार में भी बहुत कमी आ जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप इसकी अच्छी रोकथाम करना चाहते हैं तो प्रभावशाली रोकथाम के लिए एट्राटॉफ 50WP 400 ग्राम प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई से 2 से 3 दिन के बाद स्प्रे करें। मिट्टी का तापमान और नदियों को कम करने के लिए मल्चिंग का तरीका भी प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है, जिससे ये जो खरपतवार है इसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये तो बात रही खरपतवार की। अब बात जब आती है सिंचाई की, तो वो भी जानना जरूरी है। भाई देखिए किसान भाइयों, जलवायु और मिट्टी के आधार पर 8 से 10 दिनों के फासले पर हमें इस फसल की सिंचाई करनी चाहिए, जो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब बात आती है कि भाई पौधे की देखभाल कैसे करें, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो कि फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो उन कीटों की रोकथाम कैसे की जाए और वो कौन कौन से कीट हैं जो कि हमारी इस फसल को बर्बाद करते हैं, उन कीटों का नाम बताऊंगा। और नाम ही नहीं बल्कि उन कीटों से फसल को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, वो बातें भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है। किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कीट और उनकी रोकथाम की। एक कीट होता है जिसका नाम है मक्की का छेदक। ये कीट मुख्य तौर पर फसल के शुरुआती विकास के समय हमला कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है? इसकी रोकथाम के लिए 750 WP यानी कार्बोरिल 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ की स्प्रे जरूर करें। अब बात आती है फसल की कटाई की, तो ये भी सुन लीजिए। इसकी कटाई आम तौर पर बिजाई से 80 से लेके 100 दिन बाद की जाती है। फसल के गुच्छे निकलने पर कटाई की जाती है। इस समय चारा ज्यादा देर तक हरा रहता है और पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ होता है, और सूखी फसल की कटाई धूप में कर ली जाती है। लेकिन किसान भाइयों, कटाई के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। कटाई के बाद फसल को दबाया जाता है। क्या किया जाता है? दबाया जाता है। फसल को हाथों से दबाया जाता है या फसल के ऊपर से ट्रैक्टर को चलाया जाता है। स्टोर करने से पहले सफेद दानों को अलग कर लें। इसके बाद चारे को बोरियों या किसी बंद जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। मक्चरी के दाने की औसतन पैदावार लगभग 5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुकाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: अरे कुछ

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरे थोता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चिरों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की संतरास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गोंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गोंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त वहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब खैर।
2: लहरा के आ जरा आंखों से।

आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: नैन भरते नहीं प्रकृति तुझे बार बार निहार निहार, हरियाली का ओढ़े आंचल, सरसों के छींक पीले पीले, नहरे देख लगे कुछ ऐसे, गले में जो हार हो तेरे, पानी यूं झिलमिल करता एक सेतु में मोती, गुथे हो जैसे चांदी की रेखा सी मुस्काती, पगडंडियां जगह जगह बिखरी, लताएं झूम रही कुछ ऐसे जैसे लच झूम रही हो तुझे झूम झूम, गोभी के फूल लगे कुछ ऐसे नच पहनी हो कुआरी कन्या सी, सोन बालिया गेहूं की तूने पहनी अपने कानों में, यौवन कलश तेरे ओ प्रकृति ये ऊंचे ऊंचे शैल शिखर, ओढ़ लिया तूने ओ प्रकृति।

हम लजाए से खड़े हैं, सर को झुकाए निर्मम पतझड़ ने लूट लिए भव्य प्रकृति तेरे परिधान। उदास न हो तू ओ प्रकृति, नील गगन का ओढ़ ले आंचल, फिर से वसंत आएगा, फिर वह भव्य परिधान तुझे मिल जाएगा। फिर तू लजाना ओढ़ के आंचल, दुख तो सब पर आता है, सूरज अस्त होता है रोज, दीपक हम जलाते हैं, पर फिर आना ही पड़ता है सूरज को दुनिया में जीवन देने को।

0: हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सुजल लेकर। पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर आज तक की रिलीज फिल्म के गीत, गजल, भजन, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हो, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। पर दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं सुनना, या फिर कैसा लग रहा है आपको सृजन और रेडियो मानव रचना भी, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है भगवती सक्सेना जी। आप लेखिका हैं, बहुत सारा साहित्य के क्षेत्र में आपने काम किया हुआ है। आज हम उनके बारे में जानेंगे, सुनेंगे। भगवती सक्सेना जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: भगवती जी, जो सबसे पहले हमारे दोस्त आप लोगों से जानना चाहते हैं, यही कि आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? भगवती जी,
1: मैं 2012 से ही कहानियाँ लिख रही हूँ, कहानियाँ, कविता, क्योंकि मेरी दो बेटियाँ थी और एक मेडिकल में हॉस्टल में गई, एक इंजीनियरिंग में, और हम हस्बैंड वाइफ रह गए और मेरे पास समय ही समय था।
0: अच्छा।
1: और मैं बचपन से
0: जी, क्या बात।
1: और मैं बचपन से डायरी में कुछ ना कुछ लिखती थी, और वो समय ने मुझे मजबूर किया, और मैं उसमें हमेशा रात भर दिन भर जब समय मिला मैं लिखने लगी, और तब से मेरी जो लेखनी चलती रही तो अभी तक चल रही है।
0: अच्छा।
1: लेखनी की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई, तब तो ऐसा कुछ नहीं था, डायरी में दो दो लाइन लिखते रहते थे, ऐसा मीडिया आजकल जितना फेमस हो गया उस समय मीडिया नहीं था।
0: क्या बात है भगवती जी, हो सके तो हमारे दोस्तों को अपनी शुरुआती दौर की कोई रचना या अभी की कोई रचना, जो भी आप हमारे दोस्तों को देना चाहें, कृपया आप दीजिए।
1: बिल्कुल जी। हाँ, मैं कविता सुनाती हूँ एक।
0: जी, स्वागत।
1: मैं नारियों के ही ऊपर बहुत लिखती थी कि आगे बढ़ो। उस समय मैं पहले गोरखपुर में थी
0: जी,
1: अभी आपने मेरा परिचय, तो वहीं मैंने ये कहानी कविता लिखी थी। बुलंद है हौसले मेरे,
0: क्या बात है,
1: जीवन के कितने भी कठिन पल हो, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: इरादे कर बुलंद, अब रहो, सहना छोड़ो, शुरू करो कहना, जैसे ही कुछ ऊंचाई पर चढ़ोगी तुम्हें विरोध मिल सकता है, रन करो, झुकोगी नहीं, रुकोगी नहीं, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: बेबाक बेबाक बिंदा, हंसी पर भी तुम्हारे कुछ लोग हंसेंगे, माहौल उड़ाएंगे, नीचा दिखाने की कोशिश जारी रहेगी, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: जीवन के कठिनतम दांव को भी हंस कर टालना, हिम्मत न हारना, अनुपलब्धता को उपलब्धि में बदलना, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: अवरोध खड़ा कर रहे हर अभिमानी से, अवरोध खड़ा कर रहे हर अभिमानी से, तुम्हारी राह में आए हर अज्ञानी से,
0: क्या बात है,
1: चोट पहुंचाने वाली कुंठित मनमानी से, हार नहीं मानना, तुम नारी हो,
0: क्या बात है,
1: फिर दोहराना, बुलंद है हौसले मेरे।
0: हाँ।
1: ये मेरी कविता।
0: क्या बात है, क्या बात है, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी।

ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही बेहद बेहद खास मेहमान है भगवती सक्सेना जी, लेखिका हैं, बहुत सारी विधाओं में आप काम करती हैं। आपने उनकी अभी भी कविता सुनी नारी पर। भगवती सक्सेना जी, चुनौत में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आप बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपको पढ़ा गया, मानवी, हंस, गृह शोभा, अभ्युदय, कविता कानन, सत्य की मशाल, मेरी निहारिका, साहित्य वसुधा, पलाश, बड़े बड़े नाम हैं। गुजारिश होगी कि आप अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: ये मुझे जो भी रचना अपनी अच्छी लगती है मैं इन समाचार पत्र और ये सब में भेजती हूँ और वहाँ से लोग उसको चुनते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई पत्रिकाओं में भेजती हूँ, समाचार पत्र में आती है। मैं तो अपना काम करती हूँ कि मुझे जो अच्छी लगती है मैं भेजते ही रहती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई पत्रिका में मेरी रचना आए और लोग उसको पढ़ें और लोग मतलब उससे कुछ प्रेरित होकर कुछ आगे भी करें। और मैं नारियों के ऊपर बहुत मतलब
0: नारियों पर आपने बहुत बहुत बहुत हाँ बहुत काम,
1: उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मेरा दिमाग में हमेशा रहता है क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है जीवन में पहले।
0: जी जी, भगवती जी, इस मोड़ पर गुजारिश होगी आप अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए।
1: हाँ, रचना का शीर्षक है
0: जीवन। जीवन जी,
1: ये भी कविता है
0: जी।
1: वैसे मैं कहानियां भी बहुत लिखती हूँ
0: जी।
1: अपने जीवन के निर्णायक स्वयं ही बनना, कभी किसी को ये है समर्पण नहीं करना। जब विचलित हो मन, मौन को ही शस्त्र बनाना, निश्चित विजय तुम्हारी होगी, समय भी आएगा, जो षड्यंत्र रचेगा, साम दाम भेद सब कुछ करेगा।
0: क्या बात,
1: राम कृष्ण के वंशज हो सदा ये याद रखना, सत्य के पथ पर चलते रहना, तुम्हारी विजय होगी। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र जब जीवन में नजर आए हिम्मत रखना, संकल्प साधना, लक्ष्य निर्धारित करके सब पाओगे।
0: क्या बात है,
1: गीता में कृष्ण के शब्दों को सदा ध्यान में रखना, ध्यान रहे ये अपना भारत इकलौता ऐसा देश है, रामायण गीता से कोई भी अनजान नहीं है।
0: क्या बात है,
1: खंडित होते देखो जब जब रिश्तों की मर्यादा को, अपने जीवन के निर्णायक सदा स्वयं ही तुम बनना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत

0: Welcome again to Radio Manav Rachna with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहदी बेहदी खास मेहमान है, लेखिका हैं, कथाकार हैं, कवित्री हैं, भगवती सक्सेना जी। भगवती जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हैं, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, प्रेरणा साहित्य संस्था, भाषा साहित्य मंच, कलश कारवा, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी संस्थाओं की। गुजारिश होगी कि आप अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: हाँ, बहुत सुंदर सफर है
0: जी।
1: अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था
0: जी,
1: इसमें मैं 2021 से हूँ
0: जी।
1: और इसमें सब कुछ होता है, साहित्यिक सांस्कृतिक सम्मेलन होते ही रहते हैं
0: जी।
1: और वार्षिकोत्सव होता है जिसमें बहुत बड़ा उत्सव ही समझिए, साहित्यिक और सांस्कृतिक। पूरे देश से लोग आते हैं और जिनको बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं, राशि दी जाती है कईयों को 31,000 11,000। वो कई क्षेत्र के रहते हैं
0: जी।
1: मतलब कोई जैसे नृत्य विधा या फिल्म के कलाकार, ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं
0: जी।
1: और वो हम उसमें हैं, मैं भी उसमें कार्यकारिणी में हूँ अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था में
0: जी, जी, जी।
1: वो डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला की संस्था है
0: जी।
1: और इसकी ब्रांचेस बाहर भी हैं और यहाँ भारत में भी कई जगह है।
0: क्या बात,
1: आप कोलकाता में भी है
0: इधर। हाँ, तो नाम ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाम ही है आपकी संस्था का।
1: हाँ, तो इसकी ब्रांचेस शाखा कई जगह है
0: जी, जी, जी।
1: मैं इन्हीं संस्थाओं में मतलब हर समय हर महीने इसमें कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन मीटिंग होते रहती है। काव्य गोष्ठी, काव्य गोष्ठी होती है और लघु कथा होती है।
0: आप अपनी बहुत सारी संस्थाओं को भूल रही हैं। पंखुड़ी, पंखुड़ी संस्थान है जिसके माध्यम से हम मिले हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ,
0: हम लोग जुड़े ही पंखुड़ी के माध्यम से।
1: मैगजीन में मेरी कहानी भी आई है ब्लॉग में और वो बहुत, उसके तो मैं बहुत लोगों को बहुत दिनों से जानती हूँ, आज भी नहीं, वो डॉक्टर उपमा शर्मा से मेरी बहुत अच्छी पहचान है। रानी
0: भगवती जी, आप गुजारिश होगी इस मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे रही है।
1: मेरी ये कविता का शीर्षक है आजाद परिंदा
0: जी। स्वागत है।
1: क्योंकि देखिए, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, शायद ये आपको पता ही होगा जैसे आप देख रहे हैं
0: जी।
1: हाँ, ये इसी के ऊपर एक कविता है
0: जी। स्वागत स्वागत।
1: जिम्मेदारियों से मुक्त एक आजाद परिंदा हूँ मैं। हाँ, मैं 60+ हूँ।
0: हाँ,
1: जिंदगी जीना आ गया।
0: हाँ,
1: सब बंधनों से आजाद हूँ। डरना मैंने छोड़ दिया है।
0: हाँ,
1: मैं 60+ हूँ।
0: जी,
1: डांस भी कर सकती हूँ, गाने भी मैं गा सकती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ।
0: हाँ, मैं
1: 60+ हूँ।
0: क्या बात,
1: गया वो 60s का जमाना। गया वो 60s का जमाना जब लोग सिर्फ बजट करते थे। 21वीं सदी में 60+ फैशन शो में भी जाते हैं।
0: क्या बात है,
1: भी तो जाते हैं। हाँ, मैं 60+ हूँ। तन पर झुर्रिया हो सकती है, तन पर झुर्रिया हो सकती है, पर मन पर बिल्कुल नहीं है।
0: क्या बात है।

0: वो अलग बात है, वो अलग बात है कि डायबिटिक हूँ, चुपके से रसगुल्ला खाती जरूर हूँ। अंतर्मन के नेटवर्क से चिंतन में ईश्वर से भी हमेशा जुड़ी रहती हूँ। हाँ, मैं 60+ हूँ।
1: क्या बात है,

0: Welcome again to Radio Madhav Rachna with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर और आज हमारे साथ हैं कहानीकार कवित्री गीतकार भगवती सक्सेना जी। भगवती जी स्टूडियो में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: भगवती जी आपकी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, कुछ के मैं नाम लूंगी और आपसे गुजारिश करूंगी आप अपने सफर के बारे में बताइए। शीशे के रिश्ते, परिसीमा के परे, कल्पनाओं का अंबार, पंकजा जो आपने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइएगा
1: जी। बहुत सबसे पहली किताब मेरी शीशे के रिश्ते थी
0: जी,
1: जिसमें कहानियां हैं 35-36
0: जी,
1: और उसके बाद भी परिसीमा के परे मेरी एक किताब आई है 2024 में
0: जी,
1: जिसका विमोचन भी अभ्युदय संस्था में हुआ
0: जी,
1: और इसमें भी 35-36 कहानियां हैं जो यहां सब लोगों के द्वारा बहुत पसंद की गई।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद अभी एक किताब इस समय हुई है 2025 में कल्पनाओं का अंबार
0: जी,
1: उसमें कुछ कहानियां भी हैं और कुछ कविताएं भी हैं, दोनों उसमें
0: जी जी।
1: अच्छा, वो डिजर्विंग बुक जो है वो स्नेहा की है, स्नेहा खानवेलकर
0: जी,
1: उसका ट्रांसलेशन मैंने किया।
0: अच्छा, आप पंकजा पंकजा की बात हो रही है ना अभी।
1: हाँ, पंकजा पंकजा जी,
0: आप
1: हाँ, वो किताब एक आत्मकथा थी और बहुत प्यारी किताब थी।
0: अच्छा, पंकजा जो आपने ट्रांसलेट की है।
1: जब मैंने ट्रांसलेशन किया तो भी मुझे वो लिखने में भी बहुत आनंद आया।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: पूरे पूरे की है स्नेहा खानवेलकर।
0: तो गुजारिश होगी भगवती जी, इस मोड पर आप हमारे दोस्तों को अपनी जो भी कविता गीत जो भी आप देना चाहें आपका स्वागत है।
1: कविता का शीर्षक है मुस्कान
0: जी। स्वागत।
1: स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग किसने देखा है? पर जिस घर में पत्नी हंसती मिले, मुस्कुराती मिले, समझना वही स्वर्ग।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: आकाश किसने छुआ है? पर जिस घर में पत्नी उड़ती दिखे, विचरण करे, समझना वही आकाश है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हवा को किसने पकड़ा है? हवा को किसने पकड़ा है? पर जहाँ पत्नी शांत मिले, आपका सत्कार करे,
0: क्या बात है,
1: समझना वही संसार है।
0: वाह, क्या
1: बात। दूर से ही
0: क्या बात है,
1: दूर से ही मुस्कुराती दिखे, खिलखिलाती दिखे,
0: क्या बात है,
1: आपको देख आनंदित हो, समझना वही लक्ष्मी है।
0: क्या बात है। तेरा साथ है तो
1: मुझे क्या कमी है।

वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। आप लेखिका हैं, कवित्री हैं, कथाकार हैं, भगवती सक्सेना जी, चुडोज में आपका फिर से बहुत

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़ है। हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था, उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, 3 साल और 7 दिन का। तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसने जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए? अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे? अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी।
यहाँ कोई

पहला नहीं और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहाँ तख्ती लगी चुंगी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंगी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंगी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा, जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या, सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ,
कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा, यह शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाए फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है? आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा, तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचा। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच ले रहा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, हटोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या ले? आदमी का सिर किस काम आता है? अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या? ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर था, आदमी के सिर की कीमत क्या है? दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा? तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है? जिसका कोई मूल्य नहीं, इसका नाम झुकाना है। सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो। तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा कि सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए। सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी इच्छा प्रकट की। इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं। पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को। अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी। अब क्या करूं? व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं? ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है? ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूं, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए, तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे? गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन
प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता है कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले किए कुछ दिन होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा, लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए। बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई, तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो। इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए, और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी, उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा, और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है, प्रमाण नहीं पूछता। तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी, जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता, वो तो कहता आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पगध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे, चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो
कार में बैठने की भांति है। यात्रा शुरू हो जाती है लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है।

और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है, इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है। शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता। कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआ है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विश्व बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रोके, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चलाने, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो, अब बिल्कुल मिट जाना। मिटकर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ, तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है, और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है, लेकिन मन अभी भी अशांत। देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क से अधिये है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है, उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी। तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पे श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पे श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पे श्रद्धा आ जाती और नानक पे श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पे

श्रद्धा नहीं, वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध, नानक, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उसी एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पर जम गई, मुश्क जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणतः तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पास, तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो, तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती,
इंसानों को कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। अब तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ। फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया ये सहयोगी बात है, अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना। तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा, कुछ बातें छोड़नी होगी, कुछ बातें पकड़नी होगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो, जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं, तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा, मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाए, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे? तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाठशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाठशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती, तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। इनको तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप कहता है तो पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ
क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है। कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात। तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने, क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो न हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो
वैरिनेसु मनुष्येषु विहराम अवैरिनो, वैरियों के बीच अवैरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत जीवाम आतुरेषु अनातुरा, आतुरेषु मनुष्येषु विहराम अनातुरा, आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत जीवाम उत्सुकेषु अनुत्सुका, उत्सुकेषु मनुष्येषु विहराम अनुत्सुका, आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी सांख्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक सांख्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई, वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। सांख्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते, ना कुछ। पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी। तुम गिरोगे, कटोगे, मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे, ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। आसार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तुम सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ,
नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए। तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत, आंखें, हाथ, नाक, कान नौकर हैं और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया। कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया। स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है। और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे हैं, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साक्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया, तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है। तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े।
इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़ी शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया, खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है, और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं। इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं दे नेवर चेंज, यू नो दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग, हां अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया सो कॉल्ड, जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया कि मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर clarity आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower, reform नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, there you go,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा. तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे attitude.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जब कोई सामने से गुस्सा करता है, नाउ फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा नहीं है एक्चुअली, ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चली जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And isliye jo hum kehte hain meditation ke liye time nahi hai, ya I don't have time for myself. What we don't realize is it's not just for myself. It's for my family also.
4: For my all loved ones, for everyone. Jinke liye main zindagi dene ko tayar hoon. Sab kuch karne ko tayar hoon. Unawareness mein main kahan tak kitna nuksan. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
4: और मतलब ये मेरे लिए
5: वे, दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके हैं. अपना सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. तो शिवानी आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त हो के सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिपेक्ष में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
5: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
4: मैं ही करूँ,
5: मुझे करना। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है? और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रीलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली। मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या?
4: बिल्कुल। और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
5: एब्सोल्युटली। और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है, वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं।
4: पेन में हूँ,
5: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? This I will have to ask, because otherwise मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ with this thought कि मैं victim, you know, और वो जीवन फिर quality बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं victim हूँ, एक incident था, over, I have to move ahead. Victim वाली feeling से बाहर निकलना होगा. और बहुत important बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट, कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
4: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
5: Aapko pata hai mere saath kya hua. And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte na, apna rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार

0: लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन। जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए। तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस, स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट। क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है। लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं। अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है,
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है। तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं, तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए। लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो दैट होल डिस्कशन। और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक।
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो। एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड।
0: एब्सोल्युटली। तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा। तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार। और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल। क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो। तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप।
1: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी, बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
0: right, but we're not really helping.
1: Yes,
0: you know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke hai aapke sath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga, ya even ye kehna koi baat nahi sab theek ho jayega, matlab it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi sab theek ho jayega wo theek hai, but by saying that we are saying ki abhi sab galat hai, you know. To jitna hum normalcy ko create kar sake, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में। और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सबके कल्याण के लिए हम शिव पुराण सुनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर मानस का मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुखों का विनाश हो सके। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह ग्रंथ आरंभ किया है और इसको सुनवाने के लिए हम अपने स्टूडियो में हमेशा ही लीना जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में लीना जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, बड़ी अच्छी प्रसंग आप सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, इसमें से पढ़ पढ़ के सरल भाषा में, ताकि उनको समझ भी आ जाए और वो प्रेरित भी हो सकें। आपने पिछले एपिसोड में बताया कि नारद जी बता रहे हैं कथा कि हिमालय ने सबकी सुनकर क्या किया, क्या निर्णय लिया। तब हिमालय ने गर्गाचार्य से लगन पत्रिका लिखवाकर शिव जी के पास